जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं, सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
1: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनैलिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
1: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
1: बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
1: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
1: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप, समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
1: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, बट देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माई बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
1: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, बट अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
2: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी हैं।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
1: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
1: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
1: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। दो हजार 2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
3: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट वन जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
2: तो वंदे मातरम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे, जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है। वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

उसी समय मैनाक नाम का पर्वत मिला। मैनाक ने कहा कि आप उड़ते उड़ते जा रहे थक जाओगे, इसलिए कुछ देर विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया। हनुमान तही परसा

मैं नाग पर्वत को प्रणाम किया। आप हमारे पिता के मित्र हो तो हमारे पिता तुल्य। आपने कहा विश्राम करो, हम विश्राम नहीं कर सकते। क्यों? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हम जब तक राम जी का काम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं सुनो ध्यान से, जितने सफलता पाने वाले लोग बैठे हो, प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनो, सफलता के पहले कितने भी तुम्हारे पास में बहाने मिल जाएं सोने के बहकने के, पर हमारी बात मान लेना, सफलता उनको नहीं मिलती जो बहाने बनाते हैं, सफलता उनको मिलती है जो बहानों को छोड़कर मंजिल पर चलना जानते हैं। जो मंजिल पर चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, उनको ही सफलता प्राप्त होती है। भैया सफलता को प्राप्त करने का सूत्र ही यही है, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। धन्य है हनुमान जी।

का काज पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। राम काज क्या है? बोले माता जानकी जी की खबर श्री राम जी को जब तक नहीं दे देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। सुरसा नाम की माता ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया। चाहते तो सिद्धि थी शरीर बढ़ा ले, पर बाबा ने बुद्धि का प्रयोग किया और गोस्वामी जी ने लिखा भी।

सुरसा के मुख में वीर हनुमान जी बजरंग बली अंजनानंदन गए और बाहर आ गए। यहाँ एक हमारा तर्क है, दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू की। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू की। सुरसा ने जब सौयोजन का मुख बनाया तो हनुमान जी अंदर गए, चेक कर रहे लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी बड़ी आए कि नहीं, लंग्स काम कर रहे कि नहीं, बदन पयट, रामायण में भी लिखा बदन पयट, अंदर से चेक करके पुनि बाहर आवा। तो एक व्यक्ति बोला वाह हनुमान जी जब अंदर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया। हमने कहा ठटरी के बरे खिड़की जल्दी बंद हो जाती, दरवाजा लेट बंद होता है। जितना बड़ा दरवाजा होता उतनी ही देर से तो बंद होता है, और छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाएगा, बड़ा मुंह बंद होने में भी तो देर लगेगा। बोलो हाँ जी या ना जी बोलो। जब तक सुरसा बंद कर पाई तब तक हनुमान जी ने एंडोस्कोपी करके चेक निकाल दिया, लो माता जी सब बढ़िया है, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हम बाहर आ गए। तो सुरसा बोली गए कहां थे, बोले अंदर। तो सुरसा बोली अंदर क्यों गए थे, बोले वाह आज सुरनमोहिन दीन आहारा, आपसे ही तो देवताओं ने कहा था कि आप भोजन हो, तो भोजन तो पेट में ही जाता, हम तो पेट में हो भी आए और आगे भी गए, बाहर भी आ गए। सुरसा ने जैसे ही सुना तुरंत मुस्कुरा गई, हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता हमें आशीर्वाद दो हम जा रहे। इतना कहते ही तुरंत जो है आहा हनुमान जी को बदन पयट पुनि बाहर आवा, मांगा वेदा ताहि सिर नावा, तुरंत आशीर्वाद दिया राम।

कथा का एक आशय और है, ज्ञानवर्धक। सुनो, हनुमान जी अंदर हो भी आए और बाहर भी आ गए, इसको ही कहते हैं सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। देखो हनुमान जी ने ये किया कैसे, बुद्धि के बल से। किसके बल से? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो

कुछ लोगों के पास बुद्धि होती है, बल नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों के पास दोनों हो पर चलाना ना आता। भाई कई लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है पर चला नहीं पाए, तो क्या काम भाई, गाड़ी हो चलानी नहीं आए। अच्छा, बल हो और बुद्धि ना हो तो या तो तुम अस्पताल में मिलोगे या जेल में। हाँ, बल हो, मोटे ताजे हो, एकदम बॉडी बिल्डर, और बुद्धि ना हो तो किसी लरम पतरे को मार दो, एकदम पतलैया हमारे जैसे डेढ़ हड्डी को। सुरसा नाम की माताजी से निकले तो दूसरा संकट मिला, निश्चरी। पानी में रहने वाली एक निश्चरी है जो गगन में उड़ते हुए पंछियों की छाया को पकड़कर खींच लेती और खा जाती। हनुमान जी उड़े, उसने हनुमान जी को भी पंछी समझ लिया। इसलिए हमारे गांव में कहावत है, सबको एक समान मत मानो, कभी कभी कोयला के अंदर भी आग होती है, जीव जल जाएगी। हाँ, यही गलती की निश्चरी ने। हनुमान जी को भी पंछी मानकर, कोई पक्षी है पक्षी मान करके पकड़ना चाहा। सोई छल हनुमान कहीं कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहु चीन्हा। हनुमान जी तुरंत पहचान गए, हनुमान जी उसके बंधन में नहीं आए, उल्टा कर दिया। क्या

0: उसको एक मुक्का लिया, उसने जैसे ही छाया को पकड़ा हनुमान जी को खींचना चाहा, हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, देवी जी यज्ञ का प्रसाद खाओ, और एक मुक्का दे करके राम नाम सत्य कर दिया और निश्चरी का हो गया निशा सीताराम, नाश हो गया निश्चरी का। अब हनुमान जी आगे बढ़े, इस बात पर एक बात हम कहेंगे, आ सुनो, जब अच्छे काम में बढ़ते हैं तो रोकने वाले आ जाते, तुम भक्ति करोगे तो रोकने वाले आ जाएंगे, काम बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, बाबा बाबा बाबा बाबा लगा रखा है, क्या मिल जाएगा बाबा बाबा, ये बाबा सब ऐसे ही होते हैं बेबिजुली के, काम भगवान भगवान है ही नहीं है, ये मिलेंगे तुम्हें कोई बात नहीं, ये आएंगे कान भरेंगे। अच्छा कान भरने वाले भी बड़े खतरनाक होते, ये खुद तो कुछ करते नहीं है पर तुमसे जरूर करवाएंगे। हा जैसे भीड़ में जो चिल्लाने मारने कहते हे पकड़ो पकड़ो मारो मारो मारो, लेकिन चिल्लाएंगे पर पकड़ेंगे नहीं, हा वो पीछे रहते हैं, जो चिल्लाने वाले होते वो पीछे रहते, ए मार पकड़ पकड़, वो पीछे रहते, वो कभी आगे नहीं आते, ना पकड़ते ना मारते, वो पीछे से कहते मार। दूसरे वाले अलग होते, जो उनकी बातों में आ जाते वो दे देना देना, बाद में खा ली है यार, जय बजरंग बली। हाँ ऐसे बहुत लोग समाज में हैं जो कहने वाले हैं कान भरने वाले। हमारी तुमसे प्रार्थना है बंधुओं, कोई तुम्हारा कान भरे, बरगलाए, बहलाए, फुसलाए, ये कान भरने वालों की बातों में मत आना। कान भरने वालों ने राम को राजा नहीं बनने दिया, मंथरा ने कैकई का कान भर दिया तो अयोध्या में 14 साल के लिए शनि का वास हो गया। ये कान भरने वाले खतरनाक होते हैं, और जहां मंथरा हो भैया समझ जाना उस घर में सब सीताराम। हा एक बात और बोले, कह दो बोलो जरा जोर से तो कहो, बोले राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं, समझ गए ना। तो जिन्हें नहीं सुधरना वो कहीं भी हुआ है।
1: क्या है अधिक मास की महिमा, अधिक मास का क्या है पूजा विधान, अधिक मास की क्या होगी

0: जीवनचर्या और अधिक मास में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए अधिक मास का चमत्कारी रहस्य सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
2: It's college football time. College basketball feels
1: Pardon
2: like
1: in my take.
3: The Rams catching the Commanders.
1: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: आज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
4: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
4: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
0: नहीं चाहिए वैसे, अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
12: गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: चारधाम यात्रा का आज 29वां दिन, करीब 15 लाख पहुंची यात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदार धाम के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली NCR में और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ लू चलने की दी चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 CCTV कैमरों से होगी निगरानी, ADCP बोली ट्रैफिक नियमों का पालन करें, परेशानी से बचें। दक्षिण कोरिया में बुद्ध जयंती से पहले निकली लोटस लैंटर्न फेस्टिवल में रोबोट भिक्षुओं की परेड, उत्सव में दिखी टेक्नोलॉजी के रंग, गांबी समेत 4 रोबोट मॉन्क्स ने लोगों का किया स्वागत। IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहला मुकाबला धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जबकि शाम को दूसरा दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने की तीर्थ यात्रा। चारधाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला, शनिवार को 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में कल 29,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, अब तक 3,88,000 से भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार, शनिवार को 12,000 भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर, अब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 15 मई तक 2,32,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है श्रद्धालुओं की संख्या। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए यात्रा कर रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए यात्रियों का उत्साह आकर्षण का मुख्य केंद्र। तीर्थ यात्री भजन गाकर नृत्य करके आस्था के पथ पर अपना दिखा रहे हैं उत्साह, माहौल में घुरी दिव्यता। ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ चारधाम यात्रा में और भीड़ बढ़ने की संभावना, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। गुजरात के वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में 500 किलो केसर के आम का भव्य अन्नकूट सजाया गया। गुजरात के वड़ताल धाम में आमों की खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महक उठा, भगवान स्वामीनारायण के सामने सजे मैंगो अन्नकूट को देखने के लिए हजारों भक्तों उमड़े। मंदिर में आमों का यह अनोखा महाभोग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा, मंदिर में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य मैंगो अन्नकूट के दर्शन करके भाव विभोर हुए। इससे पहले एकादशी पर 2,500 किलो तरबूज का भी भोग लगाया गया और अब मौसम के अनुसार वड़ताल मंदिर में मैंगो अन्नकूट ने भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। यह आयोजन प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञता प्रतीक है और मंदिर के स्वयंसेवकों ने इस अद्भुत अन्नकूट की खास तैयारियां की। अकोला में शनि जयंती का भव्य उत्सव, 11 किलो कलाकंद केक काटकर भक्तों ने मनाया पर्व। गीतानगर स्थित शनि महाराज और नवग्रह मंदिर में दुर्लभ युग पर उमड़ा जनसैला। मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटिंग और फूलों से सजाया गया, भक्तिमय हो गया पूरा वातावरण। श्रद्धालुओं ने शनिदेव से सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की कामना की। आस्था उल्लास और भक्ति के संगम ने अकोला में शनि जयंती को एक यादगार उत्सव में तब्दील कर दिया। देवघर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया वट सावित्री पर्व, बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके और पूजा करती नजर आई महिलाएं। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर और 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की। प्रेम और समर्पण का प्रतीक है यह त्योहार। सावित्री ने तपस्या से यमराज को किया था प्रसन्न। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनि जयंती पूजा में शामिल हुए बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी भी मौजूद रहे। हावड़ा में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तारा मंदिर में टेका मत्था, मां का आशीर्वाद लिया। बांदीपुरा में 37 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी से माहौल हुआ भावुक का। सुमली मावस उत्सव में श्रद्धालुओं ने नंदकिशोर मंदिर में पूजा अर्चना की। नंदकिशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। दशकों बाद लौटे कश्मीरी पंडित। मधेपुरा के सुंबली गांव में मावस उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सुंबली मावस उत्सव में स्थानीय लोगों और कश्मीरी पंडितों ने मिलकर सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश की। नंदकिशोर मंदिर को फूलों और रोशनी से भव्य रूप दिया गया। बांदीपुरा में आयोजित धार्मिक उत्सव ने पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। नंदकिशोर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या काशी की तरह संभल बनेगा धार्मिक हब, तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को दी बड़ी सौगात। 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति। करोड़ों रुपए की लागत से वंश गोपाल तीर्थ पर विश्राम गृह और इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू। डीएम ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। डीएम ने अफसरों के साथ देखा प्राचीन तीर्थ का नक्शा। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा का नक्शा तैयार करने में जुटी पुलिस। मंदिर निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर जमीन होगी खरीद। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब। 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित। रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का उद्घाटन किया। दिल्ली के शास्त्री नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया। कहा बीजेपी के राज्य में देश भर में हो रहा है विकास। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर मडगांव एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकासनगर में नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन, डूब रहे दो मासूमों की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बाराबंकी में पुलिस का एक अनूठा संदेश, साइकिल पर सवार होकर गश्त पर निकले थाना प्रभारी। रामबन में सीआरपीएफ ने योग प्रतियोगिता का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व की नई पहल, महिला समूह संभाल रही है कैंटीन संचालन। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल होनी अनिवार्य। भोपाल में दुर्लभ सिक्कों और करेंसी नोट की प्रदर्शनी, मुद्रा उत्सव में बेची जा रही है, खरीदे जा रही हैं पुरानी मुद्राएं। एग्जीबिशन में देश भर से आ रहे हैं लोग, नोट और सिक्कों की जमकर हो रही है खरीदारी। मुगलों के जमाने से लेकर वर्तमान काल के नोट और सिक्कों की हो रही है प्रदर्शनी। भोपाल में तीसरी बार लगी है ऐसी प्रदर्शनी, प्राचीन काल के नोट और सिक्कों को देखकर अद्भुत कलेक्शन। पुराने इतिहास में सिक्कों और नोटों के प्रचलन का दिखा कौतूहल। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क में जानवरों की हो रही है खास देखभाल, गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजाम। करीब 100 प्रजातियों के 1500 जानवरों और पक्षियों को तैयार किया गया है अलग का प्लान। भीषण गर्मी से बचाने के लिए जंगल सफारी में एसी, एयर कूलर और पंखों की व्यवस्था। पार्क में जगह जगह लगाए जा रहे हैं स्प्रिंकलर्स, जानवरों और पक्षियों को लगातार पानी का स्प्रे करके पहुंचाई जा रही है ठंडक। गर्मी में जानवरों को एक्टिव और खुश रखने के लिए करवाई जा रही है उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज। सायाजी बाग चिड़ियाघर में भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए खास इंतजाम, पिंजरों में कूलर, स्प्रिंकलर और ठंडे पानी की व्यवस्था। जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए डाइट में भी बदलाव किया गया है, फल जूस और पानी की मात्रा बढ़ाई। सायाजी बाग चिड़ियाघर प्रशासन ने शेर और बाघ जैसे जानवरों के बाड़े में शावर सिस्टम शुरू किया। पक्षियों के लिए विशेष शेड और मिस्ट फैन लगाए गए। चिड़ियाघर प्रबंधन लगातार तापमान में गिरावट बना रहा है। गर्मी बढ़ते ही सायजीबाग चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टरों की टीम नियमित जांच भी कर रही है। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, और बढ़ेगा तापमान, लोगों को सतर्क रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भी भीषण गर्मी, 45 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। टिहरी में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बारिश, सड़कें बनी तालाब। वास की कल की 2 में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण के पैडी का ट्रेलर लॉन्च में होगी एमएस धोनी की एंट्री। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन को अहम रोल। अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा ये इतनी सी थी, के 15 में देखेंगे साथ। फिल्म भूत बंगला ने मचाया धमाल, फिल्म ने 29 दिनों में की 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फ्रेंचाइज को लेकर नेक्स्ट लेवल, रोहित शेट्टी की इस मूवी में वो विलन का किरदार निभाएंगे। गोलमाल 5 में जोड़कर मेकर्स ने इस फिल्म में बढ़ाई, अक्षय कुमार इस मूवी में एक कॉमिक विलन का रोल करेंगे। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा डॉट ड्रेस में लगी बहुत खूबसूरत। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार है नयनतारा, व फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी काफी खूबसूरत। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल के सामने आया सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में नजर आया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: क्या है अधिक मास की महिमा, अधिक मास का क्या है पूजा विधान, अधिक मास की क्या होगी जीवन चर्या, और अधिक मास में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए अधिक मास का चमत्कारी रहस्य सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a tank. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
4: खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे अधिक मास की, क्या होता है अधिक मास, इसके नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। हिंदू पंचांग जो है ना वो बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। ऐसा नहीं कि राजा के नाम पे महीने का नाम रख दिया और जिस महीने को जहां ले गए वहीं सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सोच समझ के नक्षत्रों, ग्रहों, इन सब को देख करके तब पंचांग बनाया गया। अब पंचांग में सामान्यता तो देखिए 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ जाता है, वो है अधिक मास। होता क्या है ये, देखिए हिंदू पंचांगों में 12 मास होते हैं, चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन में इसका समापन होता है। ये जो महीने हैं ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं और चंद्रमा सूर्य के अंतर पर तिथियां बदलती हैं। हर साल सौर मास में यानी सूर्य का जो महीना है और जो चंद्रमा 30 दिन पूरे करता है, चंद्र मास है, इसमें लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। बहुत सारे तरीके के महीने होते हैं हिंदू पंचांग में, सौर मास, चंद्र मास, बृहस्पति का मास। बृहस्पति का जो वर्ष होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के आधार पे कुंभ लगता है। तो देखिए सूर्य और चंद्र मास में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, 3 साल में ये अंतर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल 1 महीना पंचांग में बढ़ जाता है, 1 महीना अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में लोग इसे मलमास कहते हैं, जो उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द अधिक मास है। तो ये अधिक मास है बेसिकली। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का कॉम्बिनेशन संयोग बन रहा है और अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो अधिक मास कैसा समय है, जितने दिन अधिक मास चलेगा उतने दिन क्या करना होगा, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इस पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए अधिक मास को अच्छा समझें बुरा समझें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका क्या महात्म्य बताता है वो भी जान लेते हैं। देखिए अधिक मास को पहले बड़ा अशुभ माना जाता था, लोग कहते थे बड़ा अशुभ समय है, बहुत ही बुरा समय है। तो ऐसी कथा आती है कि अधिक मास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया, उसने कहा कि प्रभु मुझको तो बड़ा अशुभ मानते हैं, मुझ में कोई काम नहीं करते, मुझे अपवित्र समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, अब मेरा ही नाम तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे नाम से अधिक मास जाना जाएगा। यानी बाद में श्री हरि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब जब स्वयं भगवान ने ही अपना नाम दे दिया तो भैया पवित्र बहुत हो गया, इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, सबसे ज्यादा उत्तम महीना। स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण है? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने शरण में आए हुए लोगों के पापों का हरण करना, पापों की क्षमा देना और भक्तों का उद्धार करना, ये सारे गुण पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म का पालन करता है, साधना पूजा दान करता है, तो इसके उत्तम परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए वास्तव में जो अधिक मास है वो धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा उपासना के लिए बहुत ही पवित्र है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। कौन से काम हैं? ये महीना जो है ये आध्यात्मिक महीना है, स्पिरिचुअल महीना है। इस महीने भौतिक जीवन के जो जीवन के सामान्य कार्य हैं, भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो काम करने की मनाही है। विवाह करना, कर्णवेध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण ये सब करना, ये सब मांगलिक कार्य करना मना है। घर का निर्माण करना भी मना है। घर के निर्माण की शुरुआत भी नहीं करेंगे और गृह प्रवेश करना भी मना है। ये संभावना इस समय नहीं बनती। जो काम पहले से चले आ रहे हैं, अब आपका घर बन रहा है तो बनता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो पहले से निश्चित काम है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होना है तो वो होगा ही, बच्चे के जन्म के साथ जो शुभ काम है वो करना जरूरी है, वो होंगे ही, उस पर अधिक मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं की जा सकती, नए शुभ और मंगल कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिक मास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ काम वास्तव में अधिक मास में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। नियमित रूप से अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, अपने गुरु या जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं, उनकी आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अधिक मास में अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार सात्विक रखिएगा। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। पूरे महीने में जब मौका मिले श्रीमद् भागवत का पाठ करिए जितना कर सकें, या रोज कम से कम गीता के कुछ श्लोक पढ़िए, या एक एक अध्याय थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में पढ़िए भगवत गीता का। अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए और जब भी कर सकें यथाशक्ति अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करिएगा। अधिक मास पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस महीने में पूर्वजों और पितरों के लिए दान करना, उनके लिए प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। लौकिक कामनाओं के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति की कामना है आपके लिए, और अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामनाएं अवश्य सफल होती हैं। देखिए, अधिक मास का समय भगवान विष्णु का समय है। ज्यादातर लोग श्री हरि या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। दो मंत्र हैं जिनका जप आप अधिक मास में कर सकते हैं। एक मंत्र सामान्य मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। एक बड़ा अचूक भगवान का नाम मंत्र है, जिसका जप करने से पाप कटते हैं, प्रारब्ध नष्ट होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है। वो भगवान का नाम मंत्र है हरि। तो आप दिन भर रात भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरि हरि हरि हरि हरि नाम का जप निरंतर करते रहें। कल्याण तो होगा ही, पापों का क्षय होगा, पापों का प्रायश्चित होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, इस बार जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, इसीलिए इस बार अधिक मास में पूरे अधिक मास में जल और फल इसका दान करना शुभ रहेगा। ज्येष्ठ में वैसे भी जल का दान करना शुभ होता है और अधिक मास के साथ अगर आप जल और फल का दान करेंगे तो इसकी शुभता, इसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो तो अधिक मास में क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम श्री कृष्ण की उपासना करें। उनकी उपासना में उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय मधुराष्टक का पाठ करके प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: चारधाम यात्रा का आज 29वां दिन, करीब 15 लाख पहुंची यात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर में और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ लू चलने की चेतावनी दी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का करें पालन, परेशानी से बचें। दक्षिण कोरिया में बुद्ध जयंती से पहले निकली लोटस लैंटर्न फेस्टिवल में रोबोट रिक्शों की परेड, उत्सव में देखी टेक्नोलॉजी के रंग, गांधी समेत 4 रोबोट मंक्स ने लोगों का किया स्वागत। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहला मुकाबला धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जबकि शाम को दूसरा दिल्ली और राजस्थान के बीच।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे। अच्छी

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, हिंदू धर्म में अधिक मास की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। हर 3 साल में महीना आता है, भगवान विष्णु का महीना इसे कहा जाता है। तो ऐसे में अधिक मास जो आने वाला है उसमें क्या कुछ नियम है, क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, इस बार जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, इसीलिए इस बार अधिक मास में, पूरे अधिक मास में जल और फल इसका दान करना शुभ रहेगा। ज्येष्ठ में वैसे भी जल का दान करना शुभ होता है, और अधिक मास के साथ अगर आप जल और फल का दान करेंगे तो इसकी शुभता, इसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 17 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:40 तक। नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, दोपहर 2:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आखिरकार ये अधिक मास क्या होता है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। हिंदू पंचांग जो है ना, वो बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। ऐसा नहीं कि राजा के नाम पे महीने का नाम रख दिया और जिस महीने को जहां ले गए वहीं सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सोच समझ के नक्षत्रों, ग्रहों, इन सब को देख करके तब पंचांग बनाया गया। अब पंचांग में सामान्यता तो देखिए 12 होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ जाता है, वो है अधिक मास। होता क्या है ये, देखिए हिंदू पंचांगों में 12 होते हैं, चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन में इसका समापन होता है। ये जो महीने हैं ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं, और चंद्रमा सूर्य के अंतर पर तिथियां बदलती हैं। हर साल सौर मास में, यानी सूर्य का जो महीना है और जो चंद्रमा 30 पूरे करता है, चंद्र मास है, इसमें लगभग 11 का अंतर आ जाता है। बहुत सारे तरीके के महीने होते हैं हिंदू पंचांग में, सौर मास, चंद्र मास, बृहस्पति का मास। बृहस्पति का जो वर्ष होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के आधार पे कुंभ लगता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्र मास में लगभग 11 का अंतर होता है। 3 में ये अंतर लगभग 1 का हो जाता है, इसीलिए हर तीसरे साल 1 पंचांग में बढ़ जाता है, 1 अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में, लोग इसे मलमास कहते हैं, जो उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द अधिक मास है। तो ये अधिक मास है बेसिकली। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का कॉम्बिनेशन संयोग बन रहा है और अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो अधिक मास कैसा समय है, जितने दिन अधिक मास चलेगा उतने दिन क्या करना होगा, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इस पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन क्रोध पर प्रभु नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि अधिक मास का आखिरकार इतना महत्व क्यों है।
1: देखिए, अधिक मास को अच्छा समझें बुरा समझें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका क्या महात्म्य बताता है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अधिक मास को पहले बड़ा अशुभ माना जाता था, लोग कहते थे बड़ा अशुभ समय है, बहुत ही बुरा समय है। तो ऐसी कथा आती है कि अधिक मास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया, उसने कहा कि प्रभु मुझको तो बड़ा अशुभ मानते हैं, मुझ में कोई काम नहीं करते, मुझे अपवित्र समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, अब मेरा ही नाम तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे नाम से अधिक मास जाना जाएगा। यानी बाद में श्री हरि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब जब स्वयं भगवान ने ही अपना नाम दे दिया तो भैया पवित्र बहुत हो गया, इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। सबसे ज्यादा उत्तम महीना, स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण है? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने शरण में आए हुए लोगों के पापों का हरण करना, पापों की क्षमा देना और भक्तों का उद्धार करना, ये सारे गुण पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म का पालन करता है, साधना पूजा दान करता है, तो इसके उत्तम परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं।
0: तो देखिए, अधिक मास आने वाला है, ऐसे में वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस महीने में नहीं करने चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जिन पर खास ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, वास्तव में जो अधिक मास है वो धार्मिक कार्यों के लिए

0: है ये संभावना इस समय नहीं बनती। जो काम पहले से चले आ रहे हैं, अब आपका घर बन रहा है तो बनता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो पहले से निश्चित काम है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होना है तो वो होगा ही, बच्चे के जन्म के साथ जो शुभ काम है वो करना जरूरी है वो होंगे ही, उस पर अधिक मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं की जा सकती, नए शुभ और मंगल कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस प्योर का ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न प्रिया ने हमें लिखा है और प्रिया हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1992। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म का स्थान है बक्सर बिहार। प्रिया कह रही हैं कि मैं अभी टेम्पररी एडहॉक पे टीचिंग की नौकरी कर रही हूं, उसका एक मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या मेरी नौकरी परमानेंट हो पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रिया, शिक्षा क्षेत्र में आपको परमानेंट नौकरी अवश्य मिलेगी, आप कोर्ट में लगे रहिए। संभावना ज्यादातर देखिए ये दिखाई देती है कि इस साल के अंत तक जाते जाते आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, न्यायालय से आपको राहत मिलेगी, ये संभावना बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं,

0: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न शैलजा जी ने हमें लिखा है और शैलजा जी हमें मेल लिखती हैं अमेरिका से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1982, जन्म का समय सुबह के 6:10, जन्म का स्थान है अहमदाबाद गुजरात। शैलजा कह रही हैं कि कुछ समय के लिए मैं नौकरी करने के लिए विदेश में आई हुई हूं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूँ या मुझे भारत में ही अच्छा करियर और अच्छा जीवन मिलेगा। शैलजा आपकी कुंडली के हिसाब से फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत कमजोर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2026 में तो संभवतः विदेश रहेंगी ही, अगले साल आपको वापस आना पड़ सकता है और आपका सेटलमेंट इंडिया में ही होगा, अच्छा रहेगा, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। आपने ये भी लिखा है कि बेवजह की छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको लगी रहती हैं, उसके लिए आपको दो उपाय बताते हैं आपके करियर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का या तो पाठ करें या सुन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो अधिक मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, अधिक मास में कौन कौन से कार्य करना लाभदायक होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए ऐसा नहीं है कि अधिक मास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ काम वास्तव में अधिक मास में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। नियमित रूप से अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, अपने गुरु या जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अधिक मास में अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार सात्विक रखिएगा। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। पूरे महीने में जब मौका मिले श्रीमद् भागवत का पाठ करिए जितना कर सकें, या रोज कम से कम गीता के कुछ श्लोक पढ़िए या एक एक अध्याय थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में पढ़िए भगवत गीता का। अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए और जब भी कर सकें यथाशक्ति अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करिएगा। अधिक मास पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस महीने में पूर्वजों और पितरों के लिए दान करना, उनके लिए प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। लौकिक कामनाओं के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति की कामना है आपके लिए, और अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामनाएं अवश्य सफल होती हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
1: तो अधिक मास में ग्रहों को किस तरीके से अनुकूल बनाया जा सकता है और ईश्वर की कृपा किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अधिक मास तो भगवान का ही महीना है, भगवान के नाम का महीना है। अगर आप प्रार्थना करें, साधना करें, जप तप करें तो आप ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। क्या उपाय करें? पूरे महीने सुबह और शाम भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिएगा। थोड़ा सा समय सुबह निकालें और थोड़ा सा समय शाम को निकाल करके भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करें। शाम के समय उनकी जब आप पूजा करेंगे तो उनके सामने घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे और नियमित रूप से भगवान की कथा सुनिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर भगवान की कथा आती रहती है, वहां सुन सकते हैं, या श्रीमद् भागवत में भगवान की कथाएं हैं, हरिवंश पुराण में भगवान की लीलाएं हैं, उसको सुनिए और पढ़िए। और चूंकि ज्येष्ठ के महीने की बात है, ज्येष्ठ के महीने का अधिक मास है, इसलिए निर्धनों को जल रेगुलरली दीजिए। शीतल जल, शरबत ये निर्धनों को पिलाइए और ऋतु फल, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इसका दान करिए। और नियम ये कहता है कि अधिक मास के अंत में निर्धनों में 30 की संख्या में मिठाई का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं तो निसंदेह आपको कृपा मिलेगी, ग्रहों की बाधा दूर होगी। देखिए, अधिक मास का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें, जैसे जीवन चल रहा है चलने दें। 3 साल में एक बार इतना पवित्र अवसर आया है तो आप मांस मदिरा का त्याग कर दें, प्याज लहसुन भी छोड़ दें तो और भी अच्छा होगा। पवित्रता से आहार ग्रहण करें और पवित्रता से भगवान के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। सामान्य समय में नाम जपने का या सामान्य समय में साधना करने का जितना फल मिलता है उससे ज्यादा शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, परिवार की समस्या से परेशानी होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न ब्रजभूषण जी ने हमें लिखा है और ब्रजभूषण जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1978। जन्म का समय शाम के 7:15। जन्म स्थान है वाराणसी। ब्रजभूषण जी लिख रहे हैं कि पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था गुड़गांव में, और एक साल पहले मेरी नौकरी छूट गई तो मैं वापस वाराणसी चला आया। क्या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए या दोबारा मुझे नौकरी के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए? ब्रजभूषण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा कि आप दोबारा नौकरी का ही प्रयत्न करें, और अगर अभी प्रयत्न करेंगे तो संभवतः जुलाई अगस्त के समय में आपको नौकरी मिलेगी और आपको वाराणसी से बाहर निकलना पड़ेगा। लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव इस तरफ कोशिश करिए, नौकरी पा जाएंगे। जब नौकरी पा जाते हैं तो नौकरी के साथ पैरेलल अगर कोई व्यापार करें, खाने पीने की चीजों का, कपड़ों का, दवाइयों का, तो पैरेलल ऐसा व्यापार करने पे आपको लाभ होगा। अब आपको नौकरी जल्दी मिले, बेहतर मिल जाए, इसके लिए एक रत्न आता है, उसे कहते हैं लाजवर्त, लैपिस कहते हैं अंग्रेजी में। एक लाजवर्त बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का लाजवर्त, चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की शाम को लाजवर्त धारण करिए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आज के अंतिम सवाल के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न किशोर जी ने हमें लिखा है और किशोर जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1991। जन्म का समय सुबह के 7:00। जन्म का स्थान है पुणे महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा हूं लेकिन पार्टनर के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे पार्टनरशिप से अलग हो जाना चाहिए, और अगर मैं अलग हो करके आगे काम करूं तो क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? किशोर जी, आपके लिए पार्टनरशिप से अलग हो जाना ही बेहतर है। पार्टनरशिप में रह करके आप ज्यादा सफलता देखिए पाएंगे नहीं, और आज नहीं तो कल आपको नुकसान होगा ही। इसीलिए बुद्धिमानी कहती है कि पार्टनरशिप से अलग हो जाइए और अपना अकेले इंडिपेंडेंट काम करिए। तरक्की करने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन साल भर के अंदर जिंदगी रास्ते पे आ जाएगी, और भविष्य में जब आगे बढ़ें तो कृपा करके दोबारा पार्टनरशिप में मत जाइएगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: पंडित जी, अधिक माह के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हर 3 साल में ये महीना आता है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिक माह में क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करके प्रभु की प्राप्ति हमें हो सकती है, उनकी कृपा हमें मिल सकती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी देखिए, अधिक मास का समय भगवान विष्णु का समय है। ज्यादातर लोग श्री हरि या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। 2 मंत्र हैं जिनका जप आप अधिक मास में कर सकते हैं। एक मंत्र सामान्य मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। एक बड़ा अचूक भगवान का नाम मंत्र है जिसका जप करने से पाप कटते हैं, प्रारब्ध नष्ट होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है, वो भगवान का नाम मंत्र है हरि। तो आप दिन भर रात भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरि हरि हरि हरि हरि नाम का जप निरंतर करते रहें, कल्याण तो होगा ही, पापों का क्षय होगा, पापों का प्रायश्चित होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 17 मई को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 17 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में किसी भी तरह का जोखिम ना लें, अक्टूबर से जीवन की स्थितियों में सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव के मंत्रों का अगर जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या अधिक मास का समय अशुभ समय होता है और इसीलिए क्या इस समय शुभ काम नहीं करते हैं? देखिए, अधिक मास परम पवित्र मास है। भगवान ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दे दिया है। इस महीने आप धर्म के कार्य करें, ईश्वर के मार्ग पर चलें, इसलिए जो भौतिक जीवन के कार्य हैं वो नहीं किए जाते। इस समय दान और उपासना करने के अत्यधिक शुभ फल जीवन में प्राप्त होते हैं।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 मई 2026 रविवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय स्वास्थ्य के मामले में कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। इस समय अपने पेट का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाने में इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो तो अधिक मास में क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम श्री कृष्ण की उपासना करें। उनकी उपासना में उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय मधुराष्टक का पाठ करके प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या है अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: WGU offers an affordable path to becoming a teacher. Our Bachelor of Arts in Elementary Education program is online, flexible, and built around a flat rate tuition model. That means you can complete as many courses as you can handle for each term without paying more, giving you more control over the costs of your education. It's a sustainable investment in a career that truly changes lives. Yours and your future students. Your path to the classroom starts at WGU. Learn more at wgu.edu.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: गोलमाल फाइव का हम चर्चा कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग लगातार जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का। जी हाँ, क्योंकि गोलमाल फाइव में इस बार अक्षय कुमार की भी एंट्री होने जा रही है। जहां पर अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है, वहीं पर इस फिल्म में अक्षय की फीम भी चर्चा में लगातार बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: महाराष्ट्र के अमरावती से खबर निकल कर आई है। देश के दूसरे शहरों की तरह इन दिनों अमरावती में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक कर्मी जो है अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। ऐसे में इन ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए विशेष जैकेट तैयार की गई है, जो 45 और 40 डिग्री की गर्मी में भी इन्हें कूल रखती है। आखिर यह जैकेट काम कैसे करती है, रिपोर्ट देखिए।
2: महाराष्ट्र में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, खासकर विदर्भ के इलाकों में पारा हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है। हालत यह है कि दिन चढ़ते ही सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है, इसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ये तस्वीरें विदर्भ के ही अमरावती जिले की हैं, जहां जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोग 45 डिग्री वाली गर्मी से खुद को बचाने के लिए तरह तरह के जतन करते दिख रहे हैं। किसी ने गमछे से चेहरे और सिर को ढक रखा है और किसी ने स्कार्फ से खुद को ढक रखा है। इसी तरह शहर के ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे इन जवानों ने भी हीट स्ट्रोक से खुद को बचाने के लिए एक रक्षा कवच पहन रखा है। इस कवच का नाम एयर कूलिंग जैकेट है। बताया गया है कि अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय ने दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला किया, जिसके तहत करीब 500 पुलिस कर्मियों को ये खास जैकेट दिए गए हैं। ये सभी जैकेट अमरावती के जिला नियोजन समिति के फंड से खरीदे गए, जिनकी कीमत 7,000 रुपए प्रति जैकेट बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस एयर कूलिंग जैकेट में ऐसा क्या है जिससे 45 डिग्री की गर्मी में इन जवानों को राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग की इस जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे दो छोटे पंखे लगे हैं जो जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट करते रहते हैं। इन पंखों को 10,000 mAh के पावर बैंक से चलाया जाता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। लेकिन इसके लिए ड्यूटी पर आने से पहले मोबाइल की तरह इसे चार्ज करना होता है और एक बार चार्ज होने पर ये कई घंटों तक बिना रुके ठंडक पहुँचाती है। इस जैकेट से खुद का बचाव कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी इस पहल से तो खुश हैं ही, शहर में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास जाकर इस जैकेट को करीब से समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 45 से 46 डिग्री की भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए ये पहल बेहद सराहनीय है।
3: एयरकूल जैकेट से क्या फायदा हो रहा है, हमारे साथ पुलिस कर्मचारी है, इसका फायदा किस तरह से हो रहा है, क्या क्या है इसमें जरा बताएं मुझे। क्योंकि देखिए इसमें जो है ये दो फैंस लगे हुए है, ये जो दो फैंस है ये अंदर हवा बाहर की हवा जो है वो अंदर खींचते हैं और अंदर जो है जो पसीना आता है वो जो है इस हवा के कारण कम होता है। और साथ ही ये फैन किस पर चलते हैं तो मुझे बताइए जरा। यहाँ
4: पावर बैंक दिए इसको।
3: हाँ हाँ
4: ये पावर बैंक दिए। हाँ। पावर बैंक के साथ में अटैच किए उसको।
3: हाँ।
4: और इसके इससे दोनों भी फैन चलते हैं और उसके साथ में उसके बटन भी दिए उसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए।
3: हाँ हाँ। और ये बैटरी चार्ज कर।
4: हाँ ये बैटरी चार्ज करना पड़ता है उसको
3: तो इससे अच्छा कूल होता है। देखिए अमूमन जो है जैकेट यहाँ पर आप देखिए मैं ऐसा दबा रहा हूँ यानी इसमें पूरी तरीके से अंदरूनी हवा भरी है और इसको पैकअप करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का ये दिया गया है। मानो ये जो है ये पूरी तरीके से अंदर जो है इनके हवा है, जो पसीना इनको आ रहा है वो पसीना इस हवा के चलते नहीं आएगा और इसीलिए ये जैकेट जो है वो एयर कूल यहाँ पर नजर आ रहा है। किस तरह का ये जैकेट है, जैकेट से कितनी राहत है और पहले कैसा था?
4: पहले वो बहुत गर्म होता था, अभी दोनों साइड से फैन वगैरह तो उसके बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेटर अच्छा फील हो रहा
3: है। राहत नजर आ रही है इस एयरकूल जैकेट से?
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहत नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं धूप बहुत ज्यादा है तो उसके वजह से जो पसीना बहुत आता था तो ये जैकेट पहनने से अभी काफी राहत।
2: बीते कुछ सालों में मई और जून के महीने में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उसने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। ऐसे में अमरावती में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ये पहल न सिर्फ सराहनीय है बल्कि ये देश के दूसरे राज्यों में भी एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
1: चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और उल्लास के साथ जारी है। दुर्गम चढ़ाई है, मौसम की दुश्वारियां भी हैं लेकिन इसके बावजूद पवित्र यात्रा के लिए जा रहे भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर यात्रियों का जोश देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने यात्रियों से खास बातचीत की, देखिए।
6: चारधाम यात्रा अपने पूरे सवाब पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल मार्ग पर और ये स्थान है राम मंदिर। राम मंदिर में जो यात्रियों का एक ठहराव होता है क्योंकि पैदल यात्रा है इस वजह से यहाँ पर ठहराव होना स्वाभाविक है। थकान उतारते हुए यहाँ पर तीर्थयात्री रुकते हैं और इसके बाद फिर दोबारा से खड़ी चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। कैमरामैन को चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से तीर्थयात्री आनंद ले रहे हैं और गाना बजा करके भजन करके वो बिल्कुल माँ यमुना की आराधना कर रहे हैं। यहाँ की कुल मिलाकर के जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जो यमुनोत्री धाम के जो यात्रियों की संख्या के आंकड़े की अगर बात की जाए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं 15 तारीख मई तक 232,000 से भी अधिक तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं और अभी भी अनवरत रूप से यात्रा जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तीर्थयात्री उत्साह मना रहे हैं, नाच रहे हैं।

0: जोधपुर जिला झालावन गांव से आए।
1: कितना आनंद आ रहा है?
0: बहुत आनंद आता है। बस जीवन सफल हो गया।
1: अच्छा एक चीज बताइए कि ऋषिकेश या हरिद्वार से आप यहाँ तक पहुँचे, कुछ असुविधाएं तो आपको नहीं हुई?
0: नहीं, ऐसी विशेष सुविधा नहीं थी, नॉर्मल एक दो हुई थी, तो हमने शिकायत भी की थी और हमारी शिकायत सॉल्व हो गई।
1: तो कुल मिलाकर के इस बार की जो चार धाम की यात्रा है वो बिल्कुल सही और निर्बाध रूप से चल रही है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुव्यवस्थित है। पूरी प्रशासन, पूरा कर्मचारियां, निगम को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और सभी भक्तों को धन्यवाद दो जिन्होंने उनका सहयोग भी किया है, और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: अच्छा, ये गाना बजाते हुए आप जो है चार धाम की यात्रा करेंगे?
0: हम राजस्थान से निकले हैं, जोधपुर जिले झालावन से, और चार धाम की यात्रा में हम गाजे साथ में संगीत में, सभी हमारे 9-10 की टीम है और सब गाजे बाजे के साथ भगवान का भजन करते हैं, बड़े भाव से आनंद से झूमते आ रहे हैं।
1: ओके, एक दो और तीर्थयात्री इनसे भी जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका?
2: भुवक्ति।
1: कहाँ से आए?
2: इंदौर से।
1: कोई परेशानी तो नहीं हुई?
2: नहीं, कोई भी परेशानी।
1: कितना होता है?
3: बस थोड़ा सा परेशानी यही है कि जो घोड़े कच्चर है उनके लिए एक अलग सा रास्ता बना है यहाँ पे सरकार, उसी में डिफिकल्टीज होती है थोड़ी सी, बाकी कोई समस्या नहीं है। बहुत
1: अभी अभी आप यमुनोत्री जा रहे हैं पैदल?
3: यमुनोत्री जा रहे हैं, हम ट्रेकिंग कर रहे हैं अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
1: थकान कितनी हो रही है पैदल?
3: थकान तो नहीं हो रही है, क्योंकि भक्ति है, बाबा का आशीर्वाद है, भक्ति है, और बाबा का नाम लेते लेते हम चढ़ रहे हैं बिल्कुल।
1: तो ये आप समझ सकते हैं, यात्रियों ने अपनी भावना व्यक्त की कि थकान जरूर है लेकिन भगवान की भक्ति में थकान पूरी तरह से फीकी नजर आ रही है। ओंकार बाहुगुना यमुनोत्री धाम।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
8: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: चारधाम यात्रा का आज 29वां दिन, करीब 15 लाख पहुंची यात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। दिल्ली एनसीआर में और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ लू चलने की दी चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का करें पालन, परेशानी से बचे। 23वें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मैराथन 2026 में जमकर दौड़े धावक, 50 देशों के 1500 प्रतिभागी मैराथन में हुए शामिल, दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत मैराथनों में से एक मानी जाती है ये मैराथन। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, पहला मुकाबला धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जबकि शाम को दूसरा मैच दिल्ली और राजस्थान के बीच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे।
2: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने की तीर्थ यात्रा। चारधाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला, शनिवार को 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में कल 29,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, अब तक 3,88,000 से भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार, शनिवार को 12,000 भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर, अब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 15 मई तक 2,32,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है श्रद्धालुओं की संख्या। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए यात्रा कर रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए यात्रियों का उत्साह आकर्षण का मुख्य केंद्र। तीर्थ यात्री भजन गाकर नृत्य करके आस्था के पथ पर अपना दिखा रहे हैं उत्साह, माहौल में घुरी दिव्यता। ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ चारधाम यात्रा और भीड़ बढ़ने की संभावना, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। गुजरात के वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में 500 किलो केसर के आम का भव्य अन्नकूट सजाया गया। गुजरात के वड़ताल धाम में आमों की खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महक उठा, भगवान स्वामीनारायण के सामने सजे मैंगो अन्नकूट को देखने के लिए हजारों भक्तों उमड़े। मंदिर में आमों का यह अनोखा महाभोग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा, मंदिर में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य मैंगो अन्नकूट के दर्शन करके भाव विभोर हुए। इससे पहले एकादशी पर 2,500 किलो तरबूज का भी भोग लगाया गया और अब मौसम के अनुसार वड़ताल मंदिर में मैंगो अन्नकूट ने भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। यह आयोजन प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञता प्रतीक है और मंदिर के स्वयंसेवकों ने इस अद्भुत अन्नकूट की खास तैयारियां की। अकोला में शनि जयंती का भव्य उत्सव, 11 किलो कलाकंद केक काटकर भक्तों ने मनाया पर्व। गीतानगर स्थित शनि महाराज और नवग्रह मंदिर में दुर्लभ युग पर उमड़ा जनसैला, मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटिंग और फूलों से सजाया गया, भक्तिमय हो गया पूरा वातावरण। श्रद्धालुओं ने शनिदेव से सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की कामना की। आस्था उल्लास और भक्ति के संगम ने अकोला में शनि जयंती को एक यादगार उत्सव में तब्दील कर दिया। देवघर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया वट सावित्री पर्व, बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके और पूजा करती नजर आई महिलाएं। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर और 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की। प्रेम और समर्पण का प्रतीक है यह त्योहार। सावित्री ने तपस्या से यमराज को किया था प्रसन्न। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनि जयंती पूजा में शामिल हुए बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी भी मौजूद रहे। हावड़ा में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तारा मंदिर में टेका मत्था, मां का आशीर्वाद लिया। बांदीपुरा में 37 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी से माहौल हुआ भावुक का। सुमडी मावस उत्सव में श्रद्धालुओं ने नंदकिशोर मंदिर में पूजा अर्चना की। नंदकिशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। दशकों बाद लौटे कश्मीरी पंडित। मधेपुरा के सुंबली गांव में मावस उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सुंबली मावस उत्सव में स्थानीय लोगों और कश्मीरी पंडितों ने मिलकर सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश की। नंदकिशोर मंदिर को फूलों और रोशनी से भव्य रूप दिया गया। मांदीपुरा में आयोजित धार्मिक उत्सव ने पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। नंदकिशोर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या काशी की तरह संभल बनेगा धार्मिक हब, तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को दी बड़ी सौगात। 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति। करोड़ों रुपए की लागत से वंश गोपाल तीर्थ पर विश्राम गृह और इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू। डीएम ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। डीएम ने अफसरों के साथ देखा प्राचीन तीर्थ का नक्शा। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा का नक्शा तैयार करने में जुटी पुलिस। मंदिर निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर जमीन होगी खरीद। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब। 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित। रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का उद्घाटन किया। दिल्ली के शास्त्री नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया। कहा बीजेपी के राज्य में देश भर में हो रहा है विकास। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर मडगांव एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकासनगर में नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन, डूब रहे दो मासूमों की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बाराबंकी में पुलिस का एक अनूठा संदेश, साइकिल पर सवार होकर गश्त पर निकले थाना प्रभारी। रामबन में सीआरपीएफ ने योग प्रतियोगिता का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व की नई पहल, महिला समूह संभाल रही है कैंटीन संचालन। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल होनी अनिवार्य। भोपाल में दुर्लभ सिक्कों और करेंसी नोट की प्रदर्शनी, मुद्रा उत्सव में बेची जा रही है, खरीदे जा रही हैं पुरानी मुद्राएं। एग्जीबिशन, देश भर से आ रहे हैं लोग, नोट और सिक्कों की जमकर हो रही है खरीदारी। मुगलों के जमाने से लेकर वर्तमान काल के नोट और सिक्कों की हो रही है प्रदर्शनी। भोपाल में तीसरी बार लगी ऐसी प्रदर्शनी, प्राचीन काल के नोट और सिक्कों को देखकर अद्भुत कलेक्शन। पुराने इतिहास में सिक्कों और नोटों के प्रचलन का दिखा कौतूहल। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क में जानवरों की हो रही है खास देखभाल, गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजाम। करीब 100 प्रजातियों के 1500 जानवरों और पक्षियों को तैयार किया गया है अलग का प्लान। भीषण गर्मी से बचाने के लिए जंगल सफारी में एसी, एयर कूलर और पंखों

दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, और बढ़ेगा तापमान, लोगों को सतर्क रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भी भीषण गर्मी, 45 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। टिहरी में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बारिश, सड़कें बनी तालाब। वास की कल की टू में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण के पैडी का ट्रेलर लॉन्च में होगी एमएस धोनी की एंट्री। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन को अहम रोल। अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा ये इतनी सी थी, के 15 में देखेंगे साथ। फिल्म भूत बंगला ने मचाया धमाल, फिल्म ने 29 दिनों में की 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई। गुलमर 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फ्रेंचाइज को लेकर नेक्स्ट लेवल, रोहित शेट्टी की इस मूवी में वो विलन का किरदार निभाएंगे। गुलमर 5 में जोड़कर मेकर्स ने इस फिल्म में बढ़ाई, अक्षय कुमार इस मूवी में एक कॉमिक विलन का रोल करेंगे। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा डॉट ड्रेस में लगी बहुत खूबसूरत। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार है नयनतारा, वह फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी काफी खूबसूरत। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल के सामने आया सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में नजर आया। वर्ल्ड फेमस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का धमाकेदार फिनाले, बुल्गारिया ने 516 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया फिनाले, 25 देशों के संगीत कलाकार शामिल हुए। बुल्गारिया के हिट गाने बंगारंगा ने जीता लोगों का दिल, सिंगर दारा केंदास ने गाने में डाली जान। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के दौरान जुड़े रहे करोड़ों दर्शक, वोटिंग और जूरी ने मिलकर लिया फैसला। यूरोविजन के फिनाले में 343 पॉइंट्स के साथ इसराइल रहा रनर अप, यूनाइटेड किंगडम को मिले सबसे कम एक अंक। चीन में ग्रेट वॉल मैराथन का आयोजन हुआ, 1500 धावकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन में 50 से ज्यादा देशों के रनर्स हुए शामिल, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के 138 धावक शामिल हुए। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक मानी जाती है ग्रेट वॉल मैराथन। प्रतियोगिता में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर फन रन का आयोजन किया गया। 350 रनर्स के साथ साल 1999 में हुई थी ग्रेट वॉल मैराथन की शुरुआत। रियो डी जेनेरियो ने एरोस्पेस म्यूजियम में भव्य मिसाइल एयर शो का आयोजन किया। ब्राजीलियाई वायु सेना की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन, एयर शो में लोगों को मुफ्त में दिया गया प्रवेश। शो में मशहूर स्मोक स्क्वाड्रन ने दिखाई शानदार हवाई करतब, तेज रफ्तार विमानों की उड़ान देखकर रोमांचित हुए दर्शक। एयर शो में 100 से ज्यादा पुराने और आधुनिक विमानों को किया गया शामिल, लोगों को विमानों के करीब से समझने का मौका मिला। एयर शो के दौरान लोगों के लिए चलाई गई कई मनोरंजक गतिविधियां। साई सुदर्शन ने T20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया ई धुरंधर का महारिकॉर्ड तोड़ दिया। सुदर्शन इनिंग्स के हिसाब से सबसे तेज 3000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। शॉन मार्श ने 85 इनिंग्स में पूरे किए थे 3000 रन, सुदर्शन ने 78वीं पारी में ही हासिल कर ली सफलता। फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी की बराबरी, 10 छक्के और 4 चौके की मदद से 35 गेंदों में बनाए 93 रन।

0: गुजरात टाइटंस को हाई स्कोरिंग मुकाबले में हरा कर केकेआर को मिला मौका। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो बड़े मुकाबले, पहला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, शाम को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम होंगी आमने सामने। प्लेऑफ में बने रहने के लिए दिल्ली के लिए जीत जरूरी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 247 रन से दर्ज की धमाकेदार जीत, गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया। फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की, केकेआर को मिली तेज शुरुआत। अंग कृष्णा रघुवंशी की 82 रनों की पारी, मध्यक्रम की मजबूत संस्था बनी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या है अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा और ईंधन बचाने के लिए नए नए प्रयोग किए जाते रहते हैं। अब केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से हाइड्रोजन बस सर्विस शुरू की गई है। 35 सीटों वाली दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें सेंट्रल विस्टा इलाके में दौड़ने भी लग गई हैं और इस परियोजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने DMRC को 35 सीटों वाली दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें उपलब्ध कराई हैं। ये पेट्रोल बचाएंगी और पर्यावरण के लिए वरदान साबित होंगी।
4: दिल्ली की सड़कों पर अब हाइड्रोजन की जादुई शक्ति दिखेगी। इससे न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। दिल्ली के VVIP सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली शटल बस सर्विस शुरू हो गई है। अभी फिलहाल दो हाइड्रोजन बसेस चलाई जा रही हैं।
5: टुडे इज द डे ऑफ द हाइड्रोजन बसेस, दे एंजॉय द राइड एंड यू नो लेट अस कम टुगेदर टू सेव फ्यूल।
4: इस बस सेवा से केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी। ये बसें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक और शाम को 3:30 से 6:30 तक चलेंगी। हर 30 मिनट में एक बस उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी बात, इन बसेस में GPS ट्रैकिंग और CCTV सिस्टम भी लगाए गए हैं और किराया 10 और 15 रुपए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए अब आपको सोशल मीडिया के कुछ ऐसे वायरल वीडियोस दिखाते हैं जो कभी आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
6: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है।
4: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
3: with artists like James Bay, so come on, let it go.
2: Nora Jones,
4: my heart is drained.
2: Daniel Caesar,
5: we both know how,
2: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: देश में एलपीजी गैस संकट होगा दूर, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर साइम। चारधाम यात्रा का आज 29वां दिन, करीब 15 लाख पहुंची यात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का करें पालन, परेशानी से बचें। 23वें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मैराथन 2026 में जमकर दौड़े धावक, 50 देशों के 1500 प्रतिभागी मैराथन में हुए शामिल, दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत मैराथन्स में से एक मानी जाती है मैराथन। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान के बीच मैच।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनके जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
1: Who is the president of India?
0: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
2: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनैलिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
2: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर रहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
2: बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
2: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
2: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
2: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7। But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow, I'm going to be 8 tomorrow.
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
2: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
1: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
2: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
2: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
2: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ...2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
3: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट वन जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या हैं अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture, hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: देश में एलपीजी गैस संकट होगा दूर, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर साइमी। चारधाम यात्रा का आज 29वां दिन, करीब 15 लाख पहुंची यात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का करें पालन, परेशानी से बचें। 23वें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मैराथन 2026 में जमकर दौड़े धावक, 50 देशों के 1500 प्रतिभागी मैराथन में हुए शामिल। दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत मैराथन्स में से एक मानी जाती है यह मैराथन। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे अधिक मास की। क्या होता है अधिक मास, इसके नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि रात के 9:40 तक। नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। हिंदू पंचांग जो है ना, वो बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। ऐसा नहीं कि राजा के नाम पे महीने का नाम रख दिया और जिस महीने को जहां ले गए वहीं सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सोच समझ के नक्षत्रों, ग्रहों, इन सब को देख करके तब पंचांग बनाया गया। अब पंचांग में सामान्यता तो देखिए 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ जाता है, वो है अधिक मास। होता क्या है ये? देखिए, हिंदू पंचांगों में 12 मास होते हैं, चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन में इसका समापन होता है। ये जो महीने हैं, ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं और चंद्रमा सूर्य के अंतर पर तिथियां बदलती हैं। हर साल सौर मास में, यानी सूर्य का जो महीना है और जो चंद्रमा 30 दिन पूरे करता है, चंद्र मास है, इसमें लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। बहुत सारे तरीके के महीने होते हैं हिंदू पंचांग में, सौर मास, चंद्रमास, बृहस्पति का मास। बृहस्पति का जो वर्ष होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के आधार पे कुंभ लगता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। 3 में ये अंतर लगभग 1 का हो जाता है, इसीलिए हर तीसरे साल 1 पंचांग में बढ़ जाता है, 1 अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में, लोग इसे मलमास कहते हैं, जो उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द अधिक मास है। तो ये अधिक मास है बेसिकली। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का कॉम्बिनेशन संयोग बन रहा है और अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो अधिक मास कैसा समय है, जितने दिन अधिक मास चलेगा उतने दिन क्या करना होगा, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इस पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन क्रोध पर प्रभु नियंत्रण बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास को अच्छा समझें बुरा समझें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका क्या महात्म्य बताता है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अधिक मास को पहले बड़ा अशुभ माना जाता था। लोग कहते थे बड़ा अशुभ समय है, बहुत ही बुरा समय है। तो ऐसी कथा आती है कि अधिक मास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया। उसने कहा कि प्रभु, मुझको तो बड़ा अशुभ मानते हैं, मुझ में कोई काम नहीं करते, मुझे अपवित्र समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरा ही नाम तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे नाम से अधिक मास जाना जाएगा। यानी बाद में श्री हरि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब जब स्वयं भगवान ने ही अपना नाम दे दिया तो भैया पवित्र बहुत हो गया। इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, सबसे ज्यादा उत्तम महीना। स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण है? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने शरण में आए हुए लोगों के पापों का हरण करना, पापों की क्षमा देना और भक्तों का उद्धार करना। ये सारे गुण पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म का पालन करता है, साधना पूजा दान करता है, तो इसके उत्तम परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, वास्तव में जो अधिक मास है वो धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा उपासना के लिए बहुत ही पवित्र है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। कौन से काम हैं? ये महीना जो है ये आध्यात्मिक महीना है, स्पिरिचुअल महीना है। इस महीने भौतिक जीवन के जो जीवन के सामान्य कार्य हैं, भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो काम करने की मनाही है। विवाह करना, कर्ण वेध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण, ये सब करना, ये सब मांगलिक कार्य करना मना है। घर का निर्माण करना भी मना है। घर के निर्माण की शुरुआत भी नहीं करेंगे और गृह प्रवेश करना भी मना है। ये संभावना इस समय नहीं बनती। जो काम पहले से चले आ रहे हैं,
अब आपका घर बन रहा है तो बनता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या जो पहले से निश्चित काम है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होना है तो वो होगा ही, बच्चे के जन्म के साथ जो शुभ काम है वो करना जरूरी है वो होंगे ही, उस पर अधिक मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं की जा सकती, नए शुभ और मंगल कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिक मास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ काम वास्तव में अधिक मास में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। नियमित रूप से अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, अपने गुरु या जिनको भी अपना इष्ट

दान करिएगा। अधिक मास पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस महीने में पूर्वजों और पितरों के लिए दान करना, उनके लिए प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। लौकिक कामनाओं के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति की कामना है आपके लिए, और अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामनाएं अवश्य सफल होती हैं। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, परिवार की समस्या से परेशानी होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास का समय भगवान विष्णु का समय है, ज्यादातर लोग श्री हरि या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। दो मंत्र हैं जिनका जप आप अधिक मास में कर सकते हैं। एक मंत्र सामान्य मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। एक बड़ा अचूक भगवान का नाम मंत्र है जिसका जप करने से पाप कटते हैं, प्रारब्ध नष्ट होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है, वो भगवान का नाम मंत्र है हरि। तो आप दिन भर रात भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरि हरि हरि हरि हरि नाम का जप निरंतर करते रहें, कल्याण तो होगा ही, पापों का क्षय होगा, पापों का प्रायश्चित होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, इस बार जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, इसीलिए इस बार अधिक मास में, पूरे अधिक मास में जल और फल इसका दान करना शुभ रहेगा। ज्येष्ठ में वैसे भी जल का दान करना शुभ होता है, और अधिक मास के साथ अगर आप जल और फल का दान करेंगे तो इसकी शुभता, इसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो,
तो अधिक मास

0: में क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम श्री कृष्ण की उपासना करें। उनकी उपासना में उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय मधुराष्टक का पाठ करके प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: सरसों के तेल का दान करने से जीवन में किस तरह की समस्या दूर होती है? काले कपड़े और काले जूते का दान आपके जीवन में किस चीज को बेहतर कर देता है? शनिदेव की कौन सी हैं चमत्कारी वस्तुएं और क्या हैं उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
10: तुलसीदास जी कहते हैं, भैया हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो ऐसे नहीं लग रहे कि हनुमान जी उड़ रहे। बोले फिर कैसे लग रहे? कैसे लगे? बोले जिमी अमोघ है रघुपति करवाना, जैसे राम जी का अमोघ बाण जा रहा हो हनुमान जी भी वैसे ही जा रहे। बोलो सीतारा, सीतारा। जोर से बोलो और जोर से बोलो। यहां पर एक बात बोले पागलो, कह दो बोलो, कहो बोलो। भैया जो अपने हृदय में राम जी को धारण कर लेगा उसकी जिंदगी में सफलता की रफ्तार बस या ट्रेन जैसी नहीं होगी, रॉकेट जैसी होगी। हाँ हाँ, जो राम जी को हृदय में रख लेगा वो सफलता इतनी जल्दी पाएगा, इतनी जल्दी पाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा कि कब क्या हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, सफलता पा लेने के बाद ये मत सोचना कि हमने पाई है, ये समझना भगवान ने कृपा की है तब मिली है, वरना डूबते भी भगवान। अच्छा सुनो, थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए भगवान जल्दी ठिकाने लगा देते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक बार एक गांव में एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ता, अब कुत्ता तो होते ही है हर जगह, कुत्ते तो कुत्ते ही। एक गांव में एक कुत्ता था, बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था। गाड़ी के ऊपर गाड़ी का मालिक बैठा, नीचे कुत्ता था। बैलगाड़ी के नीचे बैल चल रहे थे तो कुत्ता चल रहा था, लेकिन धोखे से कुत्ता की पूंछ टच हो रही थी गाड़ी में। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम चला रहे, बाहरे हम चला रहे। गाड़ी को क्या लेना देना और बैलों को क्या लेना देना, वो तो चले ही जा रहे थे। पर कुत्ता मन ही मन सोचने लगा, वाह देखो तो आज कुत्तों में हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि हम बैलगाड़ी चला रहे, हमारे नाम की फोटो छपेगी, मैगजीन छपेगी, आने वाली पीढ़ियां हमारे नाम से जय जयकार करेंगी कि एक ऐसा बलवान कुत्ता हुआ जो बैलगाड़ी चलाता था। अच्छा, भगवान ऐसे लोगों का जल्दी ठिकाने में लगा देते हैं अहंकार। कुछ दूर चला, उसने सोचा जरा चेक कर ले हम ही चला रहे कि कोई और, हम रुकेंगे वो गाड़ी रुके तो समझ जाएंगे हम ही चला रहे। कुत्ता रुका, धोखे से किस्मत की बात कि गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, सो गाड़ी रुक गई। अब कुत्ता को लगा, अरे हम ही चला रहे। अब कुत्ता आगे बढ़ा, गाड़ी आगे बढ़ी, एक जगह मंजिल पहुंच गई। मंजिल पर जब गाड़ी पहुंची तो गाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला गाड़ी नीचे आई, कुत्ता तो नीचे ही था, सो दब गया, पैर पसर गया, हड्डियां टूट गई, चाउमीन निकल आई। तब कुत्ता को समझ आया ये हमारा भ्रम था कि हम चला रहे हैं, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही इस संसार सागर में हम लोगों का भ्रम है कि हम ऐसा कर रहे हैं, करवाने वाले तो राम जी हैं। कौन है? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी लंका जाते हैं पर ये मान कर नहीं कि हम जाते, राम जी की कृपा से जा रहे। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा,

उसी समय मैनाक नाम का पर्वत मिला। मैनाक ने कहा कि आप उड़ते उड़ते जा रहे थक जाओगे, इसलिए कुछ देर विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया। हनुमान तही परसा

मैनाक पर्वत को प्रणाम किया। आप हमारे पिता के मित्र हो तो हमारे पिता तुल्य। आपने कहा विश्राम करो, हम विश्राम नहीं कर सकते। क्यों? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हम जब तक राम जी का काम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं सुनो ध्यान से, जितने सफलता पाने वाले लोग बैठे हो, प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनो। सफलता के पहले कितने भी तुम्हारे पास में बहाने मिल जाएं, सोने के, बहकने के, पर हमारी बात मान लेना, सफलता उनको नहीं मिलती जो बहाने बनाते हैं, सफलता उनको मिलती है जो बहानों को छोड़कर मंजिल पर चलना जानते हैं। जो मंजिल पर चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, उनको ही सफलता प्राप्त होती है। भैया सफलता को प्राप्त करने का सूत्र ही यही है, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। धन्य है हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंग बली। मैनाक नाम के पर्वत ने कहा कुछ देर तो विश्राम करो, पर हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। बोलो सीताराम। उन्होंने कहा

राम जी का काज पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। राम काज क्या है? बोले माता जानकी जी की खबर श्री राम जी को जब तक नहीं दे देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। सुरसा नाम की माता ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया। चाहते तो सिद्धि थी शरीर बढ़ा ले, पर बाबा ने बुद्धि का प्रयोग किया और गोस्वामी जी ने लिखा भी।

सुरसा के मुख में वीर हनुमान जी बजरंग बली अंजनानंदन गए और बाहर आ गए। यहाँ एक हमारा तर्क है, दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू की। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू की। सुरसा ने जब सौयोजन का मुख बनाया तो हनुमान जी अंदर गए, चेक कर रहे लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी बड़ी आए कि नहीं, लंग्स काम कर रहे कि नहीं, बदन पयट, रामायण में भी लिखा बदन पयट, अंदर से चेक करके पुनी बाहर आवा। तो एक व्यक्ति बोला वाह हनुमान जी जब अंदर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया। हमने कहा ठटरी के बरे खिड़की जल्दी बंद हो जाती, दरवाजा लेट बंद होता। जितना बड़ा दरवाजा होता उतना ही देर से तो बंद होता है, और छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाएगा, बड़ा मुंह बंद होने में भी तो देर लगेगा। बोलो हाँ जी या ना जी बोलो। जब तक सुरसा बंद कर पाई तब तक हनुमान जी ने एंडोस्कोपी करके चेक निकाल दिया, लो माता जी सब बढ़िया है, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हम बाहर आ गए। तो सुरसा बोली गए कहां थे, बोले अंदर। तो सुरसा बोली अंदर क्यों गए थे, बोले वाह आज सुरन मोहिन दीन आहारा, आपसे ही तो देवताओं ने कहा था कि आप भोजन हो, तो भोजन तो पेट में ही जाता, हम तो पेट में हो भी आए और आगे भी गए बाहर भी आ गए। सुरसा ने जैसे ही सुना तुरंत मुस्कुरा गई, हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता हमें आशीर्वाद दो हम जा रहे। इतना कहते ही तुरंत जो है आहा हनुमान जी को बदन पयट पुनी बाहर आवा, मांगा वेदा ताहि सुरनावा, तुरंत आशीर्वाद दिया राम।

मेरे पागलो, इस कथा का एक आशय और ज्ञानवर्धक। सुनो, हनुमान जी अंदर हो भी आए और बाहर भी आ गए, इसको ही कहते हैं सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। देखो हनुमान जी ने ये किया कैसे, बुद्धि के बल से। किसके बल से? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो कुछ लोगों के पास बल होता है, बुद्धि नहीं होती। कुछ लोगों के पास बुद्धि होती है, बल नहीं होता। अच्छा कुछ लोगों के पास दोनों हो पर चलाना ना आता। भाई कई लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है पर चला नहीं पाए, तो क्या काम भाई, गाड़ी हो चलानी नहीं आए। अच्छा बल हो और बुद्धि ना हो तो या तो तुम अस्पताल में मिलोगे या जेल में। हाँ बल हो, मोटे ताजे हो, एकदम बॉडी बिल्डर, और बुद्धि ना हो तो किसी लरम पतरे को मार दो, एकदम पतलैया हमारे जैसे डेढ़ हड्डी को। सुरसा नाम की माताजी से निकले तो दूसरा संकट मिला निश्चरी। पानी में रहने वाली एक निश्चरी है जो गगन में उड़ते हुए पंछियों की छाया को पकड़कर खींच लेती और खा जाती। हनुमान जी उड़े, उसने हनुमान जी को भी पंछी समझ लिया। इसलिए हमारे गांव में कहावत है, सबको एक समान मत मानो, कभी कभी कोयला के अंदर भी आग होती है, जीभ जल जाएगी। हाँ यही गलती की निश्चरी ने। हनुमान जी को भी पंछी मानकर, कोई पक्षी है पक्षी मान करके पकड़ना चाहा, सोई छल हनुमान कहीं कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहु चीन्हा। हनुमान जी तुरंत पहचान गए, हनुमान जी उसके बंधन में नहीं आए, उल्टा कर दिया। क्या

उसको एक मुक्का लिया, उसने जैसे ही छाया को पकड़ा हनुमान जी को खींचना चाहा, हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, देवी जी यज्ञ का प्रसाद खाओ, और एक मुक्का दे करके राम नाम सत्य कर दिया और निश्चरी का हो गया निशा सीताराम, नाश हो गया निश्चरी का। अब हनुमान जी आगे बढ़े, इस बात पर एक बात हम कहेंगे, सुनो, जब अच्छे काम में बढ़ते हैं तो रोकने वाले आ जाते, तुम भक्ति करोगे तो रोकने वाले आ जाएंगे, काम बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, बाबा बाबा बाबा बाबा लगा रखा, क्या मिल जाएगा बाबा बाबा, ये बाबा साहब ऐसे ही होते हैं बेफिजूली के, काम भगवान भगवान है ही नहीं है, ये मिलेंगे तुम्हें कोई बात नहीं, ये आएंगे कान भरेंगे। अच्छा, कान भरने वाले भी बड़े खतरनाक होते, ये खुद तो कुछ करते नहीं है पर तुमसे जरूर करवाएंगे। जैसे भीड़ में जो चिल्लाने मारने कहते हैं पकड़ो पकड़ो मारो मारो मारो, लेकिन चिल्लाएंगे पर पकड़ेंगे नहीं, वो पीछे रहते हैं, जो चिल्लाने वाले होते वो पीछे रहते, ए मार पकड़ पकड़, वो पीछे रहते, वो कभी आगे नहीं आते, ना पकड़ते ना मारते, वो पीछे से कहते मार। दूसरे वाले अलग होते जो उनकी बातों में आ जाते, वो दे दना दन बाद में खा ली एफ आई आर जय बजरंग बली। ऐसे बहुत लोग समाज में हैं जो कहने वाले हैं कान भरने वाले। हमारी तुमसे प्रार्थना है बंधुओं, कोई तुम्हारा कान भरे, बरगलाए, बहलाए, फुसलाए, ये कान भरने वालों की बातों में मत आना। कान भरने वालों ने राम को राजा नहीं बनने दिया, मंथरा ने कैकई का कान भर दिया तो अयोध्या में 14 साल के लिए शनि का वास हो गया। ये कान भरने वाले खतरनाक होते हैं, और जहां मंथरा हो भैया समझ जाना उस घर में सब सीताराम। एक बात और बोले, कह दो बोलो जरा जोर से तो कहो, बोले राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं, समझ गए ना। तो जिन्हें नहीं सुधरना वो कहीं भी हुआ है, कई लोग कई हमारे चेला है लेकिन नहीं सुधरते, और कई लोग बिना दीक्षा लिए सुधर जाते, दूर से ही टीवी पे कथा देख के, अरे वाह गुरुजी ने ऐसा कहा अब हम ऐसा ही करेंगे, लाइव देखते रहते यूट्यूब चैनल पर, रोज देखते हैं, रोज कथा सुनते, कई माताएं रोज संस्कार टीवी पर हमको देखती, 1 बजे से 4 बजे तक रोज संस्कार पर आते, रोज बागेश्वर धाम चैनल पर कोई ना कोई कथा चलती रहती, कहीं ना कहीं हम रहते। कुछ लोग घर बैठकर सुधर गए और कई चेला हमारे ऐसे हैं जो साथ रहकर बिगड़ गए। तब हमने एक ही बात समझी, पूछो क्या, आप लोग हमारे चेलों की तरफ देखकर इनके शंका मत करना, ये वाले वो नहीं है, वो वाले वो है, वो यहां नहीं है कि इनको शंका करो, तो हम किसी और की बात बता। भैया मेरे पागल, जिसे सुधरना होता ना उसे एक शब्द काफी है, और जिसे बिगड़ना होता ना उसे एक मौका काफी। एक कहावत है तो बुरी कहो तो कह दे, कह दे, कह दें, जो चरित्रहीन होता ना वो भीड़ में भी मौका खोज लेता, और जो चरित्रहीन नहीं होता वो अकेले में भी चरित्रहीनता नहीं करता है। हाँ, एक बात याद रखना, जो चरित्र का पक्का होता है वो भीड़ में भी 1000 ऑप्शन हो तब भी वो बच्चलन नहीं होता, और जो चरित्रहीन होता है भैया अकेला हो चाहे भीड़ हो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है अगर तुम्हें एक शब्द काम करे तो सुंदर कांड की एक चौपाई तुम्हारा उद्धार कर देगी, एक चौपाई, एक चौपाई से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भैया एक बात और,
मेरे पागलो, याद रखना जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। एक बार यदि तुम बिगड़ जाओगे कभी सुधर ना पाओगे, पर सुधर गए। किसी की कानों की बात यदि तुमने नहीं सुनी तो तुम बिगड़ नहीं। संगत का बड़ा असर है, पीने वालों की संगत करोगे तो मदरालय जाओगे, भगवान के भक्तों की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है किसकी संगत।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गोलमाल फाइव का हम चर्चा कर लेते हैं जिसकी शूटिंग लगातार जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का। जी हाँ, क्योंकि गोलमाल फाइव में इस बार अक्षय कुमार की भी एंट्री होने जा रही है। जहां पर अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपर हिट होना तय माना जा रहा है, वहीं पर इस फिल्म में अक्षय की फी भी चर्चा में लगातार बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: महाराष्ट्र के अमरावती से खबर निकल कर आई है। देश के दूसरे शहरों की तरह इन दिनों अमरावती में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक कर्मी जो है अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। ऐसे में इन ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए विशेष जैकेट तैयार की गई है, जो 45 और 40 डिग्री की गर्मी में भी इन्हें कूल रखती है। आखिर यह जैकेट काम कैसे करती है, रिपोर्ट देखिए।
2: महाराष्ट्र में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, खासकर विदर्भ के इलाकों में पारा हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है। हालत यह है कि दिन चढ़ते ही सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है, इसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ये तस्वीरें विदर्भ के ही अमरावती जिले की हैं, जहां जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोग 45 डिग्री वाली गर्मी से खुद को बचाने के लिए तरह तरह के जतन करते दिख रहे हैं। किसी ने गमछे से चेहरे और सिर को ढक रखा है और किसी ने स्कार्फ से खुद को ढक रखा है। इसी तरह शहर के ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे इन जवानों ने भी हीट स्ट्रोक से खुद को बचाने के लिए एक रक्षा कवच पहन रखा है। इस कवच का नाम एयर कूलिंग जैकेट है। बताया गया है कि अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय ने दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला किया, जिसके तहत करीब 500 पुलिस कर्मियों को ये खास जैकेट दिए गए हैं। ये सभी जैकेट अमरावती के जिला नियोजन समिति के फंड से खरीदे गए, जिनकी कीमत 7,000 रुपए प्रति जैकेट बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस एयर कूलिंग जैकेट में ऐसा क्या है जिससे 45 डिग्री की गर्मी में इन जवानों को राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग की इस जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे दो छोटे पंखे लगे हैं जो जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट करते रहते हैं। इन पंखों को 10,000 mAh के पावर बैंक से चलाया जाता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। लेकिन इसके लिए ड्यूटी पर आने से पहले मोबाइल की तरह इसे चार्ज करना होता है, और एक बार चार्ज होने पर ये कई घंटों तक बिना रुके ठंडक पहुँचाती है। इस जैकेट से खुद का बचाव कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी इस पहल से तो खुश हैं ही, शहर में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास जाकर इस जैकेट को करीब से समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 45 से 46 डिग्री की भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए ये पहल बेहद सराहनीय है।
3: एयरकूल जैकेट से क्या फायदा हो रहा है? हमारे साथ पुलिस कर्मचारी है, इसका फायदा किस तरह से हो रहा है, क्या क्या है इसमें जरा बताएं मुझे। क्योंकि देखिए इसमें जो है ये दो फैंस लगे हुए हैं, ये जो दो फैंस है ये अंदर हवा बाहर की हवा जो है वो अंदर खींचते हैं, और अंदर जो है जो पसीना आता है वो जो है इस हवा के कारण कम होता है। और साथ ही ये फैन किस किस पर चलते हैं तो मुझे बताइए जरा। यहाँ
4: पावर बैंक दिए इसको।
3: हाँ
4: हाँ, ये पावर बैंक दिए, पावर बैंक के साथ में अटैच किए उसको। हाँ। उसके इससे दोनों भी फैन चलते हैं, उसके साथ में उसके बटन भी दिए उसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए।
3: हाँ हाँ। और ये बैटरी चार्ज कर,
4: हाँ ये बैटरी चार्ज करना पड़ता है उसको,
3: तो इससे अच्छा कूल होता है। देखिए अमूमन जो है जैकेट, यहाँ पर आप देखिए मैं ऐसा दबा रहा हूँ, यानी इसमें पूरी तरीके से अंदरूनी हवा भरी है और इसको पैकअप करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का ये दिया गया है। मानो ये जो है ये पूरी तरीके से अंदर जो है इनके हवा है, जो पसीना इनको आ रहा है वो पसीना इस हवा के चलते नहीं आएगा, और इसीलिए ये जैकेट जो है वो एयर कूल यहाँ पर नजर आ रहा है। किस तरह का ये जैकेट है, जैकेट से कितनी राहत है, और पहले कैसा था?
4: पहले वो बहुत गर्म होता था, अभी दोनों साइड से फैन वगैरह है तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेटर अच्छा फील हो रहा है।
3: राहत नजर आ रही है इस एयर कूल जैकेट से?
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहत नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं धूप बहुत ज्यादा है तो उसके वजह से जो पसीना बहुत आता था, तो ये जैकेट पहनने से अभी काफी राहत।
2: बीते कुछ सालों में मई और जून के महीने में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उसने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। ऐसे में अमरावती में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ये पहल न सिर्फ सराहनीय है बल्कि ये देश के दूसरे राज्यों में भी एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सरसों के तेल का दान करने से जीवन में किस तरह की समस्या दूर होती है? काले कपड़े और काले जूते का दान आपके जीवन में किस चीज को बेहतर कर देता है? शनिदेव की कौन सी हैं चमत्कारी वस्तुएं और क्या हैं उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: देश में एलपीजी संकट होगा दूर। 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर साइमी। मथुरा में आज से अधिक मास मेला शुरू, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। 17 मई तक चलेगा अधिक मास मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एडीसीपी बोली, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, परेशानी से बचें। चारधाम यात्रा का आज 29वां दिन, करीब 15 लाख पहुंची यात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। तेईसवें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मैराथन 2026 में जमकर दौड़े धावक, 50 देशों के 1500 प्रतिभागी मैराथन में हुए शामिल। दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत मैराथन में से एक मानी जाती है दौड़।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूं। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके, और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है, और जब यह स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस-2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस-2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस-2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में

0: करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं, और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था जो सफल रहा।

0: कोई रफ्तार नहीं, जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा। बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
1: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं, उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
0: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
0: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
1: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
0: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल है। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और J-100 है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है, वहीं तुर्की के पास HGK किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है, इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा।
1: तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी

0: ब्रंच क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: सरसों के तेल का दान करने से जीवन में किस तरह की समस्या दूर होती है? काले कपड़े और काले जूते का दान आपके जीवन में किस चीज को बेहतर कर देता है? शनिदेव की कौन सी हैं चमत्कारी वस्तुएं और क्या हैं उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
0: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: भारतीय सेना हाल के मिडल ईस्ट वॉर और ऑपरेशन सिंदूर से बहुत कुछ सीख लेते हुए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। दोनों घटनाओं ने दिखाया है कि लड़ाई के समय हथियारों की उपलब्धता और उनकी ताकत कितनी जरूरी हो जाती है, और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय स्वदेशी 100 किलो के हवाई बम खरीदने की तैयारी में है। एयरफोर्स ने 1000 किलो के हवाई बम के डिजाइन, विकास और खरीद के लिए जानकारी मांगी है। ये प्रक्रिया रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP 2020 के तहत होगी। इसमें टेल यूनिट और दूसरे जरूरी उपकरण भी शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट मेक टू यानी इंडस्ट्री फंडेड के तहत शुरू होगा और बाद में ये प्रोजेक्ट बाय इंडियन कैटेगरी में चलेगा, यानी कि सब कुछ भारत में ही बनेगा। अभी तक भारतीय वायुसेना ऐसे MK-84 क्लास के बम विदेशी कंपनियों से खरीदती थी। अब स्वदेशी बम आने से वायुसेना को ज्यादा विश्वास होगा और लॉजिस्टिक भी आसान होगा।
1: जिस प्रकार से आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, इसके तहत देश में भारी बम बनाने के लिए भी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर को मेक टू के तहत लिया गया। वो 50% तक वो विदेशी भी टेक्निकल ले सकते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हैं और उनका रिसर्च करके 600 तक की डिमांड इस समय भारत में, क्योंकि जैसी सुरक्षा की हालत है ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारे पास भारी बम भी है, जिससे दुश्मन का ब्रिज, उनका हेडक्वार्टर स्टोरेज जहां इनका मिसाइल का भंडारण है, वहां पर उनके जो एयरपोर्ट के रनवेज हैं उनको बर्बाद करने में ये भारी बम काफी कारगर साबित होते हैं।
0: योजना के मुताबिक कुल 600 एरियल बमों की खरीद की जानी है। ये बम हाई कैलिबर म्यूनिशन होंगे जो दुश्मन के ठिकानों पर भीषण विस्फोट कर उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम होंगे, यानी दुश्मन के बंकर, इमारत, रनवे, गोदाम जैसे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी।
1: जिस प्रकार की भारत का सुरक्षा की हालात हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारी सेनाएं मजबूत रहें, आधुनिक रहें, और इस कदम में एक और प्रयत्न किया गया जहां पर कि भारी बम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया गया, जैसे कि जिससे कि 1000 kg तक का बम जहाज के द्वारा गिराया जा सके, एयरफोर्स के द्वारा गिराया जा सके। ये अमेरिका के MK-84 के जैसे रहेगा, जिसका काम ब्रिजेस को तोड़ना, रनवे को तोड़ना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, जहां पर भी हेडक्वार्टर्स उनको बर्बाद करना और काफ़ी गहराई तक इसको प्रहार करने में सक्षम रहेगा। साथ साथ में इसके फ्रेगमेंट के जो टुकड़ों के असर होंगे वो भी काफ़ी दूर तक जाएंगे।
0: अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जो अलग अलग तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है, तो फिर बम की क्या जरूरत है। तो आपको ये बताते हैं कि बम और मिसाइल में अंतर क्या होता है और इसका कहां इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल और बम दोनों का मुख्य उद्देश्य विनाश करना है, लेकिन इनकी कार्यक्षमता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इनके काम करने का तरीका काफी अलग है। मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, इसे फायर करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर बम अनगाइडेड होते हैं, इन्हें एक बार गिरा दिया जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण के भरोसे ही नीचे गिरते हैं। हालांकि आजकल स्मार्ट बम भी आते हैं, पर वो मिसाइल जितने फुर्तीले नहीं होते। मिसाइल में अपना खुद का इंजन या रॉकेट मोटर होता है जो इसे लंबी दूरी तक और बहुत तेज रफ्तार से ले जाता है, जबकि बम में कोई इंजन नहीं होता। इसे किसी हवाई जहाज से नीचे गिराया जाता है। मिसाइल को सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। वहीं बम को गिराने के लिए हवाई जहाज को लक्ष्य के ठीक ऊपर या उसके बहुत करीब जाना होता है।
1: बम जो है वो जहाज के द्वारा गिराए जाते हैं और ये गाइडेड नहीं होते हैं, या कुछ गाइडेड बॉम्ब भी होते हैं। दूसरा ये कि मिसाइल हमेशा गाइडेड होती है। बॉम्ब के अंदर कोई इंजन नहीं होता है, जबकि मिसाइल के अंदर अपना प्रोपल्शन होता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो, लेकिन वो पीछे से उसका जलता है प्रोपल्शन के अंदर, जिसके द्वारा उसको ताकत मिलती है। जो बॉम्ब है वो जहाज की स्पीड पे और कितनी ऊंचाई से गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ गिरेगा, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लोसिव आ जाता है क्योंकि इसको किसी प्रोपल्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि मिसाइल जो है वो कितनी भी दूर जा सकता है, हजारों मील तक जा सकता है। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बने हुए हैं जो हजारों मील तक जाके अटैक करने में सक्षम होती हैं, और जिसका पेलोड बम के मुकाबले में हल्का होता है क्योंकि उनको अपना ईंधन भी ले जाना होता है।
0: बम और मिसाइल की प्रणाली में काफी अंतर है, जिससे इसके इस्तेमाल का दायरा भी अलग अलग हो जाता है। मिसाइलों का इस्तेमाल उन लक्ष्यों के लिए किया जाता है जो बहुत दूर हो या फिर जिन्हें चलते हुए निशाना बनाना हो। बम का इस्तेमाल तब होता है जब टारगेट स्थिर हो या बहुत बड़े इलाके में तबाही मचानी हो। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बम से दुश्मन के हेडक्वार्टर, इमारत, पुल और बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सकता है। जमीन से जमीन पर हमला करने या समंदर में दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने के लिए मिसाइल फायर किया जाता है। वही जमीन की गहराई में छिपे दुश्मन के बंकरों या ठिकानों को भेद कर तबाह करने के लिए बम का इस्तेमाल होता है। बम और मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ अलग अलग जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों की अपनी अहमियतें हैं, लिहाजा भारत अपने तर्कश में बम को भी समान जगह देता है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना MK-84 श्रेणी के भारी बमों का इस्तेमाल कर रही है। भारत अब इनका स्वदेशी संस्करण विकसित करने की प्रक्रिया में है। भारतीय सेना और वायुसेना के पास अलग अलग कैटेगरीज के बम हैं, जिनमें साधारण ग्रेविटी बमों से लेकर आधुनिक गाइडेड या स्मार्ट बम तक शामिल हैं। आधुनिक गाइडेड बम की बात की जाए तो भारत के पास स्पाइस 2000, राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर, पहला स्वदेशी लेजर गाइडेड बम सुदर्शन और स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव और गौतम शामिल हैं। वहीं भारी और जनरल पर्पस बम की बात की जाए तो MK-84 क्लास के 1000 किलोग्राम, 250 किलो का MK-82, 500 किलो का MK-83 है, जिसका इस्तेमाल सामान्य बमबारी में होता है। सेना के पास खास मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले बम भी शामिल हैं। बंकर बस्टर स्पाइस 2000, दुश्मन के रनवे को तबाह करने के लिए 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, HSD यानी हाई स्पीड डिलीवरी बम भी हैं, जिन्हें तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमानों के जरिए गिराया जा सकता। थल सेना सीधे हवाई बम नहीं गिराती, लेकिन उसके पास बम की कैटेगरी में आने वाले दूसरे हथियार शामिल हैं, हैंड ग्रेनेड, मोर्टार और आर्टिलरी शेल्स, साथ ही माइंस जो कि जमीन के अंदर बिछाए जाते हैं। ये दुश्मन के वाहन या सैनिकों को रोकने में इस्तेमाल होते हैं। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपने यहाँ ही नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, जो ताकत और तकनीक के मामले में बेजोड़ होंगे। DRDO ने हाल ही में हमारी तीनों सेनाओं के लिए 28 ऐसे सिस्टम्स को देने की पेशकश की है, जिन्हें इमरजेंसी खरीद के तहत लाया जाएगा, और इसमें कई लेजर गाइडेड बम भी होंगे और साथ ही साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी शामिल होंगे।

0: भारतीय वायुसेना अपनी हवाई हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लैस करने की तैयारी में है। इस बम के 10 परीक्षण हो चुके हैं। इस परीक्षण में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 100 एक प्रकार का ग्लाइड बम है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है और इसे 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीक मारक क्षमता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी से भी सटीक स्थान पर हमला कर सकता है। युद्ध जैसे हालात में 100 दुश्मन के रनवे उसके बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है।
1: SAWS, that is the smart anti-airfield weapon systems, जो है ये एक वो वाले bombs हैं जिनका के अगर हम इंडिया के context में भी लें तो ये air launch भी हो सकते हैं, ground launch भी हो सकते हैं और तकरीबन 120 किलो के होंगे और glide के तौर पर काम करते हैं। 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो इंडियन bombs है और अगर इसका एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी है बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम जो अपने आप में आता है और ये गाइडेंस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम हो सकता है, वो आईआर इमेजिंग वाला होगा और एक्टिव रडार सीकर की तरह पर काम करता है। सो ओवरऑल देखें तो यस, ये बॉम्ब सिस्टम एक एयरफील्ड को कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जरूर एक बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है।
0: एयरफील्ड वेपन को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक मॉडर्न हाई प्रिसीजन वाला बम है जिसका वजन करीब 120 किलोग्राम है। इस हथियार को विश्व स्तरीय माना जाता है और ये भारत के अपने देश में एडवांस रक्षा प्रणाली बनाने के प्रयास का हिस्सा है। 100 परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली, 2016 में इसका सफल परीक्षण किया गया और फिर इसके बाद डीआरडीओ ने आपात खरीद के तहत इसको मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये कहा गया कि जल्दी ही सशस्त्र बलों को मुहैया कराए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। मौजूदा दौर में बमों की ताकत को धार दी जा रही है। आज ऐसे ऐसे बम तैयार हो रहे हैं जो बिना सरहद लांघे दुश्मन की धरती को ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान तो नहीं है, बावजूद इसके भारत दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने की ताकत रखता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी अड्डों पर बम बरसाकर भारत पहले ही अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दे चुका है। अब तो भारत ने वो ताकत हासिल कर ली है कि बिना दुश्मन के इलाके में गए या सरहद लांघे उनके ठिकानों पर बम बरसाए जा सकते हैं।
2: हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30M के आई से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण हुआ और इसने ये दिखा दिया कि किस तरीके से भारत इस तकनीक में भी महारत हासिल कर चुका है, वो किसी दूसरे मुल्क पर इसके लिए निर्भर नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी दर्शाता है।
0: भारतीय वायुसेना अपने मल्टी रोल फाइटर जेट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तरह तरह के हथियारों से इसे लैस कर रही है जिसमें मिसाइल से लेकर बम शामिल है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है गौरव का, जिसका ट्रायल जारी है। गौरव 1000 किलोग्राम कैटेगरी का एक ग्लाइड बम है जो करीब 100 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है।
3: गौरव बम जो एक स्लाइड ग्लाइड बम है, जब उसको सुखोई के साथ इस्तेमाल किया जाता है कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको वो भेद ना सके। एक सुखोई की स्पीड, दूसरा ग्लाइड बॉम्ब, ये कॉम्बिनेशन देखिए बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है और मेरा मानना अगर इसको युद्ध भूमि में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट निकलते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये करता क्या है, सुखोई इतनी स्पीड से जाता है जिससे कि एयर डिफेंस उसको पकड़ ना सके और एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है जिसमें उसको शंका है कि एयर डिफेंस के रडार उसको पकड़ लेंगे, वहां पे वो अपने आप को होल्ड करता, वहां से ये जो ग्लाइड मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली वो टारगेट को एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है और उसके सेंसर बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं।
0: ग्लाइड बम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे दुश्मन के इलाके के बाहर से आसानी से दागा जा सकता है। इससे फाइटर जेट को दुश्मन से खतरा कम होता है क्योंकि फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर होता है। लड़ाकू विमान से दागे जाने वाले बम कई तरह के होते हैं। इसमें सामान्य बम जिसे फाइटर के विंग या फिर बेली में लगाकर ड्रॉप किया जाता है। इस तरह के बम की टेल पर फिन बने होते हैं जो एयरक्राफ्ट से रिलीज करने के बाद बम को स्थिरता देते हैं। हालांकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। यहां टारगेट पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान को टारगेट के काफी नजदीक जाना होता है जिससे खतरा बढ़ जाता है। ग्लाइड बम की रेंज सामान्य बम की रेंज से 10 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया जाएगा उतनी ही दूर तक वो निशाना साध सकेगा।
3: ग्लाइड बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके एरियल मीन्स द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, जैसे कि सुखोई से इसको लॉन्च किया जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ये इसका जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर आफ्टर लॉन्च ये रीच करता है, और इसका पेलोड करीब 1000 kg का होता है।
0: सेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सके। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मदद की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दो तरह के बम का डिजाइन किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरा बिना विंग वाला गौतम, दोनों ही प्रिसिशन गाइडेड हथियार हैं। गौरव 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बम है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कॉन्टेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोटक ब्लास्ट कर देता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की रेंज 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है।
3: सबसे पहले उसमें होता है कि इसका गुड थर्मल स्टेबिलिटी है, बड़ा स्टेबल हो जाता है, और साथ में लो मैकेनिकल सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी मैकेनिकल सेंसिटिविटी वो लो होती है, यानी कि ये रगडाइज्ड है। अब जब हम प्री फ्रेगमेंटेड एमिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, जब बॉम्ब या रॉकेट या मिसाइल जब फटती है तो उसके कई तरीके के स्प्लिंटर्स निकलते हैं, कुछ बड़े निकलते हैं कुछ छोटे निकलते हैं। तो कुछ बड़े स्प्लिंटर निकलेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, छोटे होंगे तो उसका इफेक्ट टारगेट पे नहीं होगा। क्लस्टर बॉम्ब में होता है क्या कि तमाम तरीके के बॉम्बलेट होते हैं, इन छोटे छोटे बॉम्बलेट में माइंस हो सकता है, TNT हो सकता है, स्मोक के एलिमेंट हो सकते हैं, इल्यूमिनेटी एलिमेंट हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकता है, जो उस इलाके को जला देता है। तो उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फटना होता है जिससे कि वो पूरे इलाके में स्कैटर्ड हो जाता है और दुश्मन को ये पता नहीं लगता कि कहां पे किस तरीके का एमिनेशन है।
0: बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बम दुश्मन के उन ठिकानों को टारगेट पर लाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का सबसे कारगर हथियार है। अब जब सेना देश में विकसित तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करेगी तो भारत के बमों की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। लड़ाकू विमान दुश्मन के डिफेंस रेंज में आए बिना ही वहां अटैक कर पाएंगे, इससे विमान पर अटैक का खतरा भी नहीं रहेगा।
2: रंग क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सरसों के तेल का दान करने से जीवन में किस तरह की समस्या दूर होती है? काले कपड़े और काले जूते का दान आपके जीवन में किस चीज को बेहतर कर देता है? शनिदेव की कौन सी हैं चमत्कारी वस्तुएं और क्या हैं उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
6: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
7: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: चलिए अब आपको सोशल मीडिया के कुछ ऐसे वायरल वीडियोस दिखाते हैं जो कभी आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे, तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
13: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है, आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: देश में एलपीजी संकट होगा दूर। 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर साइमी। भारतीय और रॉयल कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न। दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, ऑपरेशन समन्वयन और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। लेप्रोसी के प्रति जागरूकता की अलग जगा रहा है ऑस्ट्रेलिया का फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4,900 किलोमीटर की यात्रा, लेप्रोसी के मरीजों के लिए 60 लाख का फंड जुटाना मकसद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धूमधाम से मना हजरत साईं बाबा मीरान बख्श दरवेश का सालाना उर्स, बड़ी संख्या में जुटे सभी धर्म और समुदाय के लोग, एकता और भाईचारे का संदेश। धार की ऐतिहासिक भूतशाला में एएसआई की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की गई मां वाग्देवी की पूजा अर्चना, खुशी से जमकर थिरके भक्त। मथुरा में आज से अधिक मास मेला शुरू, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। 17 मई तक चलेगा अधिक मास मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का उम्मीद।
15: NECC संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनिदेव के कृपा की। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनि से संबंधित पीड़ा को दूर करने के लिए आप किन वस्तुओं का प्रयोग कैसे करें कि आपको लाभ हो, इस विषय में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में शनि देव की स्थिति आपके जीवन में कैसी है और इस समय शनि से संबंधित कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम शं अभय हस्ताय नमः। ओम शं अभय हस्ताय नमः। अगर शनि की वजह से जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा हों या जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा हो तो इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि देव जीवन में अभय प्रदान करते हैं। शनि की पीड़ा से, शनि के कष्ट से और शनि द्वारा दिए गए संघर्ष से छुटकारा मिलता है। हम आपको बता रहे हैं शनि देव की अलग अलग वस्तुओं के बारे में जिनका प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। पहली जो वस्तु है वो है लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग। क्या महत्व है इसका? देखिए, शनि की पीड़ा को समाप्त करने के लिए, शनि संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है। ये सामान्य लोहे का भी होता है, लेकिन अगर ये छल्ला घोड़े की नाल के लोहे से बना हो या नाव की कील से बना हो तो ज्यादा लाभकारी होता है। यानी आप घोड़े की नाल के लोहे से या नाव की कील के लोहे से छल्ला बनवा सकते हैं। इसको धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है उसे काट कर पीट कर बनाया जाता है, उसको आग में नहीं तपाया जाता। घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला हो, नाव की कील का बना हुआ छल्ला हो, काट कर पीट कर उसको बनाते हैं और उसको आग में नहीं तपाते हैं। शनिवार को इसको धारण किया जाता है। शनिवार की शाम को इसको एक कटोरी में सरसों का तेल ले करके उसमें थोड़ी देर रख दें और फिर जल से धो करके शनि देव का नाम ले करके दाहिने हाथ की राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में पहने या लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली में पहन सकते हैं। अगर शनि की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा है, शरीर में कष्ट है, शरीर में तकलीफ है या आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं, तब इस लोहे के छल्ले को धारण करना बहुत शुभ होता है। लोहे का छल्ला हर उस व्यक्ति को धारण करना चाहिए जिसके जीवन में शनि की वजह से सेहत की दिक्कतें हैं या जिसके जीवन में लगातार संघर्ष है और जिसको जीवन में अपने संघर्ष के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। शनि से संबंधित दूसरी चीज है सरसों का तेल। शनि देव के लिए सरसों के तेल का दान करना और सरसों के तेल का प्रयोग करना काफी अनुकूल, काफी बेहतर परिणाम जीवन में देता है। शनि की वजह से अगर आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में सब कुछ रुक गया है, नौकरी में जहां थे वहीं हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, व्यापार कर रहे हैं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, अगर सब कुछ रुक गया है, जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। शनिवार को सुबह के समय एक लोहे की कटोरी में या एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए। इसके बाद उस तेल में अपनी परछाई, अपनी छाया देखिए और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख आइए। इसको कहा जाता है छाया दान करना। साल में 1 बार छाया दान हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, जीवन का डेवलपमेंट अगर रुका हुआ है और आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो छाया दान साल में 1 बार करना चाहिए। अगर आप छाया दान साल में 1 बार करें, शनि जयंती पर कर दें या किसी भी अमावस्या पर कर दें, तो शनि की वजह से जो जीवन में ब्लॉकेज है, जो जीवन में रुकावट है, वो रुकावट दूर हो जाएगी। जब शनि के लिए हम किसी वस्तु की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम बात करते हैं काली उड़द की दाल का दान करने के लिए या काले तिल का दान करने के लिए। क्या महत्व है इसका? शनि की वजह से अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं हो रही हों या धन का अभाव हो रहा हो, धन की उन्नति नहीं हो पा रही हो, फाइनेंशियल मुश्किलें हो जीवन में, तो काली उड़द की दाल या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर शनि की वजह से या अन्य किसी कारण से जीवन में धन का अभाव है, धन की कठिनाई है या धन के लिए संघर्ष है, तो काली उड़द की दाल का या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। क्या करेंगे? शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या 1.25 किलो काला तिल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। कम से कम 5 शनिवार को ये दान करिए। किसी भी शनिवार को शुरू करके 5 शनिवार को ये दान करिएगा। जैसे जैसे आप ये दान करते जाएंगे, आपकी आर्थिक समस्याएं, आपके पैसे रुपए की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो अगर धन संबंधी समस्या है, पैसे रुपए की तकलीफ है, पैसे रुपए की कठिनाई है, तो काली उड़द की दाल का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप 1.25 किलो उड़द की दाल का दान कर सकें, तो एक मुट्ठी या जरा सी काली उड़द की दाल का दान करिएगा। या उड़द की दाल के कुछ दाने ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, 5 शनिवार को ऐसा करते हैं, आपकी धन संबंधी मुश्किलें, आपके पैसे रुपए की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। शनिदेव के लिए एक चीज का और दान किया जाता है या उसका संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है, वो है लोहे के बर्तन। जैसे लोहे का तवा, लोहे की कड़ाही, लोहे का चिमटा, इसका क्या प्रयोग है? देखिए, शनिदेव के लिए बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है। काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला जूता। उसमें एक और दान है, खाना बनाने के लोहे के बर्तन। इनका विशेष महत्व है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि लोहे के बर्तन के अलावा आप स्टील के बर्तन का प्रयोग या दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हैं, दुर्घटनाओं के प्रबल योग अगर आपकी कुंडली में बने हुए हैं या आपके साथ बार बार दुर्घटना हो रही है, आप बाल बाल बच जा रहे हैं या बार बार चोट के शिकार हो रहे हैं, या हर 2 साल पे, हर 3 साल पे एक बार आपका ऑपरेशन होने लगता है, तो खा

कराही या लोहे के बर्तन का दान करिएगा, ऐसा करने से दुर्घटना के योग टल जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चला आ रहा है और उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो उसके हाथ से स्पर्श करा करके लोहे के बर्तन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने चाहिए और ये दान किसी भी शनिवार की शाम को आप कर सकते हैं। अब शनि की एक और चीज है जिसका शनि के साथ सीधा संबंध जोड़ा जाता है और वो चीज है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल का शनि के लिए अत्यंत महत्व होता है और घोड़े की नाल का अगर आप सही प्रयोग जान जाएं तो शनि संबंधी किसी भी बाधा को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करिए जो घोड़े के पैर में पहले से लगी रही हो और जो घोड़े के लगातार चलने से घिस गई हो। जब घोड़ा नाल पहन करके सड़क पर चलता है तो नाल जमीन से रगड़ खाती है और जब जमीन से रगड़ खाती है तो उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है और सारा खेल इसी मैग्नेटिक इफेक्ट का है। घोड़े के पैर में लगी हुई नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। एकदम नई खरीदी गई नाल जो इस्तेमाल ना की गई हो कभी भी, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। नाल पुरानी हो, घिसी हुई हो, तो उससे फायदा ज्यादा और जल्दी होता है। कैसे प्रयोग करेंगे? घोड़े की एक घिसी हुई पुरानी नाल शुक्रवार को ले आइए। सरसों के तेल चारों तरफ इसके लगाइए, सरसों के तेल से धो लीजिए, फिर जल से धोकर रख दीजिए। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर यू के आकार की तरह लगा दें, मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में। ऐसा करने से घर के सभी लोगों पर शनि की कृपा बनी रहेगी और घर में कलह कलेश नहीं होगा। जिन घरों में अशांति ज्यादा है, जिन घरों में बीमारियां ज्यादा हैं, पैसा आता तो है लेकिन घर में अशांति इतनी है कि सब कुछ होने के बावजूद सुख और चैन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में घोड़े की एक घिसी हुई नाल शुद्ध करके घर के मेन डोर पर लगानी चाहिए। अब शनि से कुछ और चीजों का भी संबंध है, जैसे काले कपड़े और काले जूते। ज्योतिष में काला रंग शनि का रंग माना गया है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि शुभ शनि का रंग नीला है और अशुभ शनि का रंग काला है।

0: जबकि वास्तव में काला रंग शनि देव का है और नीला रंग राहु का है। तो काले कपड़े और काले जूते का प्रयोग कैसे करें? अगर आपको स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ हो और आपकी बीमारी नहीं जा रही हो, बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा हो, तो पहनने की, धारण करने की काली चीजें दान करना चाहिए। आपकी बीमारी से छुटकारे के लिए, जल्दी मुक्ति के लिए, करियर में विशेष उन्नति करने के लिए शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े का और काले जूतों का दान करिएगा। और जब आप किसी गरीब आदमी को काले कपड़े का या काले जूते का दान करते हैं, तो उस निर्धन व्यक्ति से आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, कम से कम 3 शनिवार ऐसा करिए, कभी काला कपड़ा दे दिया, कभी काला जूता दे दिया, कभी काली बेल्ट दे दी, 3 शनिवार ऐसा कर लें, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। और साल में एक बार शनि जयंती का मौका आता है, अपने बड़े से बड़े स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने के लिए काले जूते या काले कपड़े का दान एक बार साल में शनि जयंती पर जरूर करना चाहिए। जब हम शनि देव की पूजा करते हैं तो सामान्यतः ये बात कहते हैं, ये नियम बताते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष का शनिदेव से क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। पीपल का वृक्ष शनिदेव का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि पीपल के पौधे लगाने से और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है। कभी भी पीपल के वृक्ष के पास गंदगी नहीं करनी चाहिए और भूल कर भी पीपल के पेड़ को मत काटिएगा। अगर आप पीपल का पेड़ काटेंगे तो संतान बाधा आपके जीवन में आ सकती है। अगर संतान होने में आपको बाधा आ रही है, अगर संतान होने में आपको दिक्कत आ रही है, तो पीपल का 1, 2, 3 जितना संभव हो पौधा लगाना चाहिए या लगवाना चाहिए। पीपल का पौधा अगर आप लगवाएं सार्वजनिक स्थान पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी देखभाल करें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वृक्ष की 7 बार या 19 बार परिक्रमा करते हैं या 11 बार परिक्रमा करते हैं, शनि की 7.5 और ढैया का ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इसके बाद वृक्ष की 7 बार, 11 बार या 19 बार अगर आप परिक्रमा करें तो आपके लिए शुभ होगा। देखिए, हर ग्रह का एक रत्न होता है और उस रत्न को धारण करने से ग्रह के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है या आपके जीवन में वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। शनि देव का जो रत्न है उसका नाम है नीलम। क्या विशेषता है इसकी? देखिए, नीलम शनि का प्रधान रत्न है और देखा गया है कि जब आप नीलम का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव तत्काल होता है, इसका इम्पैक्ट तुरंत आता है। अगर ये नुकसान करे तो 24 घंटे में आपको भयंकर नुकसान कर सकता है। इसीलिए लोग नीलम धारण करने से डरते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में फेवरेबल हो, अनुकूल हो और जीवन में आप तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो नीलम धारण करना अच्छा होगा। लेकिन नियम ये कहता है कि नीलम धारण करने के पहले नीलम की जांच कर लेनी चाहिए, अपनी कुंडली अच्छी तरह से दिखा लेनी चाहिए। उसके बाद जब आप नीलम धारण करते हैं तब आपको फायदा ज्यादा होता है। बिना सोचे विचारे केवल शौक में आकर या केवल फैशन के लिए नीलम धारण मत करिएगा। नीलम शनिवार को रात में लोहे या चांदी की अंगूठी में मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। नीलम जितना ज्यादा नीला होगा उतना ही ज्यादा उत्तम होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि कभी कभी कुछ नीलम में लाल रंग के बिंदु होते हैं, लाल रंग का पॉइंट होता है, जिस नीलम को खूनी नीलम कहा जाता है। तो जिस नीलम में लाल बिंदु हो, जो खूनी नीलम हो, उसको कदापि धारण मत करिएगा। फिर से बता दूं कि विशेष सलाह मिलने पर और बहुत सोच समझकर जीवन में नीलम धारण करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना कुंडली की जांच कराए नीलम धारण करना किसी हाल में शुभ नहीं होता। तो हमने आपको बताया शनिदेव की अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उनका प्रयोग करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं इस बारे में। अब आपको बताते हैं कि जो 12 राशियां हैं, अलग अलग राशियों के लिए शनिदेव की स्थिति इस समय कैसी है और इस समय अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके वर्तमान हाल क्या हैं और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, मेष राशि पर शनिदेव की 7:30 का पहला चरण चल रहा है, तो इस समय मेष वालों पर शनि के कारण दबाव यानी प्रेशर बना हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। करियर के मामले और धन के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय जैसा करियर चल रहा है चलने दीजिए, किसी तरह का बड़ा रिस्क या बड़ा जोखिम मत लीजिए। इस समय आपको एक उपाय निरंतर करना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा आपको मिल सके, और वो उपाय है हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनि की वजह से जीवन में जो पीड़ा है, जो मुश्किल है, वो दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, शनि आपके लिए इस समय विशेष अनुकूल हैं। शनि देव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों पर इस समय बनी हुई है। आपके पैसे रुपए के हालात में, आपके करियर के हालात में लगातार सुधार होगा, आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे तो ज्यादा लाभ होने की संभावना बन जाएगी। क्या उपाय करेंगे? वृषभ राशि के लोग इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, शनि की जो स्थिति है या शनि के जो हालात हैं आपके जीवन में, वो मिक्स हैं, मिले जुले हैं। कुछ मामलों में अच्छे हैं, कुछ मामलों में गड़बड़ हैं। जैसे इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और इसी समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। तो शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए मिश्रित है, कुछ मामलों में बेहतर और कुछ मामलों में निगेटिव है। मिथुन राशि के लोग क्या करेंगे? हर शनिवार को आने वाले समय में खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनि देव के लिए अगर आप दान करेंगे तो इस समय किसी तरह के प्रेशर से आपको परेशानी नहीं होगी। कर्क राशि, शनि देव की जो स्थिति है आपके लिए उसको हम एवरेज कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपके मामले, आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। रोजगार में थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हर शनिवार की शाम को आपको लाभ होगा। सिंह राशि, इस समय आपका कठिन समय चल रहा है। शनि की जो स्थिति है इस समय आपके जीवन में कठिनाई दिखा रही है। स्वास्थ्य का और करियर का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत और करियर के मामले में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो आपको तो खैर दो सलाह दूंगा मैं। एक तो ये कि घोड़े की नाल का या नाव की कील का बना हुआ छल्ला, मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला पहन लीजिए, और नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करते रहिए, ताकि शनि की स्थिति से आपको जीवन में ज्यादा कठिनाई ना हो। कन्या राशि, देखिए कन्या वालों के लिए मामला बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद कन्या वालों को फल प्राप्त होगा। बिना मेहनत के जिंदगी इस समय नहीं चल पाएगी। संतान को लेकर, परिवार को लेकर आपका तनाव, आपकी चिंता बढ़ सकती है, ये संभावना बन रही है। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना जप करेंगे उतना बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव की स्थिति कैसी है। शनिदेव इस समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हैं, विशेष अनुकूल बने हुए हैं। इस समय शनि की कृपा से जीवन की तमाम स्थितियों में सुधार होगा। आप ऐसा करिए, शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शनि की स्थिति मिश्रित है, और ये स्थिति ऐसी है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को अगर आप दीपक जलाएं तो निश्चित रूप से आपका समय बेहतर होगा। धनु राशि, आपके लिए लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। करियर में व्यस्तता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यापार में कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिएगा, बेहतर होगा। मकर राशि, शनि देव की कृपा है आपके ऊपर, चीजें लगातार बेहतर होती जा रही हैं, और रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे, यानी शनि की कृपा से आपकी सफलता का समय चल रहा है। एक लोहे का छल्ला अगर आप धारण कर लें मिडिल फिंगर में तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, शनि की साढ़े साती उतर रही है, परेशान कर रही है आपको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह की चिंता मत करें, बेवजह का तनाव ना पालें। इस कठिन समय से निकलने के लिए हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, साढ़े साती का मध्य चरण चल रहा है, रिश्ते टूटने की भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ध्यान रखें, मन की चिंताएं और मानसिक दिक्कतें, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक निरंतर जलाते रहिए, शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
10: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही मैराथन में सबसे ज्यादा मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। रिपोर्ट देखिए।
11: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहाँ अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
12: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
13: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
11: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगुन किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: गोलमाल फाइव कप हम चर्चा कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग लगातार जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का। जी हाँ, क्योंकि गोलमाल फाइव में इस बार अक्षय कुमार की भी एंट्री होने जा रही है। जहां पर अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपर हिट होना तय माना जा रहा है, वहीं पर इस फिल्म में अक्षय की फीम भी चर्चा में लगातार बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट का डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: देश में एलपीजी संकट होगा दूर, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न हुआ, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, ऑपरेशनल समन्वय और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया एकीकृत नाइट एक्सरसाइज का आयोजन, तत्परता, सटीकता और पलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। लेप्रोसी को लेकर जागरूकता की अलग जगा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4,900 किलोमीटर की पदयात्रा, लेप्रोसी के मरीजों के लिए 60,00,000 का फंड जुटाना मकसद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धूमधाम से मना हजरत साईं बाबा मीरान बख्श दरवेश का सालाना उर्स, बड़ी संख्या में जुटे सभी धर्म और समुदाय के लोग, एकता और भाईचारे का संदेश। धार की ऐतिहासिक भूतशाला में एएसआई की गाइडलाइन के बाद आज विधि विधान से की गई मां वागदेवी की पूजा, खुशी से जम करते थे भक्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: आज से ब्रज की पवित्र 84 कोसीय परिक्रमा की शुरुआत, भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसीय परिक्रमा, मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। प्रगमा मार्ग में नंदगांव व गोकुल बरसाना जैसे पवित्र स्थल शामिल। अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व। अधिमास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा का दिव्य श्रृंगार। सुबह की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की खबर। 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। सिमी कैरियर कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंच गया। टैंकर का सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी सफलता। सिमी ने 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर। भारतीय और रॉयल कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त सेनाभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न हुआ। दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, ऑपरेशन समन्वय और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में एसआई की गाइडलाइन के बाद आज विधि विधान से की गई मां वाग्देवी की पूजा अर्चना। जमकर तेर के भक्त श्रीनगर में खिली धूप के बीच सैलानियों से गुलजार नजर आए डल झील। पर्यटक उठा रहे हैं शिकारा का लुत्फ। डल झील के किनारे दुकानदार कर रहे हैं स्थानीय सामानों की बिक्री। जमकर हो रही है खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुंटूरियन गांव में साई मीरा मक्ष की जियारत पर 3 दिवसीय उर्स का समापन। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ट्रेन से अजमेर तक सफर किया। लोगों को दिया पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश। लेप्रोसी के प्रति जागरूकता की अलख जगा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजत। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,900 किलोमीटर की यात्रा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के 71वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 14 वर्षीय बॉक्सर मोहम्मद यासिन ने रचा इतिहास। ताशकंद में आयोजित अंडर 15 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। यासिन ने प्री क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से मात दी। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान। 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। ADCP बोले ट्रैफिक नियमों का पालन करें। असम दौरे के दौरान प्रशिक्षण शिविर के बाद गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बरबारी के सुदर्शनालय पहुंचे। गुजरात में जनगणना का काम हुआ शुरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पहुंचे म्यूनिसिपल कमिश्नर और करवाई जनगणना। गोंडा पहुंचे अमेरिका के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल। ब्रजभूषण सिंह से मुलाकात हुई। बिहार के छपरा पहुंचे अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और प्रीति अडानी। गायत्री मंदिर शक्तिपीठ में प्रार्थना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिविर का निरीक्षण किया। वर्ल्ड फेमस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का धमाकेदार फिनाले। बुल्गारिया ने 516 अंक के साथ खिताब हासिल किया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया फिनाले। 25 देशों के संगीत कलाकारों ने भाग लिया। बुल्गारिया के हिट गाने बंगा रंगा ने जीता लोगों का दिल। सिंगर तारा के जोशीले अंदाज ने गाने में डाली नई जान। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के दौरान जुड़े रहे करोड़ों दर्शक। वोटिंग और जूरी ने मिलकर फैसला लिया। यूरोविजन के फिनाले में 343 पॉइंट्स के साथ इजराइल रहा रनर अप। यूनाइटेड किंगडम को मिले सबसे कम एक है। चीन में ग्रेट वॉल मैराथन का आयोजन हुआ, 1500 धावकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन में 50 से ज्यादा देशों के रनर्स शामिल हुए, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के 138 धावकों ने भाग लिया। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक मानी जाती है ग्रेट वॉल मैराथन, रनर्स को 5164 सीढ़ियां, खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्तों को पार करना होता है। प्रतियोगिता में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर फन रन आयोजन किया जाता है। 350 रनर्स के साथ साल 1999 में हुई थी ग्रेट वॉल मैराथन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बड़ी दौड़ में प्रतियोगिता को किया गया शामिल। रियो डी जेनेरियो के एरोस्पेस म्यूजिक म्यूजियम में भव्य मुसाल एयर का शो आयोजन किया गया, राज्य के सबसे बड़े हवाई शो के रूप में मान्यता मिली। ब्राजीलियाई वायुसेना ने की कार्यक्रम का आयोजन किया, एयर शो में लोगों को मुफ्त में दिया गया प्रवेश। शो में मशहूर स्मोक स्क्वाड्रन ने दिखाया शानदार करतब, तेज रफ्तार विमानों की उड़ान देखकर हैरतअंगेज रह गए थे। एयर शो ने 100 से ज्यादा पुराने और आधुनिक विमानों को किया शामिल, लोगों को विमानों की करीब से समझने का मौका मिला। एयर शो के दौरान लोगों के लिए चलाई गई कई मनोरंजक गतिविधियां शो में दिखी, ब्राजील की समृद्ध विरामों की विरासत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट का डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
8: The wide world of sports comes alive on TuneIn. With top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
9: Gone! Home run!
8: NHL.
9: Scores!
8: College basketball.
10: He shoots it immediately.
11: He makes it in!
8: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
12: One lap to go.
8: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Country roads.
14: Thank God I get to wake
13: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC. Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: News Fun, Raah Sachai Ki, Raat 9 Baje.
17: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
18: Aur durbhagya kehta hai
17: ki bhagya kahin dur nahi.
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली हो

सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़।

0: बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: देश में LPG संकट होगा दूर। 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा LPG कैरियर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न। दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, ऑपरेशनल समन्वय और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया एकीकृत नाइट एक्सरसाइज का आयोजन। तत्परता, सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। लेप्रोसी को लेकर जागरूकता की अलख जगा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,900 किलोमीटर की यात्रा, लेप्रोसी के मरीजों के लिए 60 लाख रुपए फंड जुटाना मकसद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धूमधाम से मना हजरत साई बाबा मीरान बख्श दरवीश का सालाना उर्स। बड़ी संख्या में जुटे सभी धर्म के समुदाय के लोग, एकता और भाईचारे का संदेश। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में SI की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की गई मां वागदेवी की पूजा, खुशी से जमकर तिरके भक्त।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: संडे, परिवार, आराम और अपने साथ कुछ वक्त। कोई बताता है संडे की ये छुट्टी शॉपिंग कर, कोई करता है संडे ब्रंच, या फिर कोई पूरा दिन बस सोने में ही निकाल देता है। लेकिन क्या कर रहे हैं आपकी फेवरेट कहानियों के सारे किरदार इस संडे? आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आपको पता है आज हमारे संडे स्पेशल में हम आपको क्या दिखाएंगे? रिलैक्सेशन, फैमिली टाइम, मस्ती और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन कॉम्बो। नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए। कुसुम की जुड़वा बहन पुष्पी करेगी ड्रामा, रूहानी को होगा शक, फिर एक बार होगी उन्नति और ध्रुव की शादी।
2: बहन हॉस्पिटल पहुंचाती है और भाई तबीयत पूछने का नाटक करता है।
1: दिव्या सुनाएगी ताने।
3: अरे ये राज नंदिनी की रिंग तुम अनु को पहना के उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करोगे।
1: अनु और आर्यवर्धन की होगी इंगेजमेंट। कहानी में होंगे हंगामे।
4: तपस्या, मेरा फोन वापस करो।
2: अरे
4: मेरा फोन वापस करो।
2: नहीं,
4: जो तुम देखना चाह रही हो ना वो उसमें नहीं है।
1: जगधात्री शिवाय और तपस्या के बीच देखने को मिलेगी नोकझोंक। तो वही अरमान और अभीरा के परिवार में फिर एक बार होंगी लड़ाइयाँ।
5: माफी मांगो,
6: क्रिश और जमाइसा से माफी मांगो।
1: बदलेगा किशोरी का अंदाज।
7: आई लुक अ लॉट ऑफ लाइक दिव्या भारती जी, तो मेरा नाम मेरी मॉम ने दिव्या रख दिया।
1: और जानेंगे रश्मि देसाई के दिल की बात।
8: नागेश और चौधरी से जो टकराएगा
1: इश्क जुनूनी के नागेश्वर यानी कि संजीव शर्मा से मुलाकात, जो निभाते हैं सीरियल में गुरु के पापा का किरदार, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: वैसे अनु और आर्यवर्धन, संडे की छुट्टी तो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्यार भरी बातों के लिए। ये होना चाहिए प्यार वाला दिन, स्पेशली आप लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ पुराने जज्बात लेकर आते हैं हमारी जिंदगी में, कुछ इमोशनल ड्रामा। तभी तो कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, हमें सिर्फ फ्यूचर में नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि जो हो गया उस पर अब हमारा कंट्रोल नहीं है, जो आगे होगा उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हम अपने प्रेजेंट को अच्छा जरूर बना सकते हैं। लेकर चलते हैं हम सबको तुमसे तुम तक के सेट पर।
3: आर्या, ये राज नंदिनी की रिंग तुम अनु को पहना के उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करोगे।
9: एक साल का सफर और आज उनके रिश्ते का पहला पड़ाव।
10: हो गई अनु और आर्यवर्धन की सगाई।
9: मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच रही है, लेकिन
10: सगाई में हुई अतीत की एंट्री। अनु को मिला सिद्धि माता से आशीर्वाद। जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में अनु को उसकी जिंदगी की खुशियां मिल गई हैं, क्योंकि उसकी आर्यवर्धन से सगाई हो रही है। लेकिन इस सगाई में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि होगी आर्यवर्धन की पहली बीवी की एंट्री, जिसकी धुंधली तस्वीर नजर आएगी अनु को और बिगड़ जाएगी अनु की तबीयत।
9: लेकिन
10: फिलहाल तो अनु को ये झलकियाँ क्यों आ रही हैं? ये तो आने वाला ट्विस्ट है। इन्हीं बात को लेकर अनु परेशान भी है। ऐसे में वो चुपचाप अकेले रास्ते में जा ही रही थी कि उसकी मुलाकात हो जाती है सिद्धि माता से, जिसका किरदार निभा रही हैं उत्कर्षा नायक। भाई नए किरदार में एंट्री हुई है तो ट्विस्ट तो आएगा ही। हल्दी के रंग में रंगा चेहरा, पारंपरिक अंदाज से पहनी हुई साड़ी और सिर पर माता रानी की मूर्ति लिए ये देती हैं सभी को आशीर्वाद। और ऐसे में अनु भी उनसे आशीर्वाद ले रही है, लेकिन सिद्धि माता आशीर्वाद के साथ साथ अनु को सचेत होने के लिए कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनु का भविष्य जानती है और तो और वो ये भी जानती है कि अनु का पिछले जन्म का अतीत क्या था।
5: अभी जस्ट एंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है, तो अब तो काउंटडाउन चालू होगा। शादी में क्या होने वाला है ये सब हर कोई सोच रहा है कि आखिर होगा क्या। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो अनु की जो सुरक्षा कवच है सिद्धि माता, वो अनु को तो सचेत करके ही रहेगी, उसको वो हिंट देके ही रहेगी कि तुझे तैयार रहना है, तुझे इन सब चीज़ों के लिए इतना तैयार होना पड़ेगा, इतना मजबूत होना पड़ेगा कि किसी भी संकट से तू हिलेगी नहीं। क्योंकि वाकई में जो चीज़ें हैं बैकड्रॉप में, जो पिछले राज हैं, वो ऐसे हैं जो अनु को, अगर अनु प्रिपेयर नहीं होगी मेंटली तो उसे तोड़ सकते हैं। तो सिद्धि माता का तो यही काम रहा है, अनु को सचेत करना, उसको सुरक्षा कवच देना, उस तक माता का आशीर्वाद पहुंचाना, और यही अभी फिलहाल यही ट्रैक चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसी औरतें काफ़ी देखी है महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ ऐसे मुखौटे लेके और टोकरी सर पे लेके बहुत सारी औरतें घूमती है, तो मैंने देखा हुआ था। तो जैसे ही मेरे पास ये किरदार आया, मुझे टाइम नहीं लगा उससे रिलेट करने में, मैंने तुरंत समझ लिया कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। और धीरे धीरे फिर मैं, शुरुआत में ऐसा था कि टोकरी बहुत हेवी थी, बहुत ही ज़्यादा हेवी थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि है सब कुछ अपनी जगह है लेकिन ऑथेंटिक है, लेकिन डेली सोप में इतनी भारी टोकरी उठाना भी मेरे मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तुरंत उस बात को समझा, क्रिएटिव लोगों ने, प्रोडक्शन हाउस ने, और उन्होंने उसका वजन थोड़ा कम किया। उसके जो कुछ कुछ पार्ट्स थे जो पूरे मेटल के बने हुए थे, पीतल के प्योर, वो उन्होंने थोड़ा मिमिक करके हल्के फुल्के बना दिए, तो मेरे लिए फिर वो आसान हुआ।
10: फिलहाल तो सिद्धि माता ने अनु को पूरा सच नहीं बताया है, बल्कि उसको संकेत दिए हैं और उसे अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहा है, ताकि उसे उसका पिछला जन्म याद आ जाए।

इसी के साथ घर में शुरू हो गई हैं अनु की शादी की तैयारियां। ऐसे में अनु की माँ बेहद खुश तो है ही, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी है, क्योंकि अब उसकी बिटिया रानी उसे छोड़कर जाने वाली है। ऐसे में देखिए कैसे अनु की माँ अपनी बेटी पर प्यार जता रही है और उसका हौसला बढ़ा रही है।

0: खैर माँ तो माँ है, वो भले ही कितनी भी खुश हो लेकिन बेटी की जुदाई का गम उन्हें हमेशा रहता है। खैर जिस तरह से प्रोमो नजर आया है उससे तो यही लग रहा है कि आर्यवर्धन की पहली बीवी कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में अनु ही थी। इस बात का खुलासा जल्द होगा क्योंकि अनु को जो सपने आते हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि पिछले जन्म में आर्यवर्धन की बीवी के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसका राज खुलना अभी बाकी है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: फैमिली इमोशंस और स्वीट मोमेंट्स के बीच क्या मन सुंदर की ये कहानी लेकर आएगी हमारे लिए एक नया मोड़? चलिए लेकर चलते हैं आपको नाहर और रूही के पास, क्योंकि इनकी कहानी में भी चल रहा है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि ये ड्रामा क्रिएट करे और भी परेशानी, या हो सकता है ये ड्रामा ही लेकर आए हमारे लिए अल्टीमेटली कोई गुड न्यूज। तो चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
2: अग्नि की तड़प, नाहर को पानी की चाह, दादी का नया प्लान,
3: कैसे
2: टीवी के सीरियल मन सुंदर में भाई आज देखिए कैसे अग्नि यहाँ पर रो रही है। भाई कहीं ना कहीं वो पछता रही है क्योंकि उसे पता जो चल गया है कि नाहर लौट आया है। हालांकि उसकी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वो रूही के साथ है और अग्नि नहीं चाहती है कि नाहर की याददाश्त वापस आए। तभी तो देखिए कैसे यहाँ पर बैठकर मन ही मन प्लान बना रही है। ऐसे में उसने ठान लिया है कि जब तक वो नाहर से शादी नहीं कर लेती वो उसकी याददाश्त वापस नहीं आने देगी। तभी यहाँ पर युवराज भी पहुँच जाता है जो अग्नि से उसकी उलझन के बारे में पूछता है लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चली जाती है।
4: जमीन की सब गई, मतलब क्या बोल रही
3: हो? मतलब

0: भाई ऐसे में जब वो घर लौट आती है, देखिए कैसे रूहान उसके पास आता है ताकि वो उसके साथ खेल सके, लेकिन भाई वो उसे गुस्से में वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद होती है दादी की एंट्री, जो अपना प्लान लेकर पहुँच गई है अग्नि के पास।
1: अग्नि, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुम्हारे हाथ इतने कांप रहे? दिखा।
2: सॉरी दादी, वो मैं आज रोहान के साथ खेल रहा था, गलती से बोल अंदर आ गई। चलो दादी बाहर खेल ले।
1: दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। मुझे लगता है रूही और नाहर में ना कुछ अनबन चल रही है, कुछ मनमुटाव चल रहा है। और फिर नाहर ही अब तुम्हें पसंद करने लगा है। यही सही मौका है तुम्हारे पास इस घर की बहू बनने का। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कैसे नाहर को कुछ नहीं करो। समझी? समझी?
0: ऐसे में देखना होगा कि क्या अग्नि रूही को रोक पाएगी और नाहर के करीब आ पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: थोड़ा बहुत वर्कआउट करना, जैसे कि रिलैक्सेशन वाला वर्कआउट, योगा में इंडल्ज करना, फिर लेजरली ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच, और उसके बाद कंप्लीट फैमिली टाइम। और इसी तरह हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स, जिससे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन। तो गेट सेट,

0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में भाई जगधात्री और शिवाय आज अपने मिशन की बात कर रहे होते हैं कि उनकी बातें सुन लेती है जगधात्री की बहना यानी कि तपस्या। ऐसे में देखिए कैसे भाई इन तीनों के बीच शुरू हो गई है बहसबाजी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
1: तुम मेरा फोन वापस दो तपस्या, मेरा फोन वापस करो। मेरा फोन वापस दो, फोन मेरा फोन उसमें तुम उसमें क्या देखना चाहती हो? उसमें कुछ नहीं है, क्या देखोगी उसमें? जो तुम देखना चाह रही हो ना वो उसमें नहीं है। हाँ फोन वापस दे दो, फोन वापस दे दो, मेरा फोन वापस दो, उसमें कुछ नहीं है,
2: उसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा तो समझ रही है ना, जो भी समझ रही है वो गलत है, प्लीज फोन वापस कर।
3: तुझे कैसे पता मैं गलत सोच रही हूँ? मैं देखूंगी अभी।
2: तू गलत समझ रही है, फोन वापस।
3: मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। ओ प्लीज, तुमसे ना मैनर सीखने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे ना पता है तुम दोनों अभी ये कुछ तो बेटिंग की बात कर रहे थे, मुझे क्लियरली बताओ क्या बोल रहे थे।
2: अरे
3: क्या बेटिंग की बात चल रही
1: है? अरे कोई बात नहीं चल रही थी, मेरा फोन वापस दो मेरा।
2: अरे तपस्या, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे।
3: नहीं, तुम लोग कुछ तो बात कर रहे थे एंड आई नो, मैंने खुद ने सुना था। मेरी मर्जी में देख लूंगी।
2: अरे तपस्या, वो कुछ
1: किससे पूछे तुमने फोन छीना? हाँ ये मैनर्स है तुम्हारे, वेरी बैड मैनर्स।
3: नो प्लीज, मुझे ना तुमसे मैनर्स सीखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये सब ना बात। मुझे ये बताओ ये तुम लोग बेटे की बातें कर रहे थे, मुझे जानना है। किसी ने तो खासा ना, तुम दोनों अगर यहाँ खड़े हो तो फिर अंदर किसने खासा?
2: अंदर कौन होगा?
1: मेरा भूत। मुझे लगता है तुम्हारे कान में कबूतर घुस गए।
3: मेरे कान इतने बड़े नहीं है, तुम ना बकवास मत करो।
1: जब हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं तो अंदर कौन खासेगा? इतनी देर से मैं रोक के खड़ा हूँ ताकि रूट, अरे रूट क्यों होगा, तुम ऑकवर्ड हो जाओ। तमीज नाम की चीज होती है ना, कब से खांसी आ रही है मुझे। हाँ मतलब अंदर रोक के खड़ा था मैं, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम जैसे लोगों के अंदर तो मैनर्स ही नहीं होते, दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुस जाओ बस।
3: ओ प्लीज एक्सक्यूज मी, तुम दोनों ना यहाँ पर मेरे घर में मेरा चार्टी केस बनके जी रही हो, ठीक है? मुझे पर्सनल लाइफ का ज्ञान तुमसे सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये ना बहुत, तुम दोनों मुझे कब से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, बात घुमाने की कोशिश मत करो। मुझे ये बताओ कि तुम लोग ये क्या बेटिंग की बातें कर रहे थे, मुझे सच बताओ, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा।
1: अरे मुझे लगता है ना तुम्हारे कान में ना सीरियस इशू हो गया, चेक करो। मैं क्यों चेक, तुम इसकी बहन हो ना, तुम चेक जाओ जाओ देखो।
2: तपस्या ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी बात नहीं कर रहे थे।
3: नहीं मैंने सुना, मैं जब आई तब भी मैंने सुना तुम लोग कुछ तो अलर्ट एंड वेडिंग की बातें कर रहे।
1: हाँ मुझे याद आया, हम बात कर तो रहे थे। बात हम
3: कर रहे थे ना वेडिंग की बात,
1: वेडिंग वेडिंग नहीं, इधर दिखाओ इधर दिखाओ, बिंदी की बात कर रहा था। वो मैं बोल रहा था कि ये जो रेड कलर की बिंदी है ना वो मेरे हार्ट के लिए रेड अलर्ट है। बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब बहुत सुंदर लगती है इसकी बिंदी, देख रहे हो
3: ना? इतनी भी सुंदर नहीं लगती है, ठीक है? और मुझे पता है कि तुम लोग ना बेडिंग की बात नहीं कर रहे थे, बिंदी की बात कर रहे थे। मतलब बेडिंग की बात, तुम लोग ना मुझे कितना कंफ्यूज कर दिया ना, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ तुम लोग की वजह से। मुझे पता क्या चल, मुझे जान देखो मैं सब समझ रही हूँ, मैं कब से तुम्हें एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि ये क्या बेडिंग की बातें कर रहे हो, तुम लोग कब से ये ना डिस्ट्रैक्ट करके बातें घुमा रहे हो। तो अब मुझे सच बता
1: यार, हमारे पास एक दूसरे को घुमाने के लिए टाइम नहीं है। हाँ तुम्हें बातों में घुमाएंगे और तुम्हें
3: एक मिनट एक मिनट, तुम लोग घर में ये ईयरपीस लगा के क्यों घूम रहे हो?
1: हाँ क्यों लगाते हैं? गाना सुनने के लिए, हम दोनों ना सेम गाने सुनते हैं, क्या लगता है?
2: और कभी कभी बात भी तो करनी होती है ना, क्योंकि अभी फिलहाल बात नहीं हो रही है, मतलब हम बात नहीं कर रहे थे इसीलिए ये ऑफिस। हाँ
3: कुछ भी करते हो तुम दोनों,
1: हैं दोनों के बीच में दीवार उठकर खड़ी हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये नीचे जो जाके तुमने पूरा तमाशा किया है ना, तो तुम्हारी जो बहन है मतलब माया दी जो है मेरी, जिसकी भी बहन है, शक्ल भी नहीं देखना चाहती है वो हमारी, सिर्फ तुम। तो ये प्यार को ठीक करने के लिए फर्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन, तुम्हारे और दोस्त के बीच में हमारे बीच में तो टाइम तो करेंगे और बातें करते चलो।
3: मतलब
1: घूमना है

0: सीटीवी के सीरियल जाने अनजाने में बयाज ध्रुव घर आया है, जहां पर रीत, राघव और उन्नति तीनों ही ध्रुव से उन्नति के साथ शादी की बात कर रहे हैं।
1: मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है।
0: ऐसे में जैसे ही ध्रुव शादी के लिए हाँ कहता है, भाई राघव पूरे परिवार को इकट्ठा कर उन्हें ये गुड न्यूज सुनाता है।
2: बुलाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि सारे बाराती हाजिर हैं फोन बरसाने के लिए।
3: ये खबर सुन के मुझे इतनी हैप्पीनेस हुई कि मेरी आंखें भर आई हैं। और तुम लोग कितनी मैच्योरली अपने चचा को छोड़कर इतना गर्व कर रहे हो मुझे। आई एम सो प्राउड ऑफ
4: यू। ओके उन्नति, इतना ही मैं भी ये चाहती हूँ। हम कोर्ट में रहेंगे। हाँ हुआ तो
3: तुमने बिल्कुल मेरे और तुम्हारे बच्चे की तरह कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन लिया। इस वेडिंग की सारी तैयारी मैं करना
2: चाहती हूँ।
3: तो फिर चलिए इन दोनों की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करते हैं।
2: yes.
0: में दिव्या घर आती है और देखिए कैसे ध्रुव और रीत को देखकर वो नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं भाई, उन्हें तो वो खूब खरी खोटी भी सुनाती है।
5: कमाल, बहन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और भाई तबीयत पूछने का नाटक करता है। हेलो चौधरी का तो कोई जवाब ही नहीं है नौटंकी करने के मामले में। रहने दो ध्रुव, यहाँ खड़ा हर आदमी मानता है कि रीत की गलती है। जब तक तुम भी खुलकर ये मान नहीं लेते ना कि रीत ने गलत किया है, तुमसे दूर ही रहो, क्योंकि दोनों तरफ से बोलना नहीं चलेगा। I'm so sorry, पर अब ऐसा नहीं।
6: आपके संडे को एंटरटेनमेंट से भरने आ रहे हैं अब इश्क जुनूनी के नागेश्वर यानी संजीव शर्मा। हमारी टीम कर रही है आज इनके साथ एक इंटरेस्टिंग डे आउट। तो कैसा है इनका घर और किस तरह रखते हैं ये अपने आप को सुपर फिट, आज तो संजीव के साथ हमने किया है घर से सेट तक का सफर भी। आइए जानते हैं इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल।
7: नागेश और जॉर्ज से जो टकराएगा तो मोचे हो तो नागेश और जॉर्ज जैसी हो, वरना ना हो।
8: कारता चलाऊं मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक नी

0: के ससुर जी का दर्शन। गुरु के पापा की रियल दुनिया। नागेश्वर का अनोखा अंदाज। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं इश्क जुनूनी के नागेश्वर चौधरी, जिनके मूंछों का ताव और चेहरे का टशन देखने लायक है, क्योंकि सभी इनसे डरते हैं और अपने घर में इनका राज चलता है। तो भाई रियल लाइफ में तो ये कुछ ऐसे हैं, लेकिन रियल लाइफ में संजीव शर्मा कैसे हैं, क्या है उनका दिनचर्या, फिट रहने के लिए वो क्या कुछ करते हैं, कैसे किचन में काम करते हैं, रियल लाइफ में जितने सख्त रियल लाइफ में उतने ही नरम है संजीव, भाई रियल लाइफ में डायलॉग मारते हैं।
1: पुलिस क्या मिलिट्री बनवा लो, इस बड़ी कोटी की अदालत में आखिरी फैसला नागेश्वर चौधरी का होता है।
0: और रियल लाइफ में गाना गाते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। इतना ही नहीं, आज तो दिखेंगे संजीव का संस्कारी अंदाज, उनके फिट रहने का फंडा, उनके डांस का टशन और कैसे रियल फैमिली बन गई है रियल परिवार, ये सब आज हम जानेंगे। क्योंकि आज हम पहुंच गए हैं संजीव शर्मा के घर पर करने उनके साथ ये मजेदार डे आउट। तो चलिए सीधा चलते हैं करने संजीव शर्मा से मुलाकात और बिताते हैं इनके साथ ये दिन, जिसमें है ढेर सारी बातें और बहुत कुछ, जिससे आप जानेंगे कि नागेश्वर चौधरी रियल लाइफ में कैसे हैं।
2: दिन की शुरुआत हो गई है संजीव शर्मा के साथ, जो कि प्ले कर रहे हैं इश्क जुनूनी में नागेश्वर चौधरी। चौधरी पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि उनकी खासियत आप ही बताइए।
3: चौधरियों की आन बान शान की बात ही निराली है।
2: फिलहाल जो
3: नहीं है, हाँ अभी मूछे नहीं है, लेकिन जब हम स्टेट पे पहुंचेंगे तो मूछे होंगे, तो तब असली चौधरी निकल के आएगा।
2: मतलब ये मूछों से मतलब जो है दबंगाई फील होके आती है, मतलब
3: वो आप खुद समझ जाएंगे। आप जैसे आप लोग मुझे अभी देख रहे हैं और जो आप सेट पे देखेंगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा कि मूंछों की बात ही कुछ और होती है।
2: अच्छा, फिर बोलने का लहजा भी चेंज हो जाता है।
3: बिल्कुल एकदम पूरा जो है वो एक यूपी बिहार का टोन आ जाता है। वो हम ये कह रहे थे कि जब हम सेट पे पहुंचता है तो हमारा जो दबंगी है वो और निखर के आता है। ये गुरु रूहानी है, सब डर डर के कांपते हैं, अम्मा को छोड़कर बाकी सबकी हमने हवा टाइट कर रखी है।
2: तो बहुत ही लेयर्स है और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नागेश्वर का। तो नागेश्वर बनने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए जिम की जरूरत पड़ती है और फिटनेस के लिए, फिटनेस फ्रीक है आप
3: बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जितना हो जाता है एज के हिसाब से, तो पूरी कोशिश रहती है कि अपने आप को फिट रखें, तंदुरुस्त रखें, क्योंकि जितना एक्टर फिट रहेगा उतना ही ज़्यादा आगे काम करेगा और उतने अच्छे करेक्टर करेगा।
2: तो चलिए देर नहीं करते हैं, दिन की शुरुआत हो गई है आपके साथ, तो चलिए चलते हैं जिम।
3: जिम चलिए हमारे साथ। सबसे खूबसूरत बात यह है कि भगवान शंकर का मंदिर है जो कोविड के टाइम पे बना था, तो अभी हम जब जिम से आएंगे तो महादेव के दर्शन करेंगे। बहुत ही अनूठी शैली में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और कितनी ग्रीनरी जो है हमारी सोसाइटी ने, हमारे एक ग्रीन मैन है जो हमारे सामने रहते हैं कॉल अंकल, तो ही हैज क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स।
0: संजीव अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं और हर दिन जिम करते हैं, एक भी दिन वो वर्कआउट मिस नहीं करते। और आज भी उन्होंने अपने दिन की शुरुआत जिम जाने से की, जहां पर वो जम कर करेंगे वर्कआउट। तो आइए संजीव संग हम भी चलते हैं इनके जिम में और देखते हैं कैसा होता है इनका वर्कआउट सेशन, जिससे ये इतने फिट लगते हैं।
3: तो ये नागेश्वर चौधरी निकल पड़े अपनी बॉडी बनाने के लिए, और मजे की बात है कि घर के पास ही उनका जिम है, तो पूरी तैयारी है डोले शोले बनाने की। तो ये पीपल्स जिम है अपने घर के पास, तो चलते हैं अंदर, थोड़ा दणवट पेलते हैं, उसके बाद हम सेट पे भी चलेंगे। आज हमारा सूट हैगा, तो आज आपको दोनों मसाला देखने को मिलेगा, घर का भी और शूट का भी।

तो नागेश्वर चौधरी अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी ट्रेडमिल के साथ, और उसके बाद आज जैसे शोल्डर्स डे है तो थोड़ा शोल्डर करेंगे, फिर थोड़ा बाइसेप्स करेंगे और थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम अपने मेन जगह पर।

तो आज क्योंकि मेरा शोल्डर डे है तो मैं आज करूँगा शोल्डर प्रेस और थोड़ा डंबल फ्लाई और थोड़ा कॉलर की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बाइसेप्स करेंगे, ठीक है। तो बाइसेप्स में बाइसेप कर्ल करेंगे और वन आर्म डंबल करेंगे और

0: तो आज का हमारा जो है क्विक वर्कआउट तो हो गया है, क्योंकि शूट की वजह से काफी कम समय मिल पाता है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट वर्कआउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। और एक एक्टर जितना फिट रहेगा उतना ही हिट रहेगा, ठीक है, कोई भी एज हो, कोई भी मुकाम हो, कोई भी जेंडर हो, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और बहुत बिजी शेड्यूल होता है, हम कहते हैं कि थक गए, लेकिन नहीं, उस थकान को जो लोग पार कर लेते हैं उसी को जीत कहते हैं, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी घर की तरफ, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है, तो मिलते हैं घर पर, चलिए।
1: भाई जिम का ये पड़ाव तो हमने पार कर लिया, अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि है इनका आशियाना। जी हाँ, हम देखेंगे कैसा है नागेश्वर चौधरी का घर, यानी कि रियल आशियाना, कैसे उन्होंने अपने होम स्वीट होम को सजाया है, उनके घर में कौन कौन है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं इनके घर पर।
0: तो स्नान हो गया, फ्रेश हो गए, तो चलिए अब बारी है, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा घर है। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महामहिम से। ऊपर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो डायरेक्ट अयोध्या से आए हैं, और ये गुरुदेव हैं स्वामी सत्यानंद महाराज जी और ईश्वरदास जी महाराज जी, और ये मुझे एक अवार्ड मिला था। ये गणपति हैं और ये हमारे रक्षक हैं घर के।

0: ये बालकनी है मेरी, देखिए, और सामने ही महादेव बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं वहाँ पे। बहुत खूबसूरत गार्डन है, बारिश में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। गुणगान चल रहा है प्रभु का, ये हरियाली इतनी सुंदर, अभी ये इसका जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। ये मेरे घर का छोटा सा गार्डन है, ये मेरी वाइफ ने लगाया है। रोज सुबह मनी प्लांट पे जल चढ़ाइए और मन चाहे पैसे पाइए। ये बहुत छोटे छोटे जो है टॉय टाइप रखे हैं, गौ माता हैं, ये सब मनी प्लांट आपको दिखेगा, ये सब घर की लक्ष्मी ने लगवाया है। तो ये एक छोटा सा गार्डन है, और भी है आगे, लेकिन उधर हम जा नहीं सकते अभी फिलहाल। तो आइए मैं बाकी चीज़ दिखाता हूँ। ये एक बढ़िया नाश्ता तैयार किया है, ये फैमिली फोटोग्राफ है हमारा। ये एक छोटा सा पियानो है जिसे बच्चा मेरा बजाता है, वो फ्लूट भी बजाता है, अभी आपको दो सेकंड दिखाएगा। तो एक नज़र मारते हैं अपने थोड़ा अचीवमेंट की तरफ। ये एक जगह, पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ मैं सामान रखता हूँ, कि एक मान्यता होती है ना कि सामान वहाँ रखिए तो काम अच्छा चलेगा, तो वो एक प्रथा बना रखी है कि काम के सामान सब यहीं रहेगा। ये मेरे वर्क हैं जो मैंने किए हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर मैंने किया था भगवान वाल्मीकि का, सीरियल का नाम था राम सिया के लवकुश। और ये चापे का ब्रदर्स है, और ये मेरा एड है, ये आई थिंक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के साथ। ये सब राम सिया के लवकुश के पोर्ट्रेट हैं, और ये राधा कृष्णा का मेरा काम है जिसमें मैंने अक्रूर जी का काम किया था। ये अम्मा सीरियल है, ये उसका राम सिया लवकुश का, राम सिया के लवकुश का पोस्टर है, ये बहुत ही खूबसूरत। और ये सब वही अचीवमेंट है, CID, सावधान इंडिया, और क्योंकि मेन मैंने चार ही मायदों किए हैं जिसमें राधा कृष्णा, राम सिया के लवकुश, जय कन्हैया लाल की, और शिव शक्ति। तो शिव शक्ति का भी शायद यहाँ पे लगा नहीं है क्योंकि वो नया नया आया था। वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है मिर्ज़ापुर 3। ये आप देखेंगे नागेश्वर चौधरी जी यहाँ पर हैं, ये मिर्ज़ापुर 3 है, नागेश्वर चौधरी हैं। ये मैंने ए लेवल पास किया है स्पेनिश का।
1: वैसे एक और टैलेंट है नागेश्वर का, क्योंकि ये बेहद अच्छा गाते हैं, और साथ ही उनके बेटे जो बांसुरी बजाते हैं, तो हो जाए पापा बेटे की जुगलबंदी।
0: इधर शौर्य शर्मा, इधर ब्रिलियंट परफॉर्मर, ये फ्लूट भी बजाते हैं और कीबोर्ड भी बजाते हैं। अभी नए पियानो की डिमांड भी की है उन्होंने, वो भी जल्दी आ जाएगा। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह।

0: Shiva Mada, Mrs. Usha Sharma. So, आज आपके लिए बहुत बढ़िया चाय भी उन्होंने बनाई है, तो पी के जब जाइएगा. उसके बाद हम चलते हैं किचन में, फटाफट तैयारी करते हैं और उसके बाद महादेव के दर्शन करके हम निकल जाएंगे अपने शूट पर.
1: तो भाई सीरियल में नागेश्वर जितने ऑर्डर्स देते हैं, रियल लाइफ में देखिए कैसे वो खुद किचन में जाकर अपना टिफिन खुद ही पैक कर रहे हैं. और आज तो है स्पेशल वाली डिश भी.
0: तो आज मेरे शूट पे जो है, जो बच्चे हमारे गुरु रूहानी ये सब, इन्होंने डिमांड की थी कि सर वो एक बार कर्ड राइस जरूर लगेगा. तो आज उनकी बेहद डिमांड पर, और भी जैसे मामा मामी ये सब, तो उनकी बेहद डिमांड पे जो है मैं कर्ड राइस तैयार किए. तो मैं उन्हें पैक करता हूँ और पैक करके निकलेंगे हम महादेव के दर्शन करके अपने शूट की तरफ. ठीक है, तो कैसे पैक करते हैं आप देखते हैं कि सारा काम एक एक्टर को खुद ही करना चाहिए. चावल ऑलरेडी मैंने पैक कर दिए शायद मेरी मम्मी ने, बहुत बहुत मेहरबानी. तो मैं इसमें ये कर्ड पैक करूँगा जो आज सुबह मैंने ही मंगाई है, बनाई नहीं है, मैंने ही मंगाई है. तो राइट, ये हो गया. अब इसका ढक्कन लिया हमने. और सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी कर्ड राइस में ये जो मसाला है ये डालते हैं, इसके बाद इसको ठंडा करके खाते हैं, तो तब जाके एक बेहतरीन कर्ड राइस निकल के आता है. तो इसको ही मैं पैक कर दूँगा.

0: जाकर किस तरह का रंग दिखाएगा। ये तो मेरे जो बच्चे हैं वहाँ पर, सुहानी, मामा, बंटी, सिकंदर, बब्बन और मामी जसलीन, सब लोग इसी इंतज़ार में हैं कि कब ये कर्ड राइस आएगा और हम इसको खाएंगे। बाकी तो ठीक है, तो हमारा ये पैक हो गया है, इसमें मैं इसको ले जाता हूँ। देखिए
1: तो भाई, डब्बा तो पैक हो गया, अब बारी शूटिंग पर जाने की, जिसके लिए ये बैग रेडी करना है, जिसमें है खाने पीने का पूरा सामान और जरूरतों का सारा सामान, क्योंकि एक्टर्स को ज्यादा टाइम सेट पर ही बिताना पड़ता है, इसीलिए वो अपने इस बैग में जरूरत का सारा सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। घर से सेट तक के सफर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये सफर शुरू करने से पहले नागेश्वर यानी कि संजीव पहुंच गए हैं अपने सोसाइटी के इस महादेव मंदिर में, जहां वो महादेव के दर्शन कर रहे हैं।

सो दिस इज माई हाउस और यहाँ से लेके मंदिर तक मैं बेयर फूट ही आता हूँ, कि उसके बाद मैं जाके शूज़ पहनता हूँ, उससे पहले मैं जूतों को हाथ नहीं लगाता हूँ। और बाबा के दर्शन करने के बाद ही कोई काम मेरा स्टार्ट होता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको माँ शक्तिमान से।

सो महामहिम की पूजा करने के बाद अब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी भी अनुकंपा बहुत जरूरी है। सूर्य भगवान हम सब में जीवन दे।

0: तो जिम भी हो गया, शारीरिक कसरत भी हो गई, घर भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, स्नान भी हो गया, घर के दर्शन भी हो गए, और महादेव महामहिम की का आशीर्वाद भी ले लिया। तो अब हम कूच करेंगे, अब हम नागेश्वर चौधरी बन के अब हम कूच करेंगे सेट की तरफ, जहां पर आपको आज शायद कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आज लीड हम कर रहे हैं। ठीक है? सो कुछ ऐसा मिले आपको जिससे आपका मनोरंजन हो, आपको मज़ा आए ये देखने में, तो देखते हैं क्या नया करते हैं हम। ठीक है, मिलते हैं, अभी रास्ते में कुछ बातें करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको जलवा दिखाते हैं।
1: तो दर्शन हुआ पूरा, अब शुरू करते हैं घर से सेट तक का ये सफर। और इस सफर में संजीव ने बताई अपने करियर की कहानी।
0: जो मेजर जो ब्रेक मिला मुझे वो था स्वास्तिक प्रोडक्शन का, राधा कृष्णा, जिसे मुझे अक्रूर जी का रोल ऑफर हुआ, जो कंस के सेनापति हैं, और वो सीरियल 3 साल चला, सिद्धार्थ सर से जान पहचान हुई। तो उसके बाद ही उन्होंने मुझे उनका एक और सीरियल था जिसका नाम था रामसिया के लवकुश, तो रामसिया के लवकुश के लिए उन्होंने मुझे भगवान वाल्मीकि के लिए चुना। राधा कृष्णा का जो प्रीक्वल बना जय कन्हैया लाल की, तो उसमें हम 5 एक्टर को चैनल ने रिपीट किया था, जिसमें एक मैं भी था। और उसके बाद एक दौर आया कि जब मैंने एक बहुत बड़ी जो अमेज़न की सीरीज़ की जिसका नाम है मिर्ज़ापुर 3।
2: मिर्ज़ापुर की गद्दी कोई गांव का मैदान नहीं कि 4 ईंटें लगाई और अपना एरिया अलग कर लिया।
3: अरे शांत हो जाओ, कुल बुला कह रहे हो।
0: लेकिन मिर्ज़ापुर से पहले मैं बता दूं, मैंने पद्मावत की भी की थी 2016 में संजय लीला बंसाली सर के साथ। 1 हफ्ते का मेरा शूट था, और वो ऐसा शूट था कि मतलब संजय सर के सामने खड़ा होना ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और वहाँ तो मुझे एक्ट करने का मौका मिला विद दीपिका पादुकोण एंड शाहिद कपूर जैसे कलाकारों के साथ। अभी मैंने जो एक फिल्म की है उसका नाम है खौफ, ये एक हॉरर मूवी है भूषण पटेल जी की। तो मैं आई एम प्लेइंग अ करेक्टर ऑफ डॉक्टर, जो 21 साल पहले भी और 21 साल के बाद भी है, तो उसको सारा राज मालूम है। तो ये एक बड़ा अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवी। तो ये जब मुझे रश्मि शर्मा मैडम के ऑफिस से अपने जो है मुझे चुना गया इस करेक्टर के लिए, तो मुझे इसके नाम ने बड़ा अपील किया, नागेश्वर चौधरी, मतलब अपने आप में एक दमदार नाम है। और चुनौती थी कि इतने मैंने पॉजिटिव काम किए हैं तो क्या मैं इस ग्रे शेड को निभा पाऊंगा, लेकिन शायद मैडम को भरोसा था मुझ पर।
1: तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी के सेट पर, जहां अब वो संजीव से नागेश्वर के किरदार में ढलने वाले हैं।

तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी कर्म भूमि पर, रामदेव स्टूडियो, इश्क जुनूनी के सेट पर। और मैं आज आपको कराऊंगा अपने सेट की सैर अपने कुछ चुनिंदा कलाकारों के साथ। अब नागेश्वर चौधरी यहां पर तैयार होगा और आप कन्वर्ट होगा नागेश्वर चौधरी में, तो देखिए संजीव शर्मा के नागेश्वर चौधरी बनने की कहानी। हाँ,

0: नागेश्वर चौधरी अपने कमरे पे, और जैसे ही आपको दरवाजे पे समझ में आ गया होगा कि मूछे हो तो नागेश्वर चौधरी जैसी हो, वरना ना हो।
1: वैसे आपको बता दे कि नागेश्वर के लुक में सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी ये मूछे, जिन्हें ताव देकर ये टशन दिखाते हैं। और साथ ही नागेश्वर के ये भारी भरकम गहने यानी कि ब्रेसलेट, गले की चेन और अंगूठियाँ। हालांकि मेकअप में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है।
0: ये कुछ पिक्चर्स लगाई है हमने अपने शूट्स की फैमिली के साथ, अपनी रियल फैमिली के साथ, जिसमें रूहानी, गुरु, दादी, मामा, कुछ सोलो फोटोग्राफ्स हैं।
1: लेकिन हल्का फुल्का मेकअप कर, ये एक्सेसरीज और मूछें लगाकर संजीव पूरी तरह से अपने किरदार में ढल जाते हैं और बन जाते हैं नागेश्वर चौधरी।

0: तो अब हम आ गए हैं नागेश्वर चौधरी के रूप में। संजीव शर्मा टर्न्स टू नागेश्वर चौधरी। ये देखिए सोने का ब्रेसलेट पहने हुए हैं, तीन ठो अंगूठी पहने हुए हैं और ये शेर का अंगूठी है। शेर मतलब नागेश्वर चौधरी। और ये देखिए सोने का घड़ी, सोने का ब्रेसलेट, ये दो ठो सोने की चैन और ये मूंछों पे ताव। नाम है नागेश्वर चौधरी।
1: नागेश्वर चौधरी तैयार है लेकिन शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, तो चलिए मिलते हैं इनकी रियल फैमिली से जिनके साथ उनके रियल रिश्ते जुड़ चुके हैं।
0: सब तैयारी हो गई और अब मैं अपनी रियल फैमिली से आपको मिलवाता हूँ। नागेश्वर चौधरी का खानदान क्या है ये आज आपको पता लगेगा। आइए हमारे साथ। ए है सिकंदर और ये है बब्बन। देखिए कैसे मेकअप कर रहे हैं भाई, दूल्हा बनने की तैयारी चल रही है। तो सिकंदर
2: जी,
0: आप तनिक इनको ये बताइए कि हमारा आपका रिलेशन कैसा है, हम आपको कैसे लगते हैं?
2: अरे बिल्कुल लविंग लविंग, मेरे फेवरेट ताऊ जी।
0: और भी ताऊ जी है तुम्हारे?
2: नहीं नहीं एक ही हैं।
0: एक ही
2: बड़े प्यारे ताऊ जी मेरे।
0: ठीक है, सही बोले, वरना आज रात तुम्हारी क्लास लेते हम।
2: अरे
0: बब्बन तुमको क्या लगता है हमारे बारे में, हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते, ज्यादा मारते पीटते तो नहीं तुमको?
3: नहीं, नहीं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं हमारे साथ। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हमारे सीनियर है, बिल्कुल फ्रेंडली वाली भाई।
0: सीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, नागेश्वर चौधरी की बात कर रहे हैं।
3: नागेश्वर चौधरी जी वो तो एंग्री एंग्री ह्यूमन।
0: सारे के सारे यही मिल गए, सारे के सारे यही मिल गए। तो हम शुरू करते हैं लिली जी से।
4: जी सर।
0: तो लिली जी आप ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं हमारे बारे में?
4: मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ सर आपके बारे में, क्योंकि आपके आसपास इतने लोग हैं जो आपका बुरा कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ अच्छा सोचती हूँ। और ये मैं नागेश्वर जी की बात कर रही हूँ।
0: हाँ।
4: बाकी जब हम वापस आते हैं संजीव जी पे, तो संजीव जी बहुत कमाल के इंसान है, थोड़ा इनको बुरा जल्दी लग जाता है, लेकिन बहुत ही।
0: कौन बोला?
4: ये मेरा अपना एक्सपीरियंस।
0: अरे गलत एक्सपीरियंस है आपका।
4: अब इनको बुरा लग गया, ये माइक छीन लेंगे मुझसे। ये क्या
0: छीन लेंगे, हमारी बुराई चल रही है यहाँ पे।
4: हाँ ना, ये बुराई नहीं है, ये मैं आप सबको आगाह करना चाहती हूँ कि यार बहुत प्यारे इंसान है, प्यार कीजिए इनसे, और इनको क्यों बुरा लगना चाहिए।
0: आप भी कर लीजिए। अभी हम आते हैं अपने बड़े सुपुत्र पे, बंटी चौधरी पे। बंटी जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी?
5: सर मैं नागेश्वर जी की बात करूं तो मतलब नागेश्वर जी हु इज प्लेइंग माय फादर इज वेरी एरोगेंट और मतलब बिल्कुल भी प्यार करते ही नहीं है किसी से, ना अपनी बीवी से, ना अपने बच्चों से, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने अम्मा अम्मा अम्मा सिर्फ अपने अम्मा से प्यार करते हैं।
0: बीवी से ना करे ना करे लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।
5: बीवी से प्यार नहीं है तो फिर बच्चों से कैसा प्यार?
0: ये हमारा अलग प्याला प्यार है।
5: और संजीव जी बिल्कुल ऑपोजिट है उसके,
6: कुर्सी हड़प नहीं है।

वो पावर चाहिए, और किसको नहीं चाहिए पावर। लेकिन फ्रेंड संजीव जी, एज अ फ्रेंड वी कनेक्ट बिकॉज वी बोथ आर फूडी, हमको अच्छा लगता है खाना खाना, तो लंच भी साथ में करते हैं, ट्रैवल साथ में करते हैं, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के काफी सारे डिस्कशन साथ में करते हैं, तो एक है जुड़ाव, और अच्छा जुड़ाव है।

तो चलिए अब बाकी फैमिली मेम्बर्स से मिल ही लिए हैं, लेकिन कुछ का शूट चल रहा है तो हम थोड़ी देर में शूट पे चलेंगे। हमारे शॉट में थोड़ा सा टाइम है तो इससे पहले कमरे में पहुँच कर कुछ जो हम लाए थे घर से बास्केट भर के, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। आइए चलते हैं वापस नागेश्वर चौधरी के कमरे में। थोड़ी सी भूख लगी है, बहुत सारा काम कर लिया है तो अभी हम खाएंगे थोड़ा सा ये रोस्टेड मूंग। मैं घर से लाता हूँ थोड़ा मंचिंग करने के लिए, जिससे थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है और पेट भी थोड़ा सा फिल हो जाता है।

0: ये हमारा घर है नागेश्वर चौधरी का, और हम इसको अब आपको मिलवाते हैं द कैप्टन ऑफ द शिप पंकज सर से। पंकज सर कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: तो पंकज सर, नागेश्वर चौधरी से आप डेली मिलते हैं, संजीव शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
2: बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा नेचर और काम के लिए समर्पित जिसको बोलते हैं वो वैसा इनका नेचर है, और मैंने कभी इनको फालतू बात करते देखा नहीं काम के अलावा।
0: तो ले चलते हैं इस शो के लीड हीरो से, बहुत हो गया मेकअप, इधर आजा भाई प्लीज। तो ही इज अभिषेक पठानिया और गुरु हमारे छोटे बाहु, हमारे बड़े बाहुबली, आने वाले बड़े बाहुबली, लेकिन छोटे बेटे हमारे बहुत प्यारे हैं। तो गुरु क्या सोचते हो तुम हमारे बारे में, आज बता दो दुनिया को, संजीव शर्मा के बारे में,
3: बाप के बारे में?
0: अरे दोनों के बारे में बता दो, तुमको सब छूट है आज।
3: बाप ने तो हमें छोटा बाहुबली बना ही दिया, तो उसके लिए खुश है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं।
0: जैसे
3: सारे बाहुबली बुला के फेंक के मार दिया मेरे मुंह पर, हमारी
0: तो कहानी की डिमांड है। तो अब संजीव शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं?
3: संजीव शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, मजा आता है उनके साथ। जैसे सर कह रहे फालतू बात नहीं करते, हमारे साथ सारी फालतू बातें हमारे साथ ही कर लेते हैं।
0: लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं दो तीन लोगों के साथ बहुत एंजॉय करता हूं, जिसमें अभिषेक हैं, हमारे राजेंद्र बाबू हैं, और इन लोगों के साथ सीन करने में, इंटेंस सीन करने में इतना मजा आता है ना, आंखों में आंख डाल के हम लोग जब एक्सप्रेशन देते हैं तो वो सीन कमाल का निकल के आता है।
3: बिल्कुल सर, मेरे को कैसे लगता है,
0: आपको भी लगता है?
3: मजा आता सीन साथ में करने में, और जो खाना लेकर आते हमारे लिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज भी मैं लेके आया,
3: ऐसे ही लाते रहना। क्या लाए वो तो नहीं बताओगे? सरप्राइज
0: है, दही चावल लेके आया, मतलब वो कर्ड राइस लेके आया, ये इन सबके सामने मैंने
3: बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं।
0: ठीक है, तो आइए मिलते हैं कुसुम चौधरी से। अभी पता नहीं कि कुसुम जी से मिल रहा हूँ या दूसरे वालों से मिल रहा हूँ,
4: फिलहाल तो मैं
0: अच्छा, अभी हम खोलते नहीं इस बात को, ये तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि हम किससे बात कर रहे थे। तो कुसुम जी क्या सोचते हैं आप संजीव शर्मा के बारे में?
4: आपने कभी सोचने का मौका कहाँ दिया है? क्योंकि कुसुम के कैरेक्टर के हिसाब से तो हम लोग ऐसा नॉर्थ एंड साउथ पोल है।
0: ये राइटर की गलती, हमारी गलती नहीं है,
4: तो उसके अलावा भी हम सोच नहीं पाते हैं ना।
0: गलत पकड़ लिया मैंने।
4: नहीं, ये जो भी एज अ ग्लोरी में ये चीज बोलूंगी, जो भी किरदार करते हैं ऑफकोर्स बहुत अच्छा करते हैं, अगर वो अच्छा नहीं करते तो मेरे से वो कुसुम वाला कैरेक्टर नहीं होता। हाँ, मुझे तो ऐसा पकड़ के झंझोड़ देते हैं,
0: फिर मैं बाद में कंप्लेन करती का नागेश्वर ने बहुत जोर से पकड़ लिया।
4: फिर मैं ये भी तो बोलती हूँ चलो सीन ऑफ सीन तो नहीं, ऑन स्क्रीन ही तो पकड़ रहे हैं।
5: तो देखा आपने, रियल लाइफ में नागेश्वर जितने नेगेटिव है, रियल लाइफ में संजीव उतने ही पॉजिटिव है और दिल के साफ है। उम्मीद है आपने इनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी, और ये तो अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का मनोरंजन तो करते ही है। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का।
0: तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही उमंग भरा था, बहुत ही जोश भरा था, क्योंकि सास बहू बेटियां सुबह सुबह मेरे घर आ गए और मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए भाई कि मैं सोच भी नहीं सकता। मुझसे गाना गवाया, मुझसे नचवाया, मुझसे और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को जिम में भी ले गए। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही खूबसूरत एहसास था वो, और टीम बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद ये हम समय सेट पे ले आए, यहाँ हमको नागेश्वर चौधरी बना के खड़ा कर दिया, बोले आप इसमें कुछ बोलो। अब बताइए कितना हमें अपने आप को जो है वो करना पड़ रहा है, अपने आप को डेवलप करना पड़ रहा है बार बार, कभी नागेश्वर चौधरी कभी संजीव शर्मा। तो यहाँ आए, यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, तो आपको पता ही है सेट पे हमेशा अच्छे रहता है, सब लोगों से मुलाकात हुई, सब लोगों ने हमारे बने अच्छा ही अच्छा बोला, कैमरे पे शुक्र है हमारी इज्जत रख ली इन लोगों ने। सो बहुत अच्छा है, और ऊपर वाले चाह तो फिर दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ।

0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: फैमिली मोमेंट्स और इमोशन से भरा एक संडे, लेकिन क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस कहानी में आने वाला है एक नया कंफ्यूजन? उप्स, ओएमजी। लेकर चलते हैं आप सबको अभीरा और अरमान के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है कि कहानी में आज, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आए हैं इसमें ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
0: भाई बना भाई का दुश्मन।
2: माफी मांगो।
0: फूटा दादीसा का गुस्सा।
2: आर्यन,
3: क्रिश और जमाईसा से माफी मांगो।
4: नहीं अरमान।
0: आमने सामने फिर खड़े हुए अरमान अभीरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादीसा के जन्मदिन पर हो गया है घर में तमाशा, क्योंकि आर्यन ने अपने ही बड़े भाई क्रिश पर हाथ जो उठा दिया है, जिसके चलते दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और देखिए कैसे दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। ऐसे में संजय आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी जमीन पर गिर जाते हैं।
5: अरे प्लीज बस करो, मुझे नहीं चाहिए कोई माफी।
6: दादी की बर्थडे कवाली पार्टी रखी है और वहाँ पे क्रिश कुछ चीज़ें ऐसी बोलता है जो कि इट्स नॉट रीजनेबल एज अ पति मेरे लिए सुनने के लिए। तब जब वो चीज़ें कुछ दिशा को बोलता है एंड वो कब से काफ़ी चीज़ें बोलता आ रहा है और वो सुन भी नहीं रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि वो ऐसी ख़राब चीज़ें और ऐसे बुरी चीज़ें बोल चुके हैं दिशा को। तो तब से फिर मुझे ऐसा हो गया है कि मुझे समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और पर वो उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है और वो बात नहीं करना चाहते और बदतमीजी करे जा रहे हैं। और तब जाके मेरा पारा चढ़ता है, आर्यन सा का पारा चढ़ता है और वो एक थप्पड़ मार देते हैं और फिर ड्रामा शुरू होता है।
7: आप लोग मेरे रिश्ते के बारे में जो चाहे वो बोले, लेकिन मैंने दो शब्द के बोल दिया, आपको बुरा लग रहा है? हाँ
0: भाई, सेलिब्रेशन हो और ट्विस्ट ना हो भला कैसे हो सकता है? और ज्यादातर वजह बनता है क्रिश। इस बार भी क्रिश ने ऐसा कांड किया है जिसके चलते अरमान और अभीरा आर्यन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आर्यन चाहता है कि क्रिश दिशा से माफी मांगे।
7: मैं अपनी शादी कैसे संभालूं?
8: और तुम अगली बार से ना अपनी जुबान पे ताला लगा लेना,
7: क्योंकि अगली बार अगर ये मेरे आगे चली ना तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करूंगा। इज्जत से चुपचाप बिना ज्ञान दिए रहोगी तो ही इस घर में रहो, और नफरी फंड का ज्ञान देने वालों को ना
8: मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूं,
7: समझी?
0: इसी के साथ बुआ जी भी दिशा को लेकर इस घर से चली जाती हैं। ऐसे में संजय दादीसा से विनती करता है कि वो बीच में इंटरफेयर करे।
9: मासा, हम बाप बेटे लाख बुरे सही, पर कम से कम इस घर में मारपीट करते तो नहीं घूम रहे। अब किस घर के बच्चे बड़ों पे हाथ उठाएंगे?
10: मासा, आर्यन को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, पर अपने ससुराल वालों के सामने हीरो बनने के चक्कर में उसने मुझे धक्का दे दिया।
11: आपको गलती से धक्का लग गया था फूफा साहब,
12: तो क्या क्रिश को भी थप्पड़ गलती से लग गया?
13: वो थप्पड़ ये डिजर्व करते थे, उन्होंने जिस तरह की बातें दिशा से की है उसके लिए डिस्गस्टिंग वर्ड भी छोटा है।
14: दादीसा, क्रिश भैया को दिशा से माफी मांगनी ही पड़ेगी।
7: नहीं,
6: मैं चाहता हूं कि मैं क्रिश भैया से माफी मंगवाऊं दिशा को, जो उन्होंने अनाप शनाप बोला है। मेरे जो फूफा सा हैं वो चाहते हैं, फूफा सा एंड क्रिश चाहते हैं कि मैं उनसे माफ़ी मांगू। दादी सा चाहती मैं उनसे इन दोनों से माफ़ी मांगू। आधे लोग मैंने जो किया उससे सही नहीं समझते, आधे लोग मेरे साथ हैं।
7: मैं दिशा से माफ़ी नहीं मांगूंगा।
2: माफी मांगो।
0: बस फिर क्या, दादी सा ने भी सभी को अपना फैसला सुनाया, जो कहानी में लेकर आया है ट्विस्ट।
7: दादी सा, लेकिन
2: आर्यन, क्रिश और जमाईसा से माफी मांगो।
13: माफी गलती करने वाला मांगता है और आर्यन ने कोई गलती नहीं की।
7: चल क्रिश।
0: अब क्रिश तो माफी मांगने से रहा, उल्टा संजय क्रिश को वहां से ले गए
1: लेकिन आर्यन उसकी नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने तो आर्यन पर ही दोष लगा दिया कि उसने बदतमीजी की है। ऐसे में दादीसा की इस बात पर अरमान और अभीरा दोनों ही अब आमने सामने खड़े हैं, क्योंकि अरमान को लगता है कि कृष की गलती पर आर्यन ने सही किया है और अभीरा को लगता है कि ये सब वॉयलेंस है। अब अरमान और अभीरा दोनों का रिश्ता सुलझ ही रहा था कि फिर से ये उलझने आ गई है। अब देखना होगा कि कैसे ये दोनों मियां बीवी मिलकर घर के सभी रिश्तों को सुलझाएंगे और अपने रिश्ते को फिर से बनाएंगे।
4: इल्जाम तो आर्यन के सर ही आएगा। अरमान,
1: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ ये रियलाइज करें कि वायलेंस आखिरी हथियार होता है, मजबूरी होती है।
1: प्यार और जुनून यहाँ पर लेंगे एक नया मोड़। यहाँ तो होंगे इमोशंस और हमारे लिए अनलिमिटेड ड्रामा। मैं तो बात कर रही हूँ गुरु और रूहानी की। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर और पता कर कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है कहानी में आज। क्या ये दोनों बिता रहे हैं संडे की छुट्टी या फिर घिरे हुए हैं किसी नाइट ट्विस्ट से? लेट्स चेक इट आउट।

0: कसम का ड्रामा
1: तो पड़ेगा ना, आपको खील लगी है?
0: रूहानी का शक, गुरु रूहानी और कंफ्यूजन, टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भीड़ कुसुम के पाँव में चोट लग गई है और यहाँ पर रूहानी उनका इलाज करना चाहती है। भाई इलाज क्या, वो तो उसे इंजेक्शन लगवाना चाहती है, लेकिन कुसुम है कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि उसे डर जो लगता है। भाई आपको बता दे कि ये कुसुम नहीं बल्कि कुसुम की जुड़वा बहन पुष्पी है जो इंजेक्शन से डरती है और यही देखकर रूहानी कंफ्यूज हो रही है क्योंकि इसके पहले भी कुसुम अस्पताल में एडमिट हो चुकी है और इंजेक्शन के लिए उसने कभी इतना ड्रामा नहीं किया।
2: नहीं गुरु, हमें इंजेक्शन नहीं लगानी, हम बोला बहुत डर लगता है, हमें लगवानी है।
1: माँ इंजेक्शन से इतना कैसे डरने लगी आप, हॉस्पिटल में तो आपने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए।
2: वही तो सुना कह चुके कि आप और नहीं दे सकते, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई इलाज नहीं करवानी है।
3: कुछ नहीं होगा।
0: कुसुम के लाक मना करने पर भी रूहानी इंजेक्शन लगाने जाती है, लेकिन देखिए कैसे डर और गुस्से दोनों की ही वजह से कुसुम इस इंजेक्शन को फेंक देती है।

0: खाना तो पड़ेगा ना, आपको खीर लगी है।
1: अरे हमें कोई खीर नहीं लगी है, छोटा छोटा सा गाँव है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो देखो।
0: तो फिर मामी जी ने झूठ से बोला?
1: अरे तो उसी से पूछो ना, उसने झूठ क्यों बोला? हमसे कहीं जिस सवाल जवाब कर रही हो तुम।
0: अरे हाँ, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे अंदाजी, आपको लगा कि पैर में लगा है तो की लगा होगा। अच्छा छोड़िए, ये बच्चियाँ पहन लीजिए, रसोई में गिर गई थी ना, ये तो ढीली है।
1: हाँ तो ढीली थी तभी तो गिर गई थी ना। चलो बेटा, ना तो तुम इस लड़की से कोई रिश्ता रखना चाहते हो और ना ही हम इसे अपनाना चाहते हैं। फिर ये क्यों हर बार आके हर बात में हर चीजों में अपना नाक घुसाती है? इसे कह दो, कह दो इसे ये हमारी नजरों से दूर जाए, चली जाए यहाँ से।
2: सो बेसिकली हुआ ऐसा है कि जो पुष्पी है उनके पैर में चोट लग गई है, मैंने पट्टी बांध दी है, लेकिन हमारे घर में डॉक्टर है और डॉक्टर है रूहानी, तो रूहानी को लगता है कि टेटबैक का इंजेक्शन लगना तो बहुत ज़रूरी है ताकि सेप्टिक ना हो, और पुष्पी जी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो उनका रोना चीखना चिल्लाना सब चल रहा है, और मुझे यह है कि भाई आप इतनी ओवर एक्टिंग में पकड़े जाएंगे हम, एक इंजेक्शन की बात है ले लो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फाइनली वो इंजेक्शन लेने से मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं ही मना कर देती हूँ कि कील लगी नहीं थी, मैंने तो अपने आप से, मुझे लगा पैर में चोट लगी है तो कील लगी होगी, तो ऐसा तो बचा लिया मैंने उनको भी और खुद को भी।
3: भाई इतना ही नहीं, देखिए कैसे जब रूहानी घर की साफ सफाई कर रही होती है तब उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरह दिख रही हैं। जी हाँ, ये कुसुम की और पुष्पी की जवानी की फोटो है, जब दोनों बहनें एक साथ रहा करती थी, तभी ही वहाँ पर पुष्पी और उसकी ननंद आ जाते हैं जो रूहानी को डांटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भाई पुष्पी तो अपनी ही फोटो पर पाँव भी रखती है, उसे तो ये पता ही नहीं है कि फोटो यहाँ पर गिरी हुई है, लेकिन ये फोटो रूहानी के हाथ लग जाती है, जो देख कर ये सारा मामला काफी कंफ्यूज हो गई है।
2: रूहानी डिटेक्टिव इसलिए बनी है क्योंकि रूहानी को ये जानना है कि अभी जो चल रहा है घर में वो हो क्या रहा है। अचानक से जब कोई स्टोरी में बाहर से बंदा आता है ना, तो वो देखता है कि कुछ तो है जो फिशी है, कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। तो रूहानी पहले इस घर में रहती थी, फिर अपने मायके चली गई और थोड़े दिन बाद अब जब वापस आई है तो उसको लग रहा है कि जो कुसुम माँ है वो अब कुसुम है नहीं, उसकी हरकतें थोड़ी अलग हैं, न्यूएंसेस उसके कुछ अलग हैं, तो इस बात पे अब शक हो रहा है रूहानी को, और उसको लग रहा है वो कड़ी नहीं जोड़ पा रही है एक्चुअली कि हो क्या रहा है, लेकिन हर एक चीज़ के बाद ना उसका शक गहराता जा रहा है कि क्या हो रहा है। सो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कुसुम जीजी की एक हम शक्ल भी है जिसका नाम पुष्पी है, और कुसुम जी से क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही नहीं मिलती थी और पुष्पी जी थोड़ी हैं हमारी तरह टेढ़ी, तो उनको हम फैमिली में लेकर के आए और कुसुम जीजी को रखा है छुपा करके, तो उनके साथ मिलकर हम घर में अब आगे की चाल चल रहे हैं। हुआ ये है कि इस दौरान उनकी अलमारी से एक फ़ोटो है जो उनके रूम में गिर गई है और सफाई के दौरान जो रूहानी को मिलती है, अब उस फोटो को देखने के बाद पहली बार रूहानी को ये पता चलता है कि दोनों एक जैसी शक्ल वाले ये लोग कौन है, एक तो कुसुमा है दूसरी कौन है, तो उसके पीछे अब जांच पड़ताल है, फिर वो फैमिली से पूछा जाएगा कि कौन है, तो आगे पता चलेगा।
3: ऐसे में देखना होगा कि क्या रूहानी पुष्पी और कुसुम के सच तक पहुंच पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: संडे की इस छुट्टी का मतलब है काम से एक ब्रेक लेना, और हम देंगे अपने शो सांस बहू और बेटियां में अब आपको आपकी बोरियत से एक ब्रेक, क्योंकि लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगली कहानी जिसमें फिर से आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो बदलेगा इस कहानी का मोड। अब क्या ये ड्रामा लेकर आएगा यहाँ पर हमारे लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज, या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट, चलिए पता कर आते हैं। गेट सेट गो।
3: किशोरी बनी थानेदारनी, ने किया मरने का ड्रामा, किशोरी और लाला की भागम भाग, दंगल टीवी के सीरियल पतिया नाड़ी में भैयाज लाला इस भंगार वाले से कृष्णा जी की मूर्ति और संदूक लेने आया था, लेकिन भाई भंगार वाला लाला को ये सब देने से इनकार कर देता है और फिर लाला और किशोरी मिलकर तरकीब बनाते हैं। जैसे कि देखिए कैसे यहाँ पर लाला बेहोश पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर किशोरी बनकर पुलिस वाली पहुँच गई है इस भंगार वाले के पास, और जिसके बाद शुरू हुआ है असली ड्रामा।

0: होता क्या किया?
1: मेरी कुछ नहीं किया मैडम।
0: होता क्या किया?
1: मैंने कुछ नहीं किया। मैंने
0: दोषी दहाड़ी मर्डर करता है तू। जैसे वो थी ना, जैसे तीन खिलाफ रखता है, समझे?
2: भाई हम सब तो जानते हैं कि लाला एक्टिंग कर रहा है, लेकिन देखिए कैसे उसकी एक्टिंग तब फेल हो जाती है जब यहाँ पर चूहा आ जाता है और लाला को चूहे से डर लगता है। तभी तो वो अपने हाथ पांव हिलाने लगता है और ये देखकर किशोरी भी घबरा जाती है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी न जाए। तभी तो देखिए कैसे वो सिचुएशन को संभालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। भाई यहाँ पर अपने आप को रिहा करने के लिए ये भंगार वाला पूरी कोशिश कर रहा है।
0: चलेगा तुझे होगी फांसी।
1: ये गलती से हो मैडम।
2: भाई वो तो किशोरी को पैसे भी देता है, लेकिन किशोरी को पैसे नहीं मूर्ति और संदूक चाहिए। भाई पहले तो ये भंगार वाला मूर्ति और संदूक देने से इनकार कर देता है क्योंकि ये बहुत कीमती जो है, लेकिन किशोरी बार बार उसे जेल और फांसी की धमकियां देती है जिसके बाद वो मान जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनका प्लान कामयाब होते होते फेल हो जाता है क्योंकि लाला की पैंट में चूहा चला जाता है जिसके चलते वो बेहद घबरा जाता है और डर कर उठ जाता है। भाई ये देखकर तो भंगार वाला हैरान रह जाता है, लेकिन इसके बावजूद किशोरी और लाला मूर्ति और संदूक लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं।
1: अरे ये तो जिंदा है।
0: चल चल चल चल।
1: तुम मेरे धोखे बाज हो।
0: हमने 5,000 रुपए दिए ना तुझे और जो चीज खरीदी गई है उसे वापस नहीं लेते। तुझे तो खाते हैं।
1: अरे क्या मार रही हो तुम? हमारी मूर्ति वापस दो।
2: अब देखना होगा कि घर वालों से किशोरी और लाला को इस कारनामे के लिए तारीफ मिलती है या फिर सजा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: संडे की ये छुट्टी, अब किसी के लिए ये होता है शॉपिंग थेरेपी, लेकिन किसी के लिए होता है ये आराम करने का दिन। हमारे लिए संडे की छुट्टी का क्या मतलब है? वेल, हमारे लिए तो सिर्फ एक ही मतलब है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तभी तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये स्पेशल स्टोरी जो बेसब्री से कर रही है आप सबका इंतजार। गेट सेट गो।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार हाजिर हूं लेकर एक नया पॉडकास्ट, कुछ नई कहानियां, कुछ नए किस्से आपके पसंदीदा सितारों के बारे में। तो आज मेरे साथ एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें मैं बहुत सालों से जानता हूं, लेकिन आज अपने पॉडकास्ट में उनके बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, यानी कोई अनजानी बातें सीधे फ्रॉम द सोर्सेस। तो मेरे साथ है रश्मि देसाई, और रश्मि को आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 16 years से जानता हूँ। 18 years, yes.
5: जब से मेरा जन्म हुआ इंडस्ट्री में तब से।
4: So, मेरे को याद है रश्मि से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, एक शो था परी हूँ मैं नाम से, और रश्मि उसमें डबल रोल कर रही थी। फर्स्ट टाइम आई मेट रश्मि, एंड मैंने रश्मि को पता है पहली चीज क्या बोली थी रश्मि, मुझे रश्मि का ओरिजिनल नाम ज्यादा पसंद है, पीपल नो हर रश्मि बट आई लाइक हर रियल नेम दैट्स दिव्या। तो मुझे दिव्या ज्यादा खूबसूरत लगता है, मैंने तो ये बात बोली सबसे पहले मिलते हैं।
5: yes.
4: तो रश्मि, गूगल जो होता है, सबसे पहले हम कोई नाम ढूंढते हैं तो सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आधी जानकारी सच होती है या नहीं होती है। तो गूगल पे लिखा है कि आप आसाम में बॉर्न हुई थी, एसमीज भी बोल लेती है, आपने एसमीज फिल्म में काम किया, क्या ये सच है? क्या गूगल सही कह रहा है?
5: सब झूठ है। गूगल के ऊपर आपको कोई मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में इनके 4 शोज की है, विच इज लव्ड बाय एवरीवन। वन इज रावण, सेकेंड इज परी हूं मैं, थर्ड इज उत्तरन एंड फोर्थ इज दिल से दिल तक. इसके अलावा मैंने कोई कैमियो किए होंगे तो वो दिखेगा. एंड देन आई हैव बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन एंड आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द टेलीविजन रियलिटी शोज. तो लोग कहते हैं कि अरे मेरे बहुत शो, मेरे शोज लंबे चले बिकॉज लोगों को पसंद आते हैं तो वो देखते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग आगे इंटरेस्टिंगली बनाते हैं. तो ऐसा जो बड़ी सी हिस्ट्री निकालते हैं ना, मेरी हिस्ट्री उतनी नहीं है. मैंने एसमेंस नहीं किया, मैंने भोजपुरी फिल्में की है. उसमें से वन ऑफ माई फिल्म शुरू के ही करियर में जिसको नेशनल अवार्ड मिला था.
4: तो आपका एक सीरियल था परी हूं मैं जिसमें आप डबल रोल किया था. और उसमें आपके दो को स्टार्स थे, एक तो थे मोहित मलिक और दूसरे थे हमारे बिग बॉस रह चुके हैं
5: करणवीर मेहरा.
4: तो करणवीर के बारे में क्या ख्याल है? एंड दिस बिग बॉस के दो कनेक्शन जो थे, तो फर्स्ट शो में ये दो आपके हीरो थे, शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे. तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा परी हूं मैं के बारे में बताओ और अपने दो को स्टार्स के बारे में.
6: मैं जो भी कहता तुम सुनती रहती हो, सहती रहती क्यों?
5: परी हूं मैं स्टार वन पे आता था, स्टार वन बंद हो चुका. और स्टार वन बंद होने के बाद स्टार भारत आया, स्टार भारत के बाद लाइफ ओके आया. तो दैट इज द रीजन लॉट ऑफ पीपल डजंट नो. बट यस, मुझे बहुत प्यार मिला. बी आर चोपड़ा का वो ऐसा पहला सीरियल था जहां पर मैंने पहली बार इन टेलीविजन डबल रोल किया था.
4: I think they're known for double roles.
5: I was, yes.
4: कामिनी दामिनी भी बनाया था डबल रोल.
7: पता चल जाएगा कि दवाई की शीशे पर किसकी उंगलियों के निशान थे, तुम लोगों को यकीन हो जाएगा.
4: हेलो, उसके बाद आपका शो,
5: उसके बाद आई थिंक सो हेमा मालिनी जी का आया था, मेरा पहले आया था. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन टेलीविजन इट हैज हैपेंड दैट प्लेइंग अ डबल रोल इन टेलीविजन, बिकॉज वो छोटे से स्क्रीन पे प्लेइंग अ गिमिक वाज नॉट अ इजी टास्क,
4: क्योंकि आपके प्रेशर बहुत होगा एक्टर को.
5: बहुत, मैं घर ही नहीं जाती थी कभी कभी. तो एक बार ऐसा हो गया था कि 72 घंटे मैंने शूट किया, तो उसके बाद करणवीर बेहरा ने बोला कि इसका शो का नाम ना परी हूं मैं मत रखो, इसका नाम है पड़ी हूं मैं कर दो. बिकॉज आई कम फ्रॉम एन एरा जहां पर आपको राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता था. तो मैं 3-4 दिन घर ही नहीं गई थी. मेरी मम्मी टिफिन लेके घर से आती थी, खाना देके जाती थी एंड मैं सेट पर ही रहती थी. कभी कभी इंस्टेंट सीन्स बना दिए जाते थे तो और करने पड़ते थे. आई यूज्ड टू फील दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ऑडियंस. इफ यू डोंट डू इट and go into that oh I'm a star, no you're nobody, basically you are doing something what people love and that's your job, and if you don't do that properly I think I'll be a failure. So mujhe bahut responsibility wala kaam lagta tha. So yeah, I feel lucky also at the same time is to be very heavy and hectic lifestyle.
4: That's a very cute.
5: And Karanveer Mehra was the stress buster for me kyunki wo bahut masti khor hai.
4: To
5: hum log, maine salsa uske paas sikha. Acting mein hum log bahut masti karte the. To hamare aadhe set pe Sunil sir hamare jo डायरेक्टर थे तो वो बहुत इरिटेट होते थे, अभी ये दो आ गए, अभी ये तो सुनेंगे ही नहीं. वो मतलब बैक बेंचर नहीं होते थे, जो टीचर अगर आ जाते थे जिनको डांट पड़ती थी तो हम दोनों, हमारी दोनों की कैटेगरी उसी में आती थी कि अब इनको बुलाएंगे, नाटक करेंगे ये वो. तो मुझे बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन माई चाइल्डहुड ओनली व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, तो मुझे बड़ा मजा आता था.
8: मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राज और निकी को देखकर इतना खुश हो सकती हूं.
5: And till today when we meet, I won't say that we meet every day, but jahan se khatam kiya tha hum wahin se shuru karte hain. Where at the same time Mohit Malik has also taught me a lot of things. I used to experiment, we used to have a lot of emotional scenes. So as an actor you have journey with every co-actor that you have worked with. So I would say I had the best time on that show.
4: But Rashmi Desai bani show tha Uttaran. और तपस्या के कैरेक्टर वैसे तो एंटेगनिस्ट थी, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ही भारी पड़ी. तो जब रोल लिया था इट वाज वेरी ग्रे कैरेक्टर, उस जमाने में ग्रे कैरेक्टर थोड़ा सा एक यू नो इट वाज अ वॉकिंग ऑन द रोप, बट स्टिल यू टुक दैट रिस्क एंड इट पेड ऑफ बिकॉज़ तपस्या बिकेम सो पॉपुलर एंड मेड गेव रश्मि देसाई द स्टैंडिंग विच यू.
9: हम आपकी पत्नी है, अच्छा होगा कि आप भी इस रिश्ते को मान जाए.
5: कोई कोई किरदार होते हैं जो छाप छोड़ते हैं, तपस्या ने छाप छोड़ा, पर कोई कोई किरदार है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं जब आप उसे निभा रहे हो, तो देखना एक अलग होता है पर जब आप निभाते हो, तो मेरी खुद की एक रिसर्च होती थी, मैं उस पर काम करती थी और मैं एक अपना कैरेक्टर पकड़ के चलती थी। तो थैंक्स टू नंदिता मेहरा जो हमारी डायरेक्टर थी, बिकॉज उनका भी विजन बहुत क्लियर होना जरूरी होता था, तो कभी मैं उनसे कुछ बोलती थी ना, मैम कैन वी डू दिस, मैम आई फील ऐसे, तो शी यूज टू हेल्प मी टू डू इवन बेटर इन दैट। तो उनको भी मजे आते थे और हमारे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, वैशाली ठक्कर, आयुब खान, प्रगति मेहरा, प्रतिमा अजी, नानी की जैसी एक्ट्रेस कोई नहीं हो सकती। तो आई थिंक सोने पे सुहागा हो गया, वो एंटायर टीम ही बहुत अच्छी थी, एंड ग्रे कैरेक्टर, आई थिंक एवरी वन इन द वर्ल्ड इज ग्रे,
9: हमारे
10: क्रिएटिवली भी बहुत डिस्प्यूट्स होते थे बिकॉज वहाँ एक जॉनर बना दिया था कि, और आई थिंक उसके बाद चेंजेस आए टेलीविजन इंडस्ट्री में भी, के जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव होने लगा और नेगेटिव को भी अच्छे तरीके से दिखा के उसको फ्लक्चुएट करने लगे थे। सो या आई इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड टू अचीव फॉर तपस्या, बिकॉज अब जब एक किरदार निभाते हो ना तो आप वो किरदार बन जाते हो कभी कभी, और आप वो
11: ऐसा होता है कि एक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है।
12: तुम भी इससे शादी नहीं कर सकते ना इच्छा, तो लो हमने भी तुम्हें दे दिया।
11: रश्मि, कभी ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव थोड़ा नेगेटिव है लेकिन उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि यू नो इट्स ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की नेगेटिविटी दिखाते करते खुद में कभी कभी नेगेटिविटी आती है, तो कैसे वो शील्ड रखता है एक्टर?
5: होती है, मैंने काउंसलिंग ली है, आई वोंट लाई, क्योंकि तब तो बोलना भी इतना ओपनली नहीं होता था, कोई समझता नहीं था दैट समवन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। ये तो कोविड के बाद अभी लोगों ने जो देखा और समझा, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो ऐसा नहीं है कि नया नया आया, नाउ यू आर aware and now you're open to accept the fact that a person is facing an issue, he just need a warmth and a space of comfort. तब मुझे कोई नहीं समझ पाता था, not even my family, so I used to take counseling and I used to speak to them, because तब जब मैं काम करती थी for उत्तरन, तब ऐसा होता था कि freshly scenes लिख के आते थे और हमें perform करना पड़ता था। अब एक हफ्ते में एक फिल्म बनाते हो ढाई घंटे की, जो आसान नहीं होता था, फिर उसके बाद जो अब बोलते ना हम तो 12 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करते, ये तो अभी का चलन है, हमने तो तब किया है जब हमें तो सुधबुद ही नहीं होती थी, 2 घंटे का वक्त मिलता था, मैं घर जाके नहा के वापस आना पड़ता था, 2 दिन बाद वापस जाते थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लॉयल्टी और दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वी हैड विद आवर टेक्नीशियन एंड आवर ऑडियंस, जहां पर हम ये हमारी कोई पर्सनल लाइफ तो होती नहीं थी, आपने तो देखा ही था।
13: इच्छा से नहीं हमसे हुई है।
11: मुलुंड में था सेट, कहां बहुत दूर, इट वाज अ फार अवे सबब ऑफ मुंबई जहां इसकी शूटिंग होती थी।
5: फिल्म नहीं देखते थे, मॉल नहीं जाने मिलता था, कुछ नहीं,
11: तभी रीलों का जमाना भी नहीं था कि टाइम पास कर लो,
5: सिर्फ काम करते थे और लोगों को पसंद आते थे, तब के शो भी बहुत अच्छे थे। अब तो मुझे ऐसे लगता है कनेक्ट ही नहीं कर पाते, एंड अ वेरी यूनिफॉर्म लुक वी हैव इन टेलीविजन, तो आई थिंक वी नीड अ ब्रेक एंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कमिंग इन टेलीविजन। अब ना लोग, मुझे ये भी लगता है कि लंबे जो शोज आते हैं ना उनसे कभी कभी बोर हो जाता है मुझे, तो सीजन वाइज आने चाहिए मुझे ऐसे लगता
14: है। ओ, तो डायपर गीला है इसलिए रो रही हैं आप।
11: So that's Rashmi Desai for you and thank you for joining me. और ऐसे ही मजेदार ट्रिविया के लिए आप मेरे पॉडकास्ट से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड हियर इज अमित त्यागी साइनिंग ऑफ, जल्दी मिलते हैं मेरे अगले पॉडकास्ट और नए मेहमान के साथ।
5: जय श्री कृष्ण।
3: देखिए, कभी कभी हम अपनी संडे की छुट्टी को पूरी तरह प्लान कर लेते हैं और ये होता है सुपर रॉकिंग, लेकिन आते हैं अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हमारी जिंदगी में और कर देते हैं उस रॉकिंग मोमेंट को शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: तानिया मित्तल बहुत जल्द Z5 के नए शो माहेरा में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ऐसे में वो पहुंच गई हैं सिद्धिविनायक मंदिर लेने बापा का आशीर्वाद। भाई, नई शुरुआत है और नए सफर के लिए ढेर सारा आशीर्वाद भी जरूरी है।

नजर डालते हैं हुमा कुरैशी के इस बनारसी साड़ी वाले लुक पर, जो उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने लिए चुना है।

फिर एक बार कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी की जोड़ी बनेगी। भाई स्क्रीन पर ये दोनों फिल्म कैप्टन इंडिया के लिए साथ साथ काम करते हुए नजर आएंगे।

0: तो देखा आपने, किसी ने फैमिली के साथ बिताया क्वालिटी टाइम, किसी ने की सेल्फ केयर और किसी ने की फुल ऑन मस्ती। यही था हमारा आज का संडे स्पेशल एपिसोड। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
6: Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: पीएम के अपील का दिखा असर, दिल्ली मेट्रो कल से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप, सुरक्षाकर्मी स्टाफ सुविधाएं भी बढ़ेंगी। देश में एलपीजी संकट होगा दूर, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, ऑपरेशनल समन्वय और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया एकीकृत नाइट एक्सरसाइज का आयोजन, युद्ध तत्परता, सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। आर्मी बैंड के धनों के बीच चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रात के लिए रवाना, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धूमधाम से मना हजरत साईं बाबा मीरान बख्श दरवेश का सालाना उर्स, बड़ी संख्या में जुटे सभी धर्म और समुदाय के लोग, एकता और भाईचारे का दिया संदेश। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में ईएसआई की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की गई मां बाग देवी की पूजा, खुशी से जमकर थिरके भक्त।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
12: चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रुद्रनाथ की डोली को विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया रवाना, आर्मी बैंडों के मधुर धुन के बीच शुरू हुई यात्रा। डोली यात्रा के दौरान दिखा भक्ति और आस्था का अलौकिक नजारा, पूरा गोपेश्वर विश्व भक्ति के सैलाब में डूबा। ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से लाया गया था बाहर, गोपीनाथ मंदिर में दो दिनों तक भक्तों ने किया दर्शन पूजन। हजारों भक्तों की मौजूदगी में डोली की गई रवाना, डोली का जगह जगह हुआ दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख भक्तों ने की तीर्थ यात्रा। चारधाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला, शनिवार को 80,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में कल 29,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6 लाख से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भी 23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 3,88,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार, शनिवार को 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। आज से ब्रज की पवित्र 84 कोशीय परिक्रमा की शुभ शुरुआत, भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसी परिक्रमा, मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमा मार्ग में नंदगांव, गोकुल, बरसाना जैसे पवित्र स्थल शामिल, अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व। अधिक मास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे भक्त, श्री राम के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा का किया गया दिव्य श्रृंगार, सुबह की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अयोध्या काशी की तरह संभल बनेगा धार्मिक हब, तैयारियां शुरू। सीएम योगी ने संभल को दी बड़ी सौगात, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति। बता दें आपको, करोड़ों रुपए की लागत से वंश गोपाल तीर्थ पर विश्राम गृह और इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ शुरू। डीएम ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण, डीएम ने अफसरों के साथ देखा प्राचीन तीर्थ का नक्शा। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा का नक्शा तैयार करने में जुटी पुलिस, मंदिर निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर जमीन की खरीद होगी। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की खबर, 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। सिमी कैरियर कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंचा, टैंकर का सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी सफलता। सिमी ने 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए नई पहल, दिल्ली मेट्रो कल से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। बीएमआरसी हर सोमवार को चलाएगी अतिरिक्त 6 ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। भारतीय रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारत और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 का सफल अभ्यास समापन कंबोडिया में आयोजित किया गया था। अभ्यास सिनबैक्स में भारतीय और कंबोडियाई सैनिकों ने संयुक्त युद्ध कौशल का दिया परिचय। आधुनिक रणनीतियों से आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूती बढ़ाना अभ्यास का मकसद। सिनबैक्स में दोनों देशों के सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने का प्रशिक्षण हासिल किया। रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की जताई गई उम्मीद। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया एकीकृत नाइट एक्सरसाइज का आयोजन। सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। श्रीनगर में खिली धूप के बीच सैलानियों से गुलजार। डल झील पर्यटक उठा रहे शिकारा की सवारी का लुत्फ। डल झील के किनारे दुकानदार कर रहे स्थानीय सामानों की बिक्री। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पंछ जिले के गुंटोरियन गांव में साई मीरा बख्श की जियारत पर 3 दिवसीय उर्स का समापन। अंतिम दिन भारी संख्या में पहुंचे लोग। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ट्रेन से अजमेर तक का किया सफर। लोगों को दिया पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश। लुप्रोसी के प्रति जागरूकता की अलग जगा रही फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4,900 किलोमीटर की यात्रा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के 71वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन सीएम मोहन मांझी ने किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 14 साल के बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने रचा इतिहास। ताशकंद में आयोजित अंडर 15 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। यासिर ने प्री क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से दी मात। क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को भी 5-0 से एक तरफा हराया। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान। 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का पालन करें परेशानी से बचें। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब। 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित। विधि विधान से की पूजा। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा बीजेपी के राज्य में देश भर में हो रहा विकास। नागपुर में नितिन गडकरी ने नागपुर मडगांव एक्सप्रेस वे को दिखाई हरी झंडी किया रवाना। विकासनगर में नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन डूब रहे 2 मासूमों के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बाराबंकी में पुलिस का एक अनूठा संदेश साइकिल पर सवार गश्त पर निकले थाना प्रभारी। रामबन में सीआरपीएफ ने योग प्रतियोगिता का किया आयोजन बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। एमपी के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व की नई पहल महिला समूह संभाल रही कैंटीन का संचालन। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के रवाना सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला कक्षा 9वीं और 12वीं 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम। 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी अनिवार्य।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो।

नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन,

0: मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है। ये इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है, मसों में ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: पीएम की अपील का दिखा असर, दिल्ली मेट्रो कल से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप, सुरक्षाकर्मी स्टाफ सुविधाएं भी बढ़ेंगी। देश में एलपीजी संकट होगा दूर, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा एलपीजी कैरियर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स सेकेंड 2024 कंबोडिया में संपन्न, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, ऑपरेशनल समन्वय और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया एकीकृत नाइट एक्सरसाइज का आयोजन, युद्ध तत्परता, सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। आर्मी बैंड की धुनों के बीच चतुर्थ केदार, बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धूमधाम से मना हजरत साईं बाबा मीरान बख्श दरवेश का सालाना उर्स, बड़ी संख्या में जुटे सभी धर्म और समुदाय के लोग, एकता और भाईचारे का दिया संदेश। धार की ऐतिहासिक भोरशाला में ईसाई की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की गई मां बागदेवी की पूजा, खुशी से जमकर थिरके भक्त।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की उपासना से हमारे व्यक्तित्व में तेज आता है, शिक्षा में तरक्की और सफलता के लिए भी सूर्य देव की उपासना बेहद कारगर मानी गई है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि वो भगवान सूर्य ही हैं जिनके तेज से इंसान को ज्ञान और शिक्षा की रोशनी मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि शिक्षा में सफलता पाने के लिए सूर्य की कैसे करें उपासना और किन कारणों से हमें शिक्षा से मिलती है विफलता। साथ ही जानेंगे सूर्य के वो कौन से मंत्र हैं जिनसे हो सकता है आपका कल्याण। चलिए आपको बताते हैं।

0: जानकारों की माने तो केवल सूर्य की उपासना करके इंसान अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए सूर्य उपासना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे सूर्य और शिक्षा का संबंध क्या है और रविवार को सूर्य के ध्यान से कैसे मिलेगा आपको ज्ञान। देखिए, सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। कुंडली में सूर्य शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने योग्य भी बनाता है। सूर्य के कमजोर होने से शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं।
1: शिक्षा में आ रही बाधा के लिए सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और जो व्यक्ति शिक्षा पूर्णता नहीं कर पा रहा है, मन में उसके जो है निराशा है और उसके अंदर वो जज्बा नहीं आ रहा है जिससे वो पढ़ सके, तो इसके लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए और विशेष रूप से रविवार को जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर जो है ऊर्जा का नया संचार होता है, विद्यार्थियों को इससे जो है पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। और सूर्य की उपासना करना चाहिए, उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए जो है सूर्य का आसन करना चाहिए, यानी सूर्य प्रणाम करना चाहिए, वो प्रतिदिन किया जाना चाहिए।
0: सूर्य उपासना में आपकी शिक्षा और करियर से जुड़ी हर समस्या का समाधान छुपा है। तभी तो शिक्षा में लाभ के लिए हम आपको सूर्य उपासना की सलाह दे रहे हैं। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं सूर्य कृपा पाने के कुछ आसान और अचूक मंत्र। तो ध्यान से देखिए, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आपके जीवन को सूर्य के समान कांतिमान बना सकता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मार्चाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
1: सूर्य को अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और सूर्य से ही सारे पृथ्वी पर ऊर्जा का संचार होता है और जिससे यहाँ पे जन जीवन सब कुछ चलता है। और अग्नि के बारे में ऋग्वेद में प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में ही बताया गया है, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्माम। अर्थात अग्नि जो है वो सभी चीज़ों की प्रदाता है और अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारे पृथ्वी के ब्रह्मांड में आता है, वो सूर्य है। इसलिए सूर्य को जो है आत्मा कारक माना गया है।
0: अगर आप अपनी शिक्षा या करियर से संतुष्ट नहीं तो ये मंत्र आपके लिए बड़ा समाधान बन सकते हैं, खासकर अगर इन मंत्रों का जब उगते हुए मधुर लालिमा वाले सूर्य के सामने किया जाए तो ये मंत्र और भी प्रभावी होते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए सूर्य देव की उपासना कितनी सर्वोत्तम मानी गई है इसके पीछे के तर्क भी हमने जाने, और जाने वो मंत्र जिनके जाप से सूर्य होते हैं प्रसन्न और बेहतर होता है हर विद्यार्थी का जीवन। लेकिन सूर्य से शिक्षा का आशीर्वाद कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये जानना बेहद जरूरी है।
1: देखिए, उत्तम शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय के साथ ही उठ जाना चाहिए और सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए और सूर्य नमस्कार करते हुए 12 जो आदित्य के नाम हैं उनके नाम का स्मरण करते हुए और सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए और पूरे एकाग्रता के साथ, जिस प्रकार से सूर्य जो है प्रतिदिन प्रभात में सूर्योदय के समय निकलता है और अपने ऊर्जा से, अपने किरणों से संपूर्ण सृष्टि का जो है पालन करता है, उसी प्रकार से धैर्य के साथ और उसी प्रेरणा के साथ विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए।
0: सुबह जल्दी उठने पर, साफ सुथरे तरीके से रहने पर, सूर्य की रोशनी का लाभ उठाने पर, पिता और गुरुजनों का सम्मान करने पर, खान पान शुद्ध रखने पर, जानकारों की माने तो कुंडली में सूर्य की स्थिति से ये साफ बताती है कि इंसान की शिक्षा कैसी होगी। लेकिन कुछ आदतें भी ऐसी हैं जिनके कारण इंसान सूर्य कृपा से वंचित रह जाता है और उसकी शिक्षा बदतर हो जाती है। तो आइए जानते हैं उन गलत आदतों के बारे में जो आपकी शिक्षा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है।
1: देखिए, कुंडली के अनुसार जब सूर्य 6, 8, 12 घर में होता है अथवा सूर्य विशेष रूप से राहु या केतु से पीड़ित होता है अथवा उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, तो ऐसे में जातक को शिक्षा नौकरी और उसके जो तेज पर एक प्रकार का ग्रहण लगता है, यहाँ तक कि पिता के ऊपर भी जो है समस्या आती है, तो इसके लिए उपाय किया जाता है सूर्य के बीज मंत्र ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इसका जाप करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो उससे निश्चित ही लाभ मिलता है।
0: कब आती है शिक्षा में बाधा? सूर्योदय के बाद देर तक सोने से, अंधेरे घर में या कमरे में रहने पर, अपने पिता का सम्मान ना करने पर, लेटकर पढ़ने लिखने पर, ज्यादा पेट भरकर खाने पर। कहते हैं शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हर समस्या का समाधान है सूर्यदेव के पास, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए करने होंगे कुछ विशेष उपाय। आइए आपको बताते हैं। रोजाना सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करें। सूर्य के किसी भी मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। रविवार को तेल और नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। आपके कर्म ही आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं, इसलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए और सूर्य कृपा पाने की राह को सरल बनाइए। आगे हम आपको बताएंगे शिक्षा की बाधा सूर्यदेव के आशीर्वाद से कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे सूर्यदेव के 21 चमत्कारी नाम। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि रविवार का दिन सूर्य की साधना के लिए सर्वोत्तम होता है, ये ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सूर्यदेव से जुड़ा वो कौन सा महा उपाय है जिससे शिक्षा में लाभ मिल सकता है। साथ ही आपको बताते हैं कि सूर्य के 21 नामों को जपने से कैसे आपकी स्मरण शक्ति में सुधार होगा।

0: सूर्य उपासना के लिए सबसे उत्तम है रविवार। सूर्य उपासना से उत्तम होगा स्वास्थ्य, दूर होंगे विकार। अगर आप करियर में पाना चाहते हैं सफलता, रविवार का अर्घ दूर करेगा सारी विफलता। माना जाता है सूर्य की साधना से कुंडली के दोषों को दूर किया जा सकता है, जिससे जीवन में तेज ऊर्जा और समृद्धि आती है। खासकर इस दिन आदित्य हृदय स्त्रोत और सूर्य नमस्कार का पाठ लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य उपासना का सबसे उत्तम दिन है रविवार। इस दिन सूर्य की उपासना विशेष रूप से प्रभावी होती है, इसीलिए अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर लें, तो आपकी शिक्षा और करियर दोनों के मामले सवर सकते हैं। कैसे, देखिए।
1: सूर्य से लाभ पाने के लिए सबसे पहले प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना निश्चित चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सूर्य की रोशनी में सूर्य नमस्कार निश्चित करना चाहिए। सूर्य का बीज मंत्र होता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप निश्चित करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन हवन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि के सबसे बड़े प्रतीक हैं और अग्नि के सबसे प्रत्यक्ष रूप से माने जाने वाले ग्रह हैं।
0: सूर्य से कैसे मिलेगा शिक्षा में लाभ? सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज्यादा समस्या हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें, पढ़ने के लिए लकड़ी की मेज और कुर्सी का प्रयोग करें, सलाह लेकर एक माणिक्य या स्पाइनल धारण करें, पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। सूर्य की कृपा इंसान के जीवन के लिए अमृत समान है, क्योंकि सूर्य से ही ये पूरी सृष्टि चलायमान है। तो जिस सूर्य का है इतना प्रताप, उसे कैसे अनुकूल बनाएं आप, इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है। सूर्य कृपा के लिए उनके नामों का जाप भी बेहद असरदार माना जाता है। अर्घ देने और सूर्य के मंत्रों के जाप से भी ज्यादा प्रभावशाली है सूर्य के नामों की स्तुति।
1: सूर्य नारायण के लिए रविवार के दिन जो है गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य का स्त्रोत 12 आदित्य हृदय स्त्रोत जो बोलते हैं उसका पाठ करना चाहिए और बीज मंत्र के साथ साथ जो है स्त्रोत आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेतु दारिद्र्यम नोपजायते, इस मंत्र का जो है हमेशा कम से कम एक माला जाप करें, अन्यथा 11 बार जाप करें, तो इससे व्यक्ति को सुख स्वास्थ्य समृद्धि और उसकी सभी प्रकार की दरिद्रता जो है वो नष्ट होती है।
0: सूर्य की स्तुति में सूर्य के 21 नामों का उल्लेख है। कहते हैं सूर्य के 21 नाम अगर हर सुबह के समय पढ़े जाएं तो मिल सकता है सूर्य कृपा का लाभ। तो चलिए हम आपको उन 21 नामों के बारे में बताते हैं। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रह, तपन, तापन, शुचि, सप्ताशवाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत। मंत्र जाप के जैसे ही दिव्य नामों के जाप का ही एक तरीका होता है। तो आखिर सूर्य के नामों को जपने का तरीका क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं वो तरीका जिससे आप सूर्य देव के इन 21 नामों का जाप करके उनकी कृपा पा सकते हैं। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें, इसके बाद वहीं खड़े होकर सूर्य के 21 नाम पढ़ें, अपनी प्रार्थना कहें, आपको सूर्य की कृपा हासिल होगी।
1: सूर्य को वेद का जननी भी कहा जाता है, अर्थात वेद जो अपने शब्द ब्रह्म को हम कहते हैं, उसमें जो ओमकार की ध्वनि है, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, और सविता जिसे गायत्री मंत्र में भी बताया जाता है, जो शब्द ब्रह्म में पराशक्ति का सबसे पहला विषय आता है, वहाँ पे जो शब्द ब्रह्म बताया गया है, जो महागायत्री हैं, वो उनकी उपासना भी सूर्य के रूप में की जाती है और सूर्य ही शब्द ज्ञान के प्रदाता हैं, इसलिए जो है उन्हें शिक्षा का सबसे प्रमुख माना जाता है।
0: सूर्य की कृपा पाने का इन सभी से भी एक सरल उपाय है और वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप अर्घ ना दे पाएं, उनकी उपासना भी ना कर पाएं, तब भी अगर आप रोज कुछ देर सूर्य की रोशनी में बिताएं और मन ही मन सूर्य के नाम भी जप लें, तो आप भी सूर्य कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो परम तेजस्वी भगवान भास्कर की उपासना कैसे करनी है, कब करनी है और कैसे उससे शिक्षा का वरदान मिल सकता है, ये भी हमने जाना, पर सूर्य से केवल शिक्षा का वरदान नहीं मिलता बल्कि सूर्य उपासना से सेहत, आयु, आरोग्य और धन का वरदान मिलता है। तो सूर्य को अपनी कुंडली अनुकूल बनाएं ताकि जीवन में आप सफलता ही सफलता पाएं।
2: सूर्यदेव से विद्या और शिक्षा का वरदान पाने के लिए सूर्य उपासना और इसके नियमों को जानना भी बेहद जरूरी है। साथ ही आपके अच्छे कर्मों से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा।

0: अगर पाना चाहते हैं विजय का वरदान, आदित्य हृदय स्तोत्र है उत्तम समाधान। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मिलेगी सफलता, आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देंगे सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अद्भुत प्रयोग बदल सकते हैं आपकी किस्मत। सूर्य की कृपा पाने का महास्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से मिलता है सूर्य के समान तेज। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं।
1: देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, जैसा कि नाम ही इसका अर्थ बता रहा है, आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य जगत की आत्मा है। बिना सूर्य के इस जगत की परिकल्पना दूर दूर तक नहीं हम कर सकते। सूर्य है तभी जगत है। इसलिए सूर्योपासना का धर्म शास्त्रों में बहुत महिमा का गान किया गया है। परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप, तेजोमय रूप अगर है तो वह सूर्य है।
0: आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और युद्ध तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन ना करने से इसका फल नहीं मिलता।
1: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का जो नियम है, ये इसका पाठ ऊषा काल में किया जाए तो बहुत उत्तम है। यानी कि सूर्योदय हो चुका हो उसी समय, लालिमा आसमान में प्रारंभ हो चुका हो, सूरज न निकला हो, और उसी समय दिव्य आसन लगा करके सूर्य की तरफ मुँह कर करके एक दीपक जला करके और सूर्य नारायण को पहले अपने शरीर की शुद्धि, फिर वाचिक कायिक मानसिक शुद्धि करके और गणेश जी का स्मरण करके सूर्य नारायण का स्मरण करें, भगवान सूर्य को, और फिर ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्घ दें। नमस्कार प्रियो भानु, भानु को नमस्कार प्रभु बहुत प्रिय है, और उसके बाद आसन पर बैठ करके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार संख्या पूर्वक इसका पाठ किया जाना चाहिए।
0: सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है, उसी तरह कई मंत्रों और स्तोत्रों का अपना अलग महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से जहाँ एक तरफ घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है, वहीं स्तोत्रों के पाठ से किस्मत बदल जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है।
1: तो निश्चित रूप से विजय की कामना कहीं भी किसी भी क्षण और किन्हीं भी परिस्थितियों में जब हम विजय की कामना चाहते हैं, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे शत्रु विजय की कामना हो, चाहे आपसी द्वंद हो, किसी से विवाद हो, ऐसे क्षण में जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उस हमारा विजय निहित तो हो जाता है। विजय निश्चित रूप से संभव हो जाता है। सारे दुख क्लेश क्लांत ये सब शांत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: सूर्य उपासना और सूर्य की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ महाकल्याणकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिल सकता है। मुकदमे जैसी परेशानी हो या फिर सेहत संबंधी बाधा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका पाठ किन लोगों को करना चाहिए? अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खास तौर से हड्डियों या आंखों का रोग, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए।
1: आदित्य हृदयम पूर्णम सर्व शत्रु विनाशनम, यह आदित्य हृदय जो पाठ है, खास तौर से सर्व शत्रु विनाशनम, चाहे रोग रूपी शत्रु हो, चाहे दारिद्रता रूपी शत्रु हो, और चाहे भौतिक रूप से युद्ध में जो शत्रु हो, सारे प्रकार के शत्रुओं को दूर करने में यह तुरंत जपावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शुभम।
0: आदित्य हृदय स्तोत्र के परिमाण स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा।
2: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।

0: Your Saturday nights will never be the same.
1: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
2: The Tailgate Block Party.
0: The Tailgate Block Party.
1: 6 hours nonstop. Nonstop.
2: The best DJs from around the world.
0: The Tailgate Block Party.
1: Saturday night.
0: 8 p.m. Eastern.
2: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
1: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
2: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहाँ अपने शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
3: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
4: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
2: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन मिस्ट्रे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
5: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को। खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन की ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 में दोनों देशों के बीच दिखा आपसी तालमेल, समंदर में रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम, आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़े ने लिया भाग, अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज विधि विधान से हुई मां बागदेवी की पूजा। भक्ति आस्था के साथ खुशी में झूमे भक्त। एएसआई की गाइडलाइंस के तहत आयोजन।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।

0: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कान्स का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनी कॉम लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत $155.87 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शियर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस जोलीपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसर यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके इस सफर का आगाज 2022 में हुआ था। तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपने बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही दारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को हुमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपने तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहाँ चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहाँ ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ हुमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ

दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव जूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। तेरह में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास के सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। '88 में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। '22 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का

0: मौका मिला जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है, जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है। उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साय में हुआ था। कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा।
2: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल कालीन यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहां की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहां रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है। जहां होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहां समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्ट्रा फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की ज्यूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए। दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्ट्रा फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोक से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्ट्रा के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहां कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीन जे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ ये आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946 के पहले ही साल में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने इस फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है जहां चमकने की हसरत हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सितारों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Jam out to your favorite songs with today's hits. Tune in has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on and hip hop beats.
2: I'm in the game, I should I join with this G23.
1: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: ना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन की ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 में दोनों देशों के बीच दिखा आपसी तालमेल, समंदर में रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम, आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़ी ने लिया भाग, अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज विधि विधान से हुई मां बागदेवी की पूजा, भक्ति आस्था के साथ खुशी में झूमे भक्त, ASI की गाइडलाइंस के तहत आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रुद्रनाथ की डोली को विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया रवाना, आर्मी बैंडों की मधुर धुन के बीच शुरू हुई यात्रा। डोली यात्रा के दौरान दिखा भक्ति और आस्था का अलौकिक नजारा, पूरा गोपेश्वर भक्ति के सैलाब में डूबा। ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से लाया गया था बाहर, गोपीनाथ मंदिर में 2 दिनों तक भक्तों ने किया दर्शन पूजन। हजारों भक्तों की मौजूदगी में डोली की गई रवाना, डोली का जगह जगह किया जाएगा दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख भक्तों ने की तीर्थ यात्रा। चारधाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला, शनिवार को 80,000 भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में कल 29,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 3,88,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार, शनिवार को 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। आज से ब्रज की पवित्र 84 कोसी परिक्रमा की शुभ शुरुआत, भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसी परिक्रमा, मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमा मार्ग में नंदगांव, गोकुल, बरसाना जैसे पवित्र स्थल शामिल, अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व। अधिक मास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे भक्त, श्री राम के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा का किया गया दिव्य श्रृंगार, सुबह की आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अयोध्या अयोध्या काशी की तरह संभल बनेगा धार्मिक हब, तैयारियां शुरू। सीएम योगी ने संभल को दी बड़ी सौगात, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति। कई करोड़ रुपए की लागत से वंश गोपाल तीर्थ पर विश्राम गृह इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का होगा निर्माण। डीएम ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण, डीएम ने अफसरों के साथ देखा प्राचीन तीर्थ का नक्शा। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा का नक्शा तैयार करने में जुटी पुलिस, मंदिर निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर जमीन की होगी खरीद। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की खबर, 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। सिमी कैरियर कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंचा, टैंकर का सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी सफलता। सिमी ने 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए नई पहल, दिल्ली मेट्रो कल्चर से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। बीएमआरसी हर सोमवार को चलाएगी 6 अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन की ट्रिप। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल, रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा। भारत और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का सफल समापन, कंबोडिया में आयोजित किया गया था अभ्यास। सिनबैक्स में भारतीय और कंबोडियाई सैनिकों ने संयुक्त युद्ध कौशल का दिया परिचय, आधुनिक रणनीतियों से आतंकवाद रोधी अभियानों में मजबूती बढ़ाना अभ्यास का मकसद। सिनबैक्स में दोनों देशों की सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने का प्रशिक्षण हासिल किया, रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की जताई उम्मीद। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया संयुक्त अभ्यास, सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। श्रीनगर में खिली धूप के बीच सैलानियों से गुलजार, डल झील पर्यटक उठा रहे शिकारा की सवारी का लुत्फ। डल झील के किनारे दुकानदार कर रहे हैं स्थानीय सामानों की बिक्री, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुंटुरियन गांव में साईं मीरा बख्श की जियारत पर 3 दिवसीय उर्स का समापन, अंतिम दिन में भारी संख्या में पहुंचे लोग। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ट्रेन से अजमेर तक का किया सफर, लोगों को दिया पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश। लेप्रोसी के प्रति जागरूकता की अलख जगा रहा फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4,900 किलोमीटर की यात्रा की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के 71वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, सीएम मोहन मांझी ने किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 14 साल के बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने रचा इतिहास, ताशकंद में आयोजित अंडर 15 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। यासिर ने प्री क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से दी मात, क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को भी 5-0 से एक तरफा हराया। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का पालन करें परेशानी से बचें। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान से की पूजा। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साई ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा बीजेपी के राज्य में देश भर में हो रहा विकास। नागपुर में नितिन गडकरी ने नागपुर मडगांव एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। विकास नगर में नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन, डूब रहे 2 मासूमों को स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बाराबंकी में पुलिस का एक अनूठा संदेश, साइकिल पर सवार पर गश्त पर निकले थाना प्रभारी। रामबन में सीआरपीएफ ने योग प्रतियोगिता का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। एमपी के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व की नई पहल, महिला समूह संभाल रही कैंटीन का संचालन। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए हुआ रवाना, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी अनिवार्य। असम दौरे के दौरान प्रशिक्षण शिविर के बाद गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बरबारी के सुदर्शनालय पहुंचे। गुजरात में जनगणना का काम शुरू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर और करवाई जनगणना। गोंडा पहुंचे अमेरिका के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल, ब्रजभूषण सिंह से की मुलाकात। बिहार के छपरा पहुंचे अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और प्रीति अडानी, गायत्री मंदिर शक्ति पीठ में की प्रार्थना। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान में पहुंचे सीएम योगी, शिविर का किया निरीक्षण। धार की ऐतिहासिक बोरशाला में ईसाई की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की गई मां बागदेवी की पूजा, जमकर थिरके भक्त। उधम सिंह नगर में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल पर पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास, लगभग 11 करोड़ 40 लाख की लागत से बना पुल। श्रीनगर में पारंपरिक जल संरक्षण और सामुदायिक उत्सव का दिखा अनूठा संगम, फिशिंग एंड क्लीनिंग फेस्टिवल में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। श्रीनगर में फेस्टिवल के दौरान लोगों के बीच हुई मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, साथ में लोगों ने तालाब की सफाई भी की। यूपी के प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा, दोपहर में घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, और बढ़ेगा तापमान, लोगों को सतर्क रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान से बेहाल जनजीवन, ट्रांसफार्मरों को कूलर से बचाने में जुटा बिजली विभाग। टिहरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बारिश, सड़कें बनी तालाब। वर्ल्ड फेमस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का धमाकेदार फिनाले, बुल्गारिया ने 516 अंक के साथ खिताब किया हासिल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया फिनाले, 25 देशों के संगीत कलाकारों ने लिया था हिस्सा। बुल्गारिया के हिट गाने बंगारंगा ने जीता लोगों का दिल, सिंगर द्वारा के जोशीले अंदाज ने गाने में डाली नई जान। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के दौरान जुड़ रहे करोड़ों दर्शक, वोटिंग और जूरी ने मिलकर किया फैसला। यूरोविजन के फाइनल में 43 पॉइंट के साथ इजराइल रहा रनर अप, यूनाइटेड किंगडम को मिले सबसे कम 1 अंक। चीन में ग्रेट वॉल मैराथन का आयोजन, 1500 धावकों दौड़ में लिया हिस्सा। मैराथन में 50 से ज्यादा देशों के रनर्स हुए शामिल, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के 138 धावकों ने लिया हिस्सा। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक मानी जाती है ग्रेट वॉल मैराथन, रनर्स को 5164 सीढ़ियों, खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। प्रतियोगिता में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर फन रन का आयोजन, फुल मैराथन में 493, हाफ मैराथन में 504 और वन फन रन में 388 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 150 रनर्स के साथ साल 1999 में हुई थी ग्रेट वॉल मैराथन की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी दौड़ में प्रतियोगिता को किया गया शामिल। रियो डी जेनेरियो के एयरोस्पेस म्यूजियम में भव्य मसाल एयर शो का आयोजन, राज्य के सबसे बड़े हवाई शो के रूप में मान्यता। ब्राजीलियाई वायुसेना ने की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन, एयर शो में लोगों को मुफ्त में दिया गया प्रवेश। शो में मशहूर स्मोक स्क्वाड्रन ने दिखाए शानदार हवाई करतब, तेज रफ्तार विमानों की उड़ान देखकर रोमांचित हो उठे दर्शक। एयर शो में 100 से ज्यादा पुराने और आधुनिक विमानों को किया गया शामिल, लोगों को विमानों को करीब से समझने का मिला मौका। एयर शो के दौरान लोगों के लिए चलाई गई कई मनोरंजक गतिविधियां, शो में दिखी ब्राजील की समृद्ध विमानन विरासत। साइंस दर्शन ने T20 क्रिकेट में रच दिया नया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया की धुरंधर का महारिकॉर्ड किया ध्वस्त। सुदर्शन इनिंग्स के हिसाब से सबसे तेज 3000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। सुदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया के शान मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा। शान मार्श ने 85 इनिंग्स में पूरे किए थे 3000 रन, सुदर्शन ने 78वीं पारी में ही हासिल कर ली थी सफलता। फिन एलन ने की वेब श्रेणी की बराबरी, 10 छक्के और 4 चौके की मदद से 35 गेंदों में बनाए 93 रन। गुजरात टाइटंस को हाई स्कोरिंग मुकाबले में हराकर केकेआर को मिला मौका, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस में बरकरार। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो बड़े मुकाबले, पहला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। पंजाब ने दिया बेंगलुरु को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का मौका। शाम को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें होंगी आमने सामने, प्लेऑफ में बने रहने के लिए दिल्ली के लिए जीत जरूरी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 243 रन से दर्ज की धमाकेदार जीत, गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया। फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, केकेआर को मिली तेज शुरुआत। अंगकृष्ण रघुवंशी की 82 रन की पारी, मध्यक्रम की मजबूत संस्था बनी, कैमरून ग्रीन की 52 रन की तेज पारी। प्रभास की कल की टूर में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण की पेडी के ट्रेलर लॉन्च में होगी एमएस धोनी की एंट्री, 4 जून को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन का अहम रोल। अविका गौड़ से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा ये तीसरी थी, केकेआर 15 में दिखेंगे साथ। फिल्म भूत बंगला ने मचाए धमाल, फिल्म ने 29 दिनों में की 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फ्रेंचाइजी को ले जाएगी नेक्स्ट लेवल, रोहित शेट्टी ने इस मूवी में वो विलन का करेंगे रोल। गोलमाल 5 में जुड़कर मेकर्स ने इस फिल्म की बढ़ाई, अक्षय कुमार इस मूवी में एक कॉमिक विलन का करेंगे रोल। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में लग रही बेहद खूबसूरत, आंखों में काजल बालों में फूल लगाए नयनतारा ने दिया पोज। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार है नयनतारा, फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस है। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल से सामने आया सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में दिखे एक्टर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan. Back, Jack, do it again. Log Bargains in Messina. Even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, इसमें कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर देंगे।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन की ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 में दोनों देशों के बीच दिखा आपसी तालमेल, समंदर में रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम, आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़ी ने लिया भाग, अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज विधि विधान से हुई मां बागदेवी की पूजा, भक्ति आस्था के साथ खुशी में झूमे भक्त, एएसआई की गाइडलाइंस के तहत आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजन्स का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनकी जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थीं। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
1: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
1: आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफकोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रही। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
1: मैं अभी ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
1: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
1: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफ़ी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
1: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7। But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
0: दिलचस्प बात तो ये है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
1: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म। एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि ये मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
2: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
1: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
1: For some reason, my father is outstanding.

0: जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
1: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था? ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
0: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
1: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतारकर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
2: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
1: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी, और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया

0: संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो वंदे मेहदम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

0: Tune in How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। देश में LPG सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनेवेक्स 2 में दोनों देशों के बीच दिखा आपसी तालमेल, समंदर में रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम, आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़ी ने लिया हिस्सा, अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज विधि विधान से हुई मां बागदेवी की पूजा, भक्ति आस्था के साथ खुशी में झूमे भक्त, ASI की गाइडलाइंस के तहत आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रवाना, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रुद्रनाथ की डोली को विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया रवाना, आर्मी बैंडों की मधुर धुन के बीच शुरू हुई यात्रा। डोली यात्रा के दौरान दिखा भक्ति और आस्था का अलौकिक नजारा, पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के सैलाब में डूबा। ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से लाया गया था बाहर, गोपीनाथ मंदिर में 2 दिनों तक भक्तों ने किया दर्शन पूजन। हजारों भक्तों की मौजूदगी में डोली की गई रवाना, डोली का जगह जगह किया गया दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख भक्तों ने की तीर्थ यात्रा। चार धाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला, शनिवार को 80,000 भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में कल 29,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु ने किए केदारनाथ धाम में दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भी 23,000 से अधिक भक्तों ने किया दर्शन पूजन, अब तक 3,88,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार, शनिवार को 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। आज से ब्रज की पवित्र 84 कोसीय परिक्रमा की शुभ शुरुआत, भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसीय परिक्रमा, मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमा मार्ग में नंदगांव, गोकुल, बरसाना जैसे पवित्र स्थल शामिल, अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व। अधिक मास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु, श्री राम के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर बाबा का दिव्य श्रृंगार, सुबह की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अयोध्या काशी की तरह संभल बनेगा धार्मिक हब, तैयारियां शुरू। सीएम योगी ने संभल को दी बड़ी सौगात, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 100 करोड़ की दी स्वीकृति। करोड़ों रुपए की लागत से वंश गोपाल तीर्थ पर विश्राम गृह इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य हुआ शुरू। डीएम ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण, डीएम ने अफसरों के साथ देखा प्राचीन तीर्थ का नक्शा। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा का नक्शा तैयार करने में जुटी पुलिस, मंदिर निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर जमीन की होगी खरीद। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की खबर, 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। सिमी कैरियर कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंचा, टैंकर का सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी सफलता। सिमी ने 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर बना। दिल्ली में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए नई पहल, दिल्ली मेट्रो कल से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। बीएमआरसी हर सोमवार को चलाएगी 6 अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सेनेबेक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल और रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा। भारत और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सेनेबेक्स 2026 का सफल समापन, कंबोडिया में आयोजित किया गया था अभ्यास। सेनेबेक्स में भारतीय और कंबोडियाई सैनिकों ने संयुक्त युद्ध कौशल का दिया परिचय, आधुनिक रणनीतियों से आतंकवाद रोधी अभियानों में मजबूती बढ़ाना अभ्यास का मकसद। सेनेबेक्स में दोनों देशों की सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने का प्रशिक्षण हासिल किया, रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की जताई गई उम्मीद। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया संयुक्त अभ्यास, सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। श्रीनगर में खिली धूप के बीच सैलानियों से गुलजार, डल झील बैठक उठा रहे शिकारा की सवारी का लुत्फ। डल झील के किनारे दुकानदार कर रहे स्थानीय सामानों की बिक्री, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुंटूरियन गांव में साईं मीरा बख्श की जियारत पर 3 दिवसीय उर्स का समापन, अंतिम दिन में भारी संख्या में पहुंचे लोग। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ट्रेन से अजमेर तक का किया सफर, लोगों को दिया पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश। नेक्रोसी के प्रति जागरूकता की अलख जगा रहा फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4,900 किलोमीटर की यात्रा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के 71वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी ने किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 14 साल के बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने रचा इतिहास, ताशकंद में आयोजित अंडर 15 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। यासिर ने प्री क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से दी मात, क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को भी 5-0 से एक तरफा हराया। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, एडीसीपी बोली ट्रैफिक नियमों का पालन करें परेशानी से बचें। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब, 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित, विधि विधान से की पूजा। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा बीजेपी के राज में देश भर में हो रहा विकास। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर मंडगांव एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। विकासनगर में नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन, डूब रहे 2 मासूमों की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बाराबंकी में पुलिस का एक अनूठा संदेश, साइकिल पर सवार गश्त पर निकले थाना प्रभारी। रामबन में सीआरपीएफ ने योग प्रतियोगिता का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। एमपी के मंडल नालंदा में कान्हा टाइगर रिजर्व की नई पहल, महिला समूह संभाल रही कैंटीन का संचालन। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी अनिवार्य। असम दौरे के दौरान प्रशिक्षण शिविर में के बाद गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बरवारी के सुदर्शनालय पहुंचे। गुजरात में जनगणना का काम शुरू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर और करवाई जनगणना। गोड्डा पहुंचे अमेरिका के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर एल्स्टन हॉल, ब्रिजभूषण सिंह से की मुलाकात। बिहार के छपरा पहुंचे अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और प्रीति अडानी, गायत्री मंदिर शक्तिपीठ में की प्रार्थना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में पहुंचे सीएम योगी, शिविर का किया निरीक्षण। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की गई मां बागदेवी की पूजा, जमकर थिरके भक्त।

उधम सिंह नगर में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास, लगभग 11 करोड़ 40 लाख की लागत से बना पुल। श्रीनगर में पारंपरिक जल संरक्षण और सामुदायिक उत्सव का दिखा अनूठा संगम, फिशिंग एंड क्लीनिंग फेस्टिवल में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। श्रीनगर में फेस्टिवल के दौरान लोगों के बीच हुई मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, साथ में लोगों ने तालाब की सफाई भी की। यूपी के प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के पार, दोपहर में घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत और बढ़ेगा तापमान, लोगों को सावधान रहने की अपील। राजस्थान में भीषण गर्मी, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। बांदा में भी लगातार बढ़ रहा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान से बेहाल जनजीवन, ट्रांसफार्मरों को कूलर से बचाने में जुटा बिजली विभाग। टिहरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बारिश, सड़कें बनी तालाब। वर्ल्ड फेमस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का धमाकेदार फिनाले, बुल्गारिया ने 516 अंक के साथ खिताब किया अपने नाम।

ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया फिनाले, 25 देशों के संगीत कलाकारों ने लिया था हिस्सा। बुल्गारिया के हिट गाने बंगारंगा ने जीता लोगों का दिल, सिंगर दारा की जोशीलंदाज ने गाने में डाली नई जान।

0: यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के दौरान जुड़े रहे करोड़ों दर्शक, वोटिंग और जूरी ने मिलकर किया फैसला। यूरोविजन के फाइनल में 343 पॉइंट्स के साथ इजराइल रहा रनर अप, यूनाइटेड किंगडम को मिले सबसे कम एक अंक। चीन में ग्रेट वॉल मैराथन का आयोजन, 1500 धावकों ने दौड़ में लिया हिस्सा। मैराथन में 50 से ज्यादा देश के रनर्स हुए शामिल, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के 138 धावकों ने लिया हिस्सा। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक मानी जाती है ग्रेट वॉल मैराथन, रनर्स को 5164 सीढ़ियां, खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। प्रतियोगिता में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर फन रन का आयोजन, फुल मैराथन में 493, हाफ मैराथन में 504 और फन रन में 388 लोगों ने लिया हिस्सा। 350 रनर्स के साथ साल 1999 में हुई थी ग्रेट वॉल मैराथन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी दौड़ में प्रतियोगिता को किया गया शामिल। रियो डी जेनेरियो के एयरोस्पेस म्यूजियम में भव्य मुसाल एयर शो का आयोजन, राज्य के सबसे बड़े हवाई शो के रूप में मिली मान्यता। ब्राजीलियाई वायुसेना की नेक की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन, एयर शो में लोगों को मुफ्त में दिया गया प्रवेश। शो में मशहूर स्मोक स्क्वाड्रन ने दिखाए शानदार हवाई करतब, तेज रफ्तार विमानों की उड़ान देखकर रोमांचित हो उठे दर्शक। एयर शो में 100 से अधिक पुराने और आधुनिक विमानों को किया गया शामिल, लोगों को विमानों को करीब से समझने का मिला मौका। एयर शो के दौरान लोगों ने के लिए चलाई गई कई मनोरंजक गतिविधियां, शो में दिखी ब्राजील की समृद्ध विमानन विरासत। कैरिसा मूरे ने न्यूजीलैंड प्रो में शानदार जीत दर्ज की, अमेरिका की लेके पेटरसन को रोमांचक मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरिसा मूरे ने 8.83 स्कोर के साथ दमदार प्रदर्शन किया, उनकी जीत को टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बढ़त माना जा रहा है। हवाई की गैब्रिएला ब्रांड ने बड़ा उलटफेर करते हुए कनाडा की एरिन ब्रुक्स को हराया, इस जीत के साथ गैब्रिएला ने अंतिम 8 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया की टाइलर राइट ने वर्ल्ड नंबर 1 लुआना सिल्वा को दी मात, सबको चौंकाया, वहीं मोली पिकम भी वो क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जैक रॉबिन्सन और ब्राजील के इटालो फेरेरा का दिखा दबदबा, दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अगले दौर में एंट्री कर ली। रेड बुल सॉफ्ट बॉक्स रेस 8 साल बाद लॉस एंजलिस में लौटी, 32 टीमों ने मजेदार होममेड गाड़ियों के साथ डाउन हिल रेस में लिया हिस्सा। हजारों दर्शकों के बीच हॉलीवुड थीम ट्रैक पर अनोखी रेस प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में स्पीड, क्रिएटिविटी और शोमैनशिप को जज किया गया। कई टीमों की होममेड गाड़ियों और ट्रैक पर पलट गई, फिर भी रेस जारी रही, दर्शकों ने स्टंट कॉस्ट्यूम और क्रैश पर जमकर किया चीयर। रियान शेकलर और मैडी मस्ट्रो ने सेलिब्रिटी जज की भूमिका निभाई, दोनों ने रेस को क्रिएटिविटी और कंपटीशन का शानदार मेल बताया। ऐसी सॉफ्ट बॉक्स रेस दुनिया के 107 शहरों में हो चुकी है, इस अनोखी नॉन मोटराइज्ड कार रेस की शुरुआत बेल्जियम से हुई थी। प्रभास की कल्कि 2 में संतोष नारायण की एंट्री, सलमान खान के साथ मचा चुके हैं धमाल। रामचरण की पेडी के ट्रेलर लॉन्च में होगी एमएस धोनी की एंट्री, 4 जून को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 19 जून को रिलीज होगी कॉकटेल 2, फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सनन का अहम रोल। देविका गौड़ से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा ये इतनी सी थी, के 15 में दिखेंगे साथ। फिल्म भूत बंगला ने मचाए धमाल, फिल्म ने 29 दिनों में की 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फ्रेंचाइज को ले जाएगी नेक्स्ट लेवल, रोहित शेट्टी के इस मूवी में विलन का करेंगे रोल। गोलमाल 5 में जोड़कर मेकर्स ने इस फिल्म की बढ़ाई, अक्षय कुमार इस मूवी में एक कॉमिक विलन का रोल करेंगे। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में लगी रही बेहद खूबसूरत, आंखों में काजल, बालों में फूल, लगाए नयनतारा ने दिए पोज। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार है नयनतारा, फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस है। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल से सामने आया सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में दिखे एक्टर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल हुए, जो कहीं और नहीं हुए बल्कि चीन की दीवार पर हुई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है ये मैराथन। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
10: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहाँ अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहाँ पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है, बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
8: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
11: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
10: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: और अब खबर कांस से। फ्रांस के कांस में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कांस में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कांस में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए रिपोर्ट में।

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वही इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को हुमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ हुमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मीनाक्षी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी, गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर दिखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। प्रधानमंत्री के दौरे से भारत यूरोप औद्योगिक साझेदारी को मिले गए मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम, आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़ी ने लिया हिस्सा, अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अनोखी कार रेस ने दर्शकों का बढ़ाया रोमांच, हॉलीवुड थीम ट्रैक पर होममेड गाड़ियों का जलवा, डाउनहिल रेस में स्टंट कॉस्ट्यूम और क्रैश के जबरदस्त रंग।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। जिस्म की तो उम्र हो सकती है, लेकिन जोश और जज्बे की उम्र दिमाग के पहियों पर होती है। ये पहिया जितनी तेजी के साथ दौड़ेगा, जोश और जज्बा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। दिल्ली के किसी भी कोने में वर्दी वाले अगर आपको दिखते हैं, तो वो इस धरती से होकर गुजरे होते हैं। अब जिस मिट्टी की तासीर में ही जवान उगलना हो, वहां भला कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है। तो चलिए आज आपको 56 साल के दो नौजवानों से मिलवाती हूँ। ना उम्र पर मत जाइएगा, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एज इज जस्ट अ नंबर।

0: बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सुरक्षा करने वालों से लेकर सरहद के अंदर के दुश्मनों से हिफाजत करने वालों तक, इन वर्दी वालों को देखकर हमेशा आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, जवान। चाहे वो फौज के जवान हो या फिर पुलिस के जवान। अब जिसके नाम में ही जवान हो, यानी जोश हो, जज्बा हो, ताकत हो, हिम्मत हो, उसकी कभी कोई उम्र हो सकती है क्या? शायद नहीं। और इसकी बानगी है दिल्ली पुलिस के ये दो जवान। ये है समर सिंह, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। इनके नौकरी में महज 3 साल बाकी है। 56 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन इनके कदमों ने तो मानो अब रफ्तार पकड़ी है। इस उम्र में अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और आराम की बात करते हैं, पर तब क्या जब सीने के अंदर की आग उम्र के साथ बढ़ती जाए, और इसीलिए हम इन्हें जवान कहेंगे। अब इनसे मिलने के लिए आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। जी हाँ, क्योंकि इनकी रफ्तार तो हवा को भी मार देती है। ये है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह। ज्यादा वक्त नहीं हुआ कदमों को रफ्तार देते हैं, लेकिन महज 3 साल में 50 से ज्यादा मैराथन दौड़ चुके हैं। ये मैराथन दौड़ कभी 10, कभी 21 तो कभी 42 किलोमीटर की होती है। बस समझ लीजिए, ये दिल्ली पुलिस के उसैन बोल्ट हैं, और इनकी ड्यूटी को भी अब बस 3 से 4 साल ही बचे हैं। पुलिस की ड्यूटी भी 2 तरीकों से की जाती है। कुछ पुलिस वाले ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन कुछ ड्यूटी को जीते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कहानी से ऐसी दास्तान लिख जाते हैं जो आने वाली नस्ल के लिए मिसाल बन जाती है। सब इंस्पेक्टर समर सिंह की पोस्टिंग दिल्ली पुलिस एकेडमी में है। कभी SDO तो कभी QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम में इनकी ड्यूटी रहती है। सोचिए, क्विक यानी कि जल्द से जल्द। अब जहां जल्द से जल्द पहुंचना हो, वहां एक 56 साल की पुलिस वाले की ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है? जाहिर है कि फुर्ती में ये जनाब अच्छो अच्छो के कान का ही नहीं है।
1: इसका जी कोई महत्व नहीं है मेरे लिए तो, और मैं यही सोचता हूँ यदि आपकी थॉट्स पॉजिटिव है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग कितना मजबूत है उसी के अनुसार आपका बैलेंस और मसल्स कंट्रोल में रहेंगी, और आप अच्छी तरह कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की।
0: समर सिंह की उम्र कैलेंडर के पन्नों पर तो बढ़ रही है, लेकिन शरीर के हिसाब से कैलेंडर के कदम पीछे हो रहे हैं। चलिए पहले समर सिंह की ताकत, काबिलियत और शख्सियत को समझते हैं। 56 की उम्र पार कर चुके हैं समर सिंह, और अब लाठी के सहारे चल रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, सहारे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लाठी। लेकिन बस तरीका थोड़ा अलग है। अभी तो ये भी बाकी पुलिस वालों से अलग है। इस उम्र में इसे करने के लिए हाथ, पैर, मन, मस्तिष्क, संतुलन और धैर्य, ये सब जरूरी है। इनके बुढ़ापे की लाठी ये खुद ही बन गए हैं। देखिए कितनी आसानी से ये इन लाठियों पर अपना बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, मानो सारी इंद्रियों को इन्होंने काबू कर लिया हो। वाकई उम्र को मात देकर जो जोश इन्होंने बरकरार रखा है वो कमाल है। हथेलियों से ग्लास को पकड़ना तो आम बात है, लेकिन हथेलियों पर ग्लास को रखकर शरीर को 360 डिग्री तक घुमा लेना, इसके लिए तो अभ्यास और एकाग्रता दोनों की जरूरत है। लेकिन समर सिंह के लिए ये बिल्कुल आसान काम है, आप खुद देखिए। ये डब्लू वॉल है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस और कमांडो की सख्त ट्रेनिंग होती है, और इस डब्लू वॉल को पार करते हुए आगे के हर्डल्स को पार करके कमांडो ये टास्क पूरा करते हैं। आपको भी हम वही दिखा रहे हैं, लेकिन ये 56 साल से ज्यादा के समर सिंह के लिए मानो बाएं हाथ का खेल है। देखिए कितनी सफाई से ये पहले टास्क को पूरा करते हैं। अच्छी खासी दूरी वाले डब्लू वॉल को आराम से पार कर लेते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए जब समर सिंह इन सीढ़ियों तक पहुंचे, तो इनकी रफ्तार मानो बिजली से भी तेज हो गई। देखिए कैसे उम्र के इस पड़ाव पर भी इनके कदमों और बाजुओं में कितनी ताकत है। ये रफ्तार और आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया, रोजाना की मेहनत और लगन ने इन कदमों की मजबूती को धार दिया है। अब मंकी क्रॉल पर आइए और देखिए समर सिंह के बाजुओं और कलाइयों की ताकत। बस सोचिए 20 से 25 साल के नौजवान के प्रैक्टिस की इस जगह पर ये कैसे अपने हुनर को दिखा रहे हैं और कलाइयों की ताकत से जोर लगाते हुए रस्सी पर चढ़कर उस पर मंकी स्क्रॉल करते दिख रहे हैं। आगे के ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए ये पहुंचे हैं इस सुरंग में। यहाँ से निकलने के लिए भी बाजुओं की ताकत का ही काम पड़ता है।

0: अब इतने मजबूत और लोहा बदन करने के लिए समर सिंह की मेहनत के साथ जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। चलिए इस शरीर को इतना मजबूत बनाने के लिए इनकी मेहनत और इनकी दिनचर्या भी आपको बताती हूँ। समर सिंह सबसे पहले सुबह उठकर शरीर को लोहा बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ पौधों की खुदाई और मरम्मत के बाद दिमाग में सुबह का पहला ख्याल यही होता है कि आज कुछ नया करना है।
1: एक्चुअली रोज पार्क में जाता हूँ, 4-5 पौधे नलाता हूँ, मैं गुड़ाई करता हूँ पेड़ों की और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। वो इतनी ही करता हूँ कि एक वीडियो में सोच लेता हूँ कि आज मैं ऐसे करूँगा और मैं वो सफलतापूर्वक करता हूँ जी। और बाकी लोगों की भावनाएं मेरे साथ हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं लोगों के मेरे प्रति, तो मैं कर ही देता हूँ जी।
0: कहते हैं एक पुलिस वाला कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, बात सही भी है, लेकिन जब भी ड्यूटी पूरी हो और जब भी वक्त मिले वो वक्त इनके शरीर का होता है, बाकी किसी चीज का इन पर मजाल जो कुछ फर्क पड़े
1: ना कुछ फर्क ना पड़ता जी। ये तो 15-20 मिनट का काम है जी, ड्यूटी कैसी भी हो समय निकल ही आता है। ये तो एक बहाना बनाने वाली बात है कि मेरी रात को ड्यूटी थी या मेरी दिन में थी, मैं आज वहाँ गया था यहाँ गया था, 15-20 मिनट का खेल है पूरा ही जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल ओके रहेगा आदमी। अच्छा। जैसे गाड़ी की सर्विस हमने नहीं करवाई और हमने जाना है बेंगलोर तो रास्ते में वो बंद हो जाएगी, ऐसे ही शरीर की सर्विस केवल और केवल एक्सरसाइज से होती है। अच्छा। बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो शरीर की सर्विस हो जाए। सर्विस हुए बगैर जैसे गाड़ी ठीक नहीं रहती, ऐसे ही शरीर भी ठीक नहीं रहेगा।
0: कहते हैं जब आपके परिवार का मुखिया, आपके सीनियर्स आपके काम को सराहते हैं तो जोश बुलंदी पर होता है। बस समर सिंह को भी डिपार्टमेंट ने खूब सहयोग किया और इसका नतीजा आपके सामने है।
2: डिपार्टमेंट का रिएक्शन क्या है, सपोर्ट करते हैं, क्या रिएक्शन
1: आता है? पूरा जी जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। अच्छा। मेरे साथी भी, अफसर भी और बड़े अफसर भी, सब का आशीर्वाद है जी, ठक गाड़ी चलती है जी।
0: आजकल 24 घंटों को बांटने की जरूरत ज्यादा लोग करते नहीं हैं। जब मन किया सोए उठे खाए पिए और पता नहीं क्या क्या, लेकिन घड़ी की सुइयों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया है आज के युवाओं ने, खासकर जेंसी। अब अगर 56 की उम्र में 26 जैसा जोश चाहिए तो इनकी बात को गौर से सुनना पड़ेगा, न सिर्फ सुनना पड़ेगा बल्कि मानना भी पड़ेगा।
1: मेरा जी एक ही संदेश है यूथ के नाम, जो आदमी समय पे सोएगा और समय पे उठेगा, यदि हम सुबह वक्त से उठ लेंगे तो आधी दुनिया से आगे तो वैसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि आज का यूथ जो है वो तकरीबन 8 और 10 बजे के बीच में उठता है जी, तो वो उठने का टाइम नहीं होता। यदि हम समय पर उठेंगे 4 और 5 के बीच में तो आधी से भी ज़्यादा दुनिया से आगे तो वैसे ही हम, क्योंकि हम उस टाइम उठ लिए और बाकी दुनिया सो रही है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसा मेरा विचार है जी। मैं ऐसी विधि जानता हूँ जी, आदमी की सोच सकारात्मक होनी चाहिए, मैं बूढ़े को भी जवान बना सकता हूँ, ऐसा मेरा तजर्बा है जी।
2: आपने खुद को भी बनाया?
1: हाँ जी, मैं वाकई बूढ़े को भी जवान बना सकता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुने और उस तरह से करे।
0: फिट रहने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है कि आप खुश रहें। हमेशा जिंदा दिल इंसान का दिल ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, और ये जिंदा दिली समर सिंह के बातों में खूब दिखी। उनके खान पान और ताकत का राज जब हमने पूछा तो जरा उनका जवाब सुनिए।
2: जो स्ट्रेंथ है हाथों में, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप रस्सी पकड़कर चढ़ जाते हैं और इतनी मतलब इतनी मुश्किल एक्सरसाइज करते हैं, उस स्ट्रेंथ के लिए कुछ काम करते हैं क्या, डाइट पे कोई काम करते हैं?
1: डाइट तो जी मेरी घरवाली राजी होके बड़ा दिन है, मोए खा लूं जी। हां वो दे होए खा लूं उस सम फट हूं जी बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: हां जी, पहले मेरी माँ जी वो थी जी, बुआ जो बढ़िया खिलाती हो, हर माँ चाहती है मेरा बेटा बेटी ताकतवर हो, और उसके बाद जी पत्नी के हाथ में वो कैसे रखेगी अपने पति को, वो बढ़िया बना देर में खा के खुश बस।
0: इनके ताकत के किस्से तो आपने सुने, अब इनकी बहादुरी की कहानी भी सुनिए। हौज खास थाने में पोस्टिंग के दौरान इन्होंने 5,000 गाड़ी चुरा कर बेच देने वाले कुख्यात कार चोर अनिल चौहान को पकड़ा था। 1997 में दिल्ली के ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा हॉल अग्निकांड में इन्होंने कई लोगों को अपने कंधे पर रखकर हॉल से बाहर निकाला था। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2002 पार्लियामेंट अटैक में भी इन्होंने बहादुरी दिखाई और इस दौरान समर सिंह के पैर में गोली तक लग गई। पूरी नौकरी के तजुर्बे के बाद अब इन्होंने उसी जोश और जज्बे के साथ अपना रिटायरमेंट भी प्लान किया। उम्र से तो आपकी नौकरी खत्म हो सकती है, लेकिन दिल से एक पुलिस वाला हमेशा पुलिस वाला ही रहता है। देश की सरहद पर अपना फर्ज निभाकर सुभाष सिंह पुलिस में आ गए। 1989 में ये फौज में भर्ती हुए थे। 2007 में फौज से रिटायरमेंट ली और दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए। 2007 से आज 2026 तक सुभाष सिंह दिल्ली पुलिस में रहकर अपनी सेवा दे रहे हैं। हाल ही में वो दिल्ली पुलिस एकेडमी में बतौर मैराथन कोच नई भर्तियों को ट्रैक पर दौड़ने से लेकर जिंदगी के रेस में दिल्ली की सड़कों पर और देश के लिए दौड़ने तक के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी इस ड्यूटी को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उम्र कोई बाधा नहीं बल्कि अनुभव देती है।
3: नहीं मैम, उम्र कुछ नहीं होती है। देखिए, आपको अपना जो दिमाग में जो आदमी दिमाग में सोच लेता है वो उसको हासिल करना चाहे तो कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर माइंडली फिट होना बहुत ज़रूरी है। माइंडली स्ट्रोंग नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड कहीं होगा और आप प्रैक्टिस कहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ये सबसे पहले माइंड का खेल। आगे का मेरा प्लान ये है कि मैं छोटे बच्चों को अच्छे से गाइडलाइन दे करके, अच्छे से ट्रेनिंग दे करके, और मैं ये तो नहीं कहूँगा पर मैं चाहूँगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट जी आगे बढ़े।
0: इनकी रफ्तार का कोई सानी नहीं। ये महज बीते 3 साल में 50 से ज्यादा मैराथन दौड़ चुके हैं, ज्यादातर में अव्वल भी रहे हैं, और यही वजह है कि हम इन्हें दिल्ली पुलिस का उसैन बोल्ट कह रहे हैं। नेशनल लेवल के इस एथलीट की उम्र 56 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद अक्सर लोग आराम और विराम की बात करते हैं, लेकिन ये तो इंटरनेशनल खेलने की तैयारी कर रहे हैं।
3: नहीं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अभी 56 साल का हूँ, अभी मैं भी कंपटीशन लड़ रहा हूँ। मेरे को भी लोग देख के ऐसे देखते हैं कि भाई ये देखो कितना अच्छा दौड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, करने का जुनून होना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए, सिखाने का तरीका आना चाहिए। मैं 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर 3 साल मुझे DAP में, दिल्ली पुलिस एकेडमी में आए हुए होंगे। मैंने करीबन 50 मैराथन के लगभग 2-4 कम होंगी या 2-4 फालतू होंगी, इतने मैं कर चुका हूँ 3 साल के अंदर अंदर। और ये मैराथन करने के बाद में मेरा थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि आगे इंटरनेशनल मैराथन होती है विदेशों के अंदर। मैं कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथ लोगों से, वहाँ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी तो मैं वो भी करूँगा।
0: पुलिस वालों की खास बात ही यही है कि इसी फील्ड में होते हुए भी ये अपनी निजी प्रैक्टिस अपनी ड्यूटी से पहले या उसके बाद करते हैं। कैसे हो पाता है ये संभव, खुद इन्हीं से सुनिए।
2: ये जो प्रैक्टिस आप करते हैं ये ड्यूटी के साथ साथ करते हैं, ड्यूटी की जगह पर करते हैं, कैसे कर पाते हैं?
3: नहीं, ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा टाइम पे करता हूँ, ड्यूटी के साथ साथ नहीं हो सकता ये। ड्यूटी ऑफ करने के बाद में करना पड़ता है या ड्यूटी ऑफ करने से पहले करना पड़ता है।
2: थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कैसे मैनेज करते हैं?
3: ड्यूटी को मैनेज, जैसे मेरी ड्यूटी होती है तो मेरे सुबह ही मॉर्निंग में ड्यूटी होती है तो मुझे ऐसी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस करके आता हूँ, फिर शाम को ड्यूटी से उतरता हूँ तो चला जाता हूँ। दूसरे दिन जब मेरा ब्रेक होता है तो उस टाइम पर मैं दोनों टाइम पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इस तरीके से मेंशन करता हूँ, ड्यूटी जिस तरीके की होती है उसी तरीके से ड्यूटी को देखते हुए अपनी तैयारी करता हूँ।
0: सुभाष सिंह एक बार बिना प्रैक्टिस के ही अपने कुछ साथी पुलिस वालों के कहने पर दौड़ में शामिल हो गए। दौड़ अच्छी लगाई, नतीजा अच्छा आया। बस यही वो पल था जब इन्होंने सोच लिया कि बस अब उनका लक्ष्य तय हो चुका है। तब से लेकर अब तक सुभाष सिंह के कदम कभी रुके नहीं।
3: 2015 के अंदर पहली बार है कि दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस कप हुआ था। उस टाइम पर मेरी ड्यूटी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में थी और वहाँ पे जॉइंट CP मुकेश मीणा साहब थे तो

0: पोडियम विनर के अंदर आ गया मैं मेरी इस कैटेगरी में, तब से फिर मेरा जुनून है कि दौड़ना स्टार्ट हो गया।
1: टाटा मुंबई मैराथन एशिया की सबसे बड़ी और नामी मैराथन है। ये हर साल जनवरी में मुंबई में की जाती है। इसमें फुल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ 21 और 10 किलोमीटर की रेस में 60,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 56 साल के दिल्ली पुलिस के ये हेड कांस्टेबल इस मैराथन को अक्सर जीतते आए हैं।
0: सबसे ज्यादा मैराथन मैंने आज की टाटा बम्बई के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा मजा टाटा बम्बई मैराथन के अंदर ही आता है। मैं 17 के अंदर विनर था, 18 के अंदर विनर था, 19 में मेरी सेकंड पोजीशन थी, 20 के अंदर मैंने फुल मैराथन करी और 21-22 में कोरोना काल का टाइम था, 23 में फिर मैंने फुल मैराथन करी, 24 में फिर मेरा फर्स्ट पोजीशन आया, चौथा नंबर पड़ा और 25 के अंदर मैं फर्स्ट पोजीशन, अभी मैंने 26 के अंदर फुल मैराथन फर्स्ट पोजीशन।
1: सुभाष सिंह प्रोकैम स्लैम मैराथन भी जीत चुके हैं। प्रोकैम भारत की 4 सबसे बड़ी मैराथन दौड़ का एक साइकिल है, जिसे एथलीट 1 साल के अंदर पूरा करके प्रोकैम स्लैम चैंपियन का खिताब अपने नाम करता है। हमारे दिल्ली पुलिस के इन खिलाड़ी ने भी ये तमगा अपने नाम कर लिया है।
0: मैं प्रो कैंप के 4 मैराथन होते हैं, 4 मैराथन दौड़ी है मैंने 55 से 60 वाली कैटेगरी के अंदर। तो उसके अंदर मेरी पहली वेदांता मैराथन थी, उसमें मेरी 55 से 59 वाली कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन थी। उसके बाद में कलकत्ता थी, उसमें 25 किलोमीटर था, तो उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। फिर उसके बाद में टाटा बम्बई मैराथन 42 किलोमीटर था, उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। अभी मैं नेक्स्ट ऐसी बंगलोर करके आया हूँ 10 किलोमीटर, तो वहाँ भी मेरी इसी एज कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन है। तो इस प्रकार से मेरे को प्रो कैंप में बहुत अच्छा लगा कि प्रो कैंप में मेरी ऐसी की 4 मैराथन फर्स्ट है। ऐसा किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। नॉर्मल तो मैं तो यही समझूंगा कि ये जो 4 इंटरनेशनल मैराथन है उनके सहयोग को प्रो कैंप सपोर्ट करता है और उनका कुल रिजल्ट बनाता है अलग से।
2: और 4 मैराथन में जो जीतता है उसके हिसाब से एक कंबाइन करके
0: एक वो विनर बनाते हैं और उसको एज कैटेगरी के अंदर ऐसी प्राइज भी देते हैं। तो उसको बीच में किसी ने मिस कर दिया तो वो फिर उसका आउट हो जाता है वो उससे। दूसरा ये है कि चारों का टाइम जोड़ेंगे, टाइम जोड़ने के बाद में वो अपना रिजल्ट निकालेंगे कि किसकी कौन सी पोजीशन है, उसके ऊपर पता लगेगा कि मैं ओवरऑल किस पोजीशन पे हूँ।
1: कहा था ना, उम्र सिर्फ जिस्म की होती है, जोश और जज्बे की उम्र दिमाग के पहियों पर ही चलती है। और दिल्ली पुलिस के इन जवानों के दिमाग ने कहा कि अभी रुकने की, थमने की उम्र नहीं हुई, अभी तो मानो बस शुरुआत ही है। इसीलिए जब कभी आप हताश निराश हों तो एक बार इनके इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए, दिल्ली पुलिस के इन 2 नौजवानों के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसमें कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर देंगे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतर कर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहां का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: Good news today.
3: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी। गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर देखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। पीएम के दौरे से भारत यूरोप औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती। 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कंडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम। आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़ी ने लिया हिस्सा। अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अनोखी कार रेस ने दर्शकों का बढ़ाया रोमांच। हॉलीवुड थीम ट्रैक पर होममेड गाड़ियों का जलवा। डाउनहिल रेस में स्टंट कॉस्ट्यूम्स और क्रैश के जबरदस्त रंग।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रुद्रनाथ की डोली को विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया रवाना। आर्मी बैंडों की मधुर धुन के बीच शुरू हुई यात्रा। डोली यात्रा के दौरान दिखा भक्ति और आस्था का अलौकिक नजारा। पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के सैलाब में डूबा। ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से लाया गया था बाहर। गोपीनाथ मंदिर में दो दिनों तक भक्तों ने किया दर्शन पूजन। हजारों भक्तों की मौजूदगी में डोली की गई रवाना। डोली का जगह जगह किया गया शिव भक्ति के सैलाब में डूबा। ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से लाया गया था बाहर। गोपीनाथ मंदिर में दो दिनों तक भक्तों ने किया दर्शन पूजन। हजारों भक्तों की मौजूदगी में डोली की गई रवाना, डोली का जगह जगह किया गया स्वागत और दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख भक्तों ने की तीर्थ यात्रा। चारधाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला, शनिवार को 80,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में कल 29,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6 लाख से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 23,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 388,000 से अधिक भक्त पहुंचे बद्रीनाथ धाम। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार, शनिवार को 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। आज से ब्रज की पवित्र 84 कोसी परिक्रमा की शुभ शुरुआत, भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसी परिक्रमा, मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमा मार्ग में नंदगांव, गोकुल, बरसाना जैसे पवित्र स्थल शामिल, अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व। अधिक मास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे भक्त, श्री राम के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में उनका दिव्य श्रृंगार, सुबह की आरती में बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालु। अयोध्या काशी की तरह संभल बनेगा धार्मिक हब, तैयारियां शुरू। सीएम योगी ने संभल को दी बड़ी सौगात, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 100 करोड़ की दी स्वीकृति। करोड़ों रुपए की लागत से वंश गोपाल तीर्थ पर विश्राम गृह इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का होगा निर्माण शुरू। डीएम ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण, डीएम ने अफसरों के साथ देखा प्राचीन तीर्थ का नक्शा। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा का नक्शा तैयार करने में जुटी पुलिस, मंदिर निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर जमीन की होगी खरीद। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की खबर, 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। सिमी कैरियर कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंचा, टैंकर का सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी सफलता। सिमी ने 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए नई पहल, दिल्ली मेट्रो कल से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। डीएमआरसी हर सोमवार को चलाएगी 6 अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनेबेक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न, दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल और रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा। भारत और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनेबेक्स का सफल समापन, कंबोडिया में आयोजित किया गया था अभ्यास। सिनेबेक्स में भारतीय और कंबोडियाई सैनिकों ने संयुक्त युद्ध कौशल का दिया परिचय, आधुनिक रणनीतियों से आतंकवाद रोधी अभियानों में मिलेगी मजबूती, अभ्यास का मकसद। सिनेबेक्स में दोनों देशों की सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने का प्रशिक्षण हासिल किया, रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की जताई गई उम्मीद। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया संयुक्त सेनाभ्यास, सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। श्रीनगर में खिली धूप के बीच सैलानियों से गुलजार, डल झील पर्यटक उठा रहे शिकारा की सवारी का लुत्फ। डल झील के किनारे दुकानदार कर रहे स्थानीय सामानों की बिक्री, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुंटेरियन गांव में साईं मीरा बख्श की जियारत पर 3 दिवसीय उर्स का समापन, अंतिम दिन में भारी संख्या पहुंचे लोग। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ट्रेन से अजमेर तक का किया सफर, लोगों को दिया पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश। लेप्रोसी के प्रति जागरूकता की अलग जगह रहा फिजियोथेरेपिस्ट ओम सतीजा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4,900 किलोमीटर की यात्रा की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के 71वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी ने किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 14 साल के बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने रचा इतिहास। ताशकंद में आयोजित अंडर 15 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। यासिर ने प्री क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से दी मात। क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को भी 5-0 से एक तरफा हराया। अमृतसर में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन चालान। 1300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एडीसीपी बोली, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, परेशानी से बचें। जम्मू कश्मीर के सुंबल में उमड़ा आस्था का सैलाब। 37 साल बाद सुंबल मंदिर में लौटे कश्मीरी पंडित। विधि विधान से की गई पूजा। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पार्क का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के शास्त्री नगर में सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा बीजेपी के राज में देश भर में हो रहा विकास। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर मडगांव एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। विकासनगर में नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन, डूब रहे दो मासूमों के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बाराबंकी में पुलिस का एक अनूठा संदेश, साइकिल पर सवार होकर गश्त पर निकले थाना प्रभारी। रामबन में सीआरपीएफ ने योग प्रतियोगिता का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। एमपी के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व की नई पहल, महिला समूह संभाल रही कैंटीन का संचालन। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी अनिवार्य। असम दौरे के दौरान प्रशिक्षण शिविर के बाद गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बरबारी के सदर्शनालय पहुंचे। गुजरात में जनगणना का काम शुरू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर और करवाई जनगणना। गोड्डा पहुंचे अमेरिका के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल, ब्रजभूषण सिंह से की मुलाकात। बिहार के छपरा पहुंचे अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और प्रीति अडानी, गायत्री मंदिर शक्तिपीठ में की प्रार्थना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में पहुंचे सीएम योगी, शिविर का किया निरीक्षण। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई की गाइडलाइंस के बाद आज विधि विधान से की मां बागदेवी की पूजा, जमकर थिरके भक्त।

0: उधम सिंह नगर में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास, लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना पुल। श्रीनगर में पारंपरिक जल संरक्षण और सामुदायिक उत्सव का दिखा अनूठा संगम, फिशिंग एंड क्लीनिंग फेस्टिवल में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। श्रीनगर में फेस्टिवल के दौरान लोगों के बीच हुई मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, साथ में लोगों ने तालाब की सफाई भी की। यूपी के प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के पार, दोपहर में घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। रेड बुल सो बॉक्स रेस 8 साल बाद लॉस एंजलिस में लौटी, 32 टीमों ने मजेदार होममेड गाड़ियों के साथ डाउनहिल रेस में लिया हिस्सा। हजारों दर्शकों के बीच हॉलीवुड थीम ट्रैक पर अनोखी रेस प्रतियोगिता में स्पीड, क्रिएटिविटी और शोमैनशिप को जज किया गया। कई टीमों की होममेड गाड़ियां ट्रैक पर पलट गई, फिर भी रेस जारी रही, दर्शकों ने स्टंट कॉस्ट्यूम्स और क्रैश पर जमकर चीयर किया। ग्रैन शेकलर और मैडी मस्टो ने सेलिब्रिटी जज की भूमिका निभाई, दोनों ने रेस को क्रिएटिविटी और कंपटीशन का शानदार मिल बताया। ऐसी 100 बॉक्स रेस दुनिया के 107 शहरों में हो चुकी है। इस अनोखी नॉन मोटराइज्ड कार रेस की शुरुआत बेल्जियम से हुई थी। वर्ल्ड फेमस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का धमाकेदार फिनाले, बुल्गारिया ने 516 अंक के साथ खिताब किया हासिल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया फिनाले, 25 देशों के संगीत कलाकारों ने लिया था हिस्सा। बुल्गारिया के हिट गाने बंगा रंगा ने जीता लोगों का दिल, सिंगर दारा के जोशीले अंदाज में गाने में डाली नई जान। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के दौरान जुड़े रहे करोड़ों दर्शक, वोटिंग और जूरी ने मिलकर किया फैसला। यूरोविजन के फाइनल में 343 पॉइंट्स के साथ जाल रहा रनर अप, यूनाइटेड किंगडम को मिले सबसे कम एक अंक। चीन में ग्रेट वॉल मैराथन का आयोजन, 1500 धावकों ने दौड़ में लिया हिस्सा। मैराथन में 50 से ज्यादा देशों के नर्स हुए शामिल, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के 138 धावकों ने लिया हिस्सा। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक मानी जाती है ग्रेट वॉल मैराथन, रनर्स को 5164 सीढ़ियां, खड़ी चढ़ाई और पथरीली रास्तों से गुजरना पड़ता है। प्रतियोगिता में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर रन फन रन का आयोजन, फुल मैराथन में 493, हाफ मैराथन में 504 और फन रन में 388 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 250 रनर्स के साथ 1999 में हुई थी ग्रेट वॉल मैराथन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी दौड़ प्रतियोगिता को किया गया शामिल। रियो डी जेनेरियो के एयरोस्पेस म्यूजियम में भव्य मिसाइल एयर शो का आयोजन, राज्य के सबसे बड़े हवाई शो के रूप में मान्यता। ब्राजीलिया वायुसेना की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन, एयर शो में लोगों को मुफ्त दिया गया प्रवेश। शो में मशहूर स्मोक स्क्वाड्रन दिखाए शानदार हवाई करतब, तेज रफ्तार विमानों की उड़ान देखकर रोमांचित हो उठे दर्शक। एयर शो में 100 से ज्यादा पुराने और आधुनिक विमानों को किया गया शामिल, लोगों को विमानों को करीब से समझने का मिला मौका। एयर शो के दौरान लोगों ने चलाई कई मनोरंजक गतिविधियां, शो में दिखी ब्राजील की समृद्ध विरासत, विमान विरासत। नेपाल के शेरपा गाइड कामी रीता ने रचा इतिहास, उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 56 साल की कामी रीता रविवार सुबह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। वे 14 पीक्स एक्सपीडिशन कंपनी के क्लाइंट्स को कर रहे थे गाइड। नेपाल पर्यटन विभाग ने कामी रीता को दी बधाई। सरकार ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि और पर्यटन के लिए गर्व बताया। कामी रीता का एवरेस्ट से रिश्ता 3 दशक पुराना है। उन्होंने पहली बार 1994 में चढ़ाई की थी। अब तक 32 बार शिखर छू चुके हैं। कामी रीता उसी गांव से आते हैं जहां तेंजिंग नोर्गे का जन्म हुआ था। तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में पहली बार एवरेस्ट फतह की थी। कैरिसा मोरे ने न्यूजीलैंड प्रो में शानदार जीत हासिल की। अमेरिका की लेके पीटरसन को रोमांचक मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल पहुंची। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरिसा मोरे ने 8.83 स्कोर के साथ दमदार प्रदर्शन किया। उनकी जीत को टूर्नामेंट की सबसे बड़ी भिड़ंत माना जा रहा है। हवाई की गैब्रिला ब्रायन ने बड़ा उलटफेर करते हुए कनाडा की एरिन ब्रुक्स को हराया। इस जीत के साथ गैब्रिला ने अंतिम 8 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया की टायलर राइट ने वर्ल्ड नंबर 1 लोआना सिल्वा को मात देकर सबको चौंका दिया। वहीं मोली पिकम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जैक रॉबिन्सन और ब्राजील के डालो फेरेरा का दिखा दबदबा। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अगले दौर में एंट्री कर ली। कान फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने बिखेरा बोल्डनेस का जादू। नियॉन मेटलिक ग्रीन गाउन में नजर आई। जोकर नेकलेस ने अदिति राव की खूबसूरती पर लगाया 4 चांद। गोल्डन फुटवियर पेयर्स में दिखा बेहद ग्लैमरस अंदाज। पति विक्की कौशल के 38वें बर्थडे पर कैटरीना ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट। बेटे विहान की क्यूट झलक ने जीता फैंस का दिल। सत्रह दिन भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थमी धुंधर 2 की आंधी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,797 करोड़ के करीब पहुंचा। धुंधर 2 के रास्ते पर चली अक्षय की भूत बंगला। 30 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ 77 लाख के पार पहुंचा। सूर्या सुपरस्टार फिल्म करप्पू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 2 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 60 करोड़ का किया कारोबार। वीकेंड पर पति पत्नी और वो 2 की बॉक्स ऑफिस पर चांदी। 2 दिन में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13 करोड़ 70 लाख के पार। वीकेंड पर फिर चमकी माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 हार्ट 9। 9 दिन में फिल्म ने 12 करोड़ 10 लाख का बिजनेस किया। तलाक के बाद मौनी रॉय सूरज ने फिर एक दूसरे को किया इंस्टा पर फॉलो। गुरुवार को अलग होने की घोषणा। दोस्ती बनाए रखने की कही थी बात।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
3: Gone! Home run!
2: NHL. College basketball.
4: He shoots it immediately. He makes it in!
2: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
5: One lap to go.
2: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
6: just
7: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल हुए, जो कहीं और नहीं हुए बल्कि चीन की दीवार पर हुई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है ये मैराथन। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
9: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहाँ अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान 3 तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
10: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
11: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
9: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट को न्यूज टुडे।
0: और अब खबर कांस से। फ्रांस के कांस में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कांस में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कांस में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए रिपोर्ट में।

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वही इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को हुमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहाँ चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहाँ ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ हुमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देते अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौटेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: और चलिए आपको दिखाते कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसमें कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर देंगे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना? जानिए मेरे साथ।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
5: नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी। गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर दिखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। प्रधानमंत्री के दौरे से भारत यूरोप औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती। 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड नाइट एक्सरसाइज में दिखाया दम। आर्मी एविएशन के साथ विशेष टुकड़ी ने लिया भाग। अभ्यास के दौरान सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अनोखी कार रेस ने दर्शकों का बढ़ाया रोमांच। हॉलीवुड थीम ट्रैक पर होममेड गाड़ियों का जलवा। डाउनहिल रेस में स्टंट कॉस्ट्यूम और कैश पे जबरदस्त रंग।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: स्मॉल प्लैनेट इसो सैटर्न हैव ब्यूटीफुल रिंग्स इसो जुपिटर इसो बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार है विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रीट तैर कर किया।

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रिशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानती हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: ਹੋ
1: ਸੁਣਾਓ
0: ਅੱਪੂ ਏਗਾ।

0: सी हुआ है।
1: जोर से बोले ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे हो रखे हो अच्छे से। ओम नमः शिवाय। आईज क्लोज करके।
0: ओम नमः शिवाय। ओम क्या कम यामाय छोगा दीम पट्टे वाला कोई बाद में बनाया मैं तुम क्या माता।
2: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही वाणी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंज उठी।
0: ओम बोल बुआ जय चतुर बजे हम पयो देवते देवा योया पचोलिया।
2: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ।
0: यारे भी चबूते चू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते मरमो नमा।
2: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए। जयपुर की रहने वाली दो साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है।
3: आज के टेक सैवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
2: बेटियां यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं। अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है। प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है।
4: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
2: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है। वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती है। प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है। सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है। आज जहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है।
4: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं है। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है। बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
2: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वे ये सब खुशी खुशी सीख रही है। प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है। इस नन्ही मुन्ही जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया, है ना कमाल।
6: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
6: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे
6: अवतार। और परशुराम के पास क्या होता है?
2: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
6: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक
6: वाटिका। अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
6: लंका में। और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे? जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे? अपनी टेल से।
2: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
7: टाइगर।
2: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
6: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
6: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
6: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
2: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
6: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब हैं।
2: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
6: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
2: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
0: Beautiful rings. This is a potato, sir. बिग प्लैनेट, मतलब इट्स अ स्मॉल प्लैनेट।
2: 4 साल का रुद्र जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान, इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा, उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा, ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो, और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।

0: शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
1: अब बात एक नन्ही म्यूजिकल जीनियस की, एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है और 44 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना जानती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की पकड़ कमाल की है। ना केवल नियति इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है, बल्कि इनसे जुड़े कई कमाल के रिकॉर्ड्स नियति ने अपने नाम किए हैं।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। चौबीस में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात उन लिटिल मास्टर्स की जिन्होंने सीधे समंदर को चुनौती दी है। 7 साल का ईशांक और 9 साल के नैया ने स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो आज बड़े बड़े अनुभवी तैराक उन्हें सलाम कर रहे हैं।
2: माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्पिट्स, पानी की मौजूदगी के चलते अब तक ब्रह्मांड का इकलौता नीला ग्रह है हमारी धरती। और उसी धरती के ये वो 3 तैराक हैं जिन्होंने धरती के पानी पर फतेह पाई। धरती के सबसे सफल स्विमर इन तीनों अमेरिकी स्विमर्स में से हर एक ने ओलंपिक में तैराकी के इतने मेडल जीत रखे हैं कि आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। लेकिन ये गुजरे हुए कल की तस्वीर है। आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है ये आपको हम दिखाते हैं। ये पानी पर तैरती उम्मीदों की तस्वीर है, वो तस्वीर जो सपना दिखाती है, वो सपना जो अभी तक अधूरा है लेकिन कल पूरा हो सकता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्विमिंग का मेडल लाने का सपना, और इस उम्मीद को पंख लगा रखे हैं इन दोनों टैलेंटेड यंग स्विमर्स ने। इनमें से एक है 9 साल की अनैया जगदीश कुंती कारकर और दूसरे 7 साल के मास्टर ईशांक। इन दोनों नन्हे तैराकों ने हाल ही में स्विमिंग के ऐसे जोरदार रिकॉर्ड बनाए हैं कि हर कोई हैरान है।

0: रांची के रहने वाले 7 साल के मास्टर विशांक ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े तैराक नहीं कर पाते। इस बच्चे ने लहरों से लड़ते हुए 29 किलोमीटर का सफर 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इतिहास रच दिया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि समंदर के जिस रास्ते को ईशांत ने तय किया है वो समंदर में सबसे मुश्किल रास्तों में एक माना जाता है। इस कामयाबी ने ईशांत को दुनिया का सबसे कम उम्र का पाक स्ट्रेट तैराक बना दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हिम्मत, अनुशासन और जुनून का एक लंबा सफर है। समंदर की लहरों से टकराने का जुनून ईशांक के लिए नया नहीं है। ईशांक ने बहुत छोटी उम्र से ही पानी से दोस्ती कर ली थी। रोजाना घंटों की प्रैक्टिस, कड़ी ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती, इन सब ने मिलकर ईशांक को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में से एक बना दिया है। समंदर में जिस रास्ते को ईशांक ने नापा है वो रास्ता दुश्वारियों से भरा है। यहाँ समंदर की लहरें तैराक का कड़ा इम्तिहान लेती हैं, तेज धाराएं उसका रास्ता रोकती हैं और मौसम उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में इन सब का सामना करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है जो ईशांक में साफ दिखाई देती है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
0: ईशांक की इस उपलब्धि की अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पार्क स्ट्रीट वो जगह है जहां पहले तमाम अनुभवी तैराक भी हार मान चुके हैं। ऐसे में 7 साल के बच्चे का इसे पार करना अपने आप में असाधारण है। और कुछ ऐसा ही असाधारण करके दिखाया है मुंबई की रहने वाली अनैया जगदीश कुंती कारकर ने। खेलने कूदने की उम्र में इस 9 साल की बच्ची ने स्विमिंग में जोरदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई की अनैया ने समंदर में 17 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। आपको बता दें कि समंदर के रास्ते अटल सेतु उल्वा से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 17 किलोमीटर है जिसे अनैया ने 4 घंटे में पार कर इतिहास रच दिया। 1 मई की रात करीब 2 बजे अनैया ने अटल सेतु के पास उल्वे से तैरना शुरू किया और सुबह करीब 6 बजे वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी संकल्प के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशांक और अनैया ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। सही जज्बा, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन हो तो छोटी उम्र में भी बड़े बड़ों के रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। रांची से आकाश कुमार और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी, गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर दिखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। प्रधानमंत्री के दौरे से भारत यूरोप औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। देश में एलपीजी सप्लाई चेन को मिलेगी और मजबूती, 20,000 मीट्रिक टन घरेलू गैस लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा टैंकर सिमी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के उस दिव्य धाम में जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच अलकनंदा नदी के पावन तट पर, जहां हवा का झोंका भक्ति का एहसास कराता है, जहां हर कदम पर आस्था सिर झुकाती है, जहां पहुंचते ही मन जय बद्री विशाल के जय घोष में खो जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे मिलता है श्री हरि का दिव्य आशीर्वाद।

0: आज पूरा उत्तराखंड जय बद्री विशाल के जय घोष से गूंज रहा है। भक्ति की इस पावन धारा में देश दुनिया से आए श्रद्धालु डूबे हुए हैं। सुबह की पहली आरती से लेकर रात की शयन आरती तक हर किसी के चेहरे पर भगवान बद्री विशाल के धाम पहुंचने की खुशी है। धाम पहुंचते ही भक्तों की सारी थकान खत्म हो जाती है। यहां आकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को बुलाकर आशीर्वाद दे रहे हों।
1: जैसे आप कह रहे थे कि केदारनाथ से आने के बाद थकान का जो महत्व है, केदारनाथ से उतनी थकान, उतना पैर, उतना सर दर्द, मतलब बुखार होने के बाद भी आदमी जब बद्रीनाथ में आता है और इस अग्नि तीर्थ में जब आदमी स्नान करता है, ये अग्नि तीर्थ बहुत
2: सारी थकान दूर,
1: सारी थकान आदमी यही भूल जाता है कि मैं इतने पैदल चल के आया हूँ, इसीलिए इसको अग्नि तीर्थ में कहा जाता है। बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसा सुचो बद्री सचिच तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा।
0: मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक के ये धाम तप भक्ति और मोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यही भगवान विष्णु ने कठोर तप किया था और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की थी, तभी से ये धाम कहलाया बद्रीनाथ और भगवान विष्णु बने बद्री विशाल।
1: विशालापुरी बद्री विशाल बद्री नारायण, लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बनकर अपने पति के ऊपर छाया की थी। बद्री संस्कृत वर्ण में बेर को कहा जाता है। तो लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बनकर अपने पति के ऊपर बिगर कुछ स्पर्श किए हुए अपने पति नारायण की सेवा की थी। इसलिए मंदिर के अंदर लक्ष्मी ने, लक्ष्मी बाहर से है, योग नगरी है, भगवान यहाँ साधना मिली ने और सत्ता भाव से आया हुआ यजमान, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।
0: हर साल की तरह इस साल भी बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस साल 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए धाम के कपाट खोले गए थे। तब से लेकर अब तक यहाँ तीर्थ यात्रियों का लगातार तांता लगा हुआ है। 16 मई को 22,970 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस साल अब तक 3,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद ले चुके हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप सेंटर, एम्बुलेंस सेवा और कंट्रोल रूम लगातार एक्टिव है। यात्रियों के ठहरने, खाने और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। मौसम और ट्रैफिक को लेकर लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं।
3: बद्रीनाथ धाम है, हर तरफ चप्पे चप्पे पे श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है। जगह जगह जय बद्री विशाल के जय घोष जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो अब लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है। वहीं जो व्यवस्थाएं हैं, दर्शन सुगम, दर्शन आसान व्यवस्था, पुलिस लगातार, जो श्रद्धालु कहीं गुम हो जाता है, लापता हो जाता है, बच्चे कहीं भटक जाते हैं, तो ऐसे में भी पुलिस और मंदिर समिति तमाम व्यवस्थाओं में यहाँ पे लगी हुई है, जिससे श्रद्धालु भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ गदगद ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी कर रहे हैं। वहीं जो पार्किंग की व्यवस्था अव्यवस्था बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही थी वो भी अब सुलझा दी गई है। वहीं घस्तोली मार्ग पर पार्किंग बनाने से माणा तक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब यात्रा और बेहतर चलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहाड़ों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा में भी और उत्साह देखने को मिलेगा।
0: समुद्र तल से करीब 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे भगवान के इस धाम तक पहुंचना आसान नहीं है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी ऑक्सीजन की कमी, हर कदम श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता है। यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होकर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और जोशीमठ जैसे पवित्र पड़ावों से गुजरती है और फिर पहुंचती है भगवान बद्री विशाल के दिव्य धाम तक। यहां आने पर श्रद्धालु सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित कुंड में स्नान करता है। मान्यता है कि मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले कुंड में डुबकी लगाने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक अग्नि देव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सदा इस कुंड में निवास करने का वरदान दिया था।
2: तप्त कुंड यहाँ पर मौजूद है, हालांकि यहाँ पर कई सारे कुंड हैं, लेकिन ये तप्त कुंड है। कहा जाता है सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ से लगातार श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं और आने के बाद जैसे यहाँ बद्रीनाथ आएंगे, आने के बाद सबसे पहले आपको तप्त कुंड में स्नान करना है। ये जो ऐसी धारा है जो पूरे साल यानी कि 12 महीने, वो भी उन 6 महीनों में भी जब यहाँ पर बर्फ से ढका रहता है ये पूरा इलाका, तब भी तप्त कुंड में एकदम गर्म पानी आपको खौलता हुआ पानी यहाँ पर मिलेगा। तो ये इस तप्त कुंड में सबसे पहले आकर लोग स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके जितने भी कष्ट है या फिर दोष है या फिर जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो सारी चीजें दूर हो जाती है और आप एक पवित्र हृदय से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: कहा जाता है कि जिस पर बद्री विशाल की कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है और जिसे बद्री दान धाम के दर्शन हो जाए उसका हर कष्ट दूर हो जाता है। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा के साथ कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज़ टुडे।
4: बद्रीनाथ धाम सतयुग की वो पावन तपस्थली है जहां स्वयं नारायण मानव कल्याण के लिए तपस्या में लीन है। कहा जाता है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक भक्त भगवान बद्री विशाल के द्वार पर ना पहुंच जाए। भगवान का यह धाम चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है।

0: शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। यानी यही वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं और श्री हरि विष्णु के उसी कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है वो कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया।
1: ओम वैकुंठाय नमः, यानी कि वैकुंठ का धाम यही है, यही वो रास्ता है, यही वो जगह है जो सीधे आपको वैकुंठ तक लेकर के जाता है। तमाम प्राणी, जितने भी मनुष्य में इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबकी यही कामना होती है, सबकी यही इच्छा होती है कि वैकुंठ धाम वो जाए, मोक्ष की उनको प्राप्ति हो, जितने भी दुख दर्द कष्ट बाधाएं हैं वो दूर हो।
0: बद्रीनाथ धाम के लिए कहा जाता है कि ये मंदिर और तपोभूमि हर युग में यही मौजूद रही है। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, त्रेता युग में योग सिद्ध नाम मिला, द्वापर में इसे विशाला तीर्थ पुकारा गया और कलयुग में बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया।
2: कहते हैं कृते शुक्लस चतुर्बाहु जटिलो बल कलांबरः, जो सतयुग था, सतयुग में भगवान जटा बलकल धारण किए हुए यहाँ पर तपस्या रत थे और जो भी मनुष्य यहाँ पर आता, जो भी मुमुक्षुजन, जो भी ऋषि महर्षि यहाँ पर आता, उनको सहज ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते। त्रेता युग में योग और सिद्धियों के बल पर मुमुक्षुजनों ने, ऋषियों ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। द्वापर युग में अभी आपने बताया कि एक विशाला नाम का एक राजा हुआ है, तुंग ध्वज नाम जी के राजा के पुत्र हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान दिया, भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। विशाला जी ने कहा, हे नारायण, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आपका ये नित्य निवास स्थान मेरे नाम से विख्यात हो जाए। तब से इस क्षेत्र को विशाला नगरी भी कहा गया है।
0: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो न आए उद्री, यानी जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तभी तो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा बद्रीनाथ के बिना अधूरी है। ये यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ आने वाला हर भक्त जीवन में पापों से मुक्ति की कामना लेकर आता है और विश्वास के साथ लौटता है। मंदिर से जुड़ी आस्था तो अपार है ही, लेकिन चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ धाम का सौंदर्य भी अद्भुत है। भगवान का ये धाम अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा है। समुद्र तल से धाम की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप है। ऋतुओं के अनुसार भगवान के इस धाम का विधान बदलता है। बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तिथि तय होती है और अप्रैल मई में मंदिर के कपाट खुलते हैं। भारी बर्फबारी की वजह से नवंबर में शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान की उत्सव मूर्ति को बद्रीनाथ से जोशीमठ ले जाया जाता है। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में 6 महीने तक भगवान की पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि उन्हीं 6 महीनों में बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की पूजा स्वयं नारद मुनि आकर करते हैं।
3: नारद जी ने और वर्ष 60 सहस्राणी शिलायम वायु भोजन है, यानी 60,000 वर्षों तक तपस्या की और वो तपस्या इतनी फलवती हुई। एक तो नारद जी के पांव में चक्र है, कहीं रुक नहीं पाते हैं, नते भ्रमता पदम शापित हैं, लेकिन बद्रिकाश्रम आके जब तक रहे आनंद करें, यहाँ शाप बाधित नहीं करता है। प्राप्ते तो भैरवी चक्र में नारद जी यहाँ पे। दूसरे में नारद जी की तपस्या का फल ये हुआ कि 6 माह नारद जी ही पूजा किया कर।
0: अद्भुत है भगवान बद्रीनाथ की महिमा। बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन के बिना चार धाम यात्रा अधूरी है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बद्रीनाथ का धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं, ये रहस्यों और चमत्कारों की पावन भूमि है। यहां मौजूद तप्त कुंड का पानी बर्फीली वादियों के बीच भी हमेशा गर्म रहता है। मंदिर के पीछे खड़े नर नारायण पर्वत को धाम का रक्षक माना जाता है। सर्दियों में 6 महीने धाम के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। मंदिर में शंख नहीं बजाने की परंपरा है। ये सभी रहस्य आज भी श्रद्धालुओं को आश्चर्य से भर देते हैं।

0: हिमालय की गोद में बसे भगवान बद्री विशाल के इस धाम की मान्यता जितनी निराली है, इसके पौराणिक रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। बद्रीनाथ धाम में मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की है, जो शालिग्राम से बनी है। ये मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। इसे भगवान विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद बद्री विशाल का ये धाम करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से भगवान बद्री नारायण की प्रतिमा निकाली थी। ये प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है। शंकराचार्य ने मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया और मंदिर का पुनरुद्धार किया।
1: कहा जाता है कि खुद आदि गुरु शंकराचार्य जो है अलकनंदा नदी से, उन्हें स्वप्न में ये बात आई थी कि भगवान विष्णु जो है वो अलकनंदा नदी में वहां पर मौजूद हैं, और वहां से उन्होंने उनकी जो मूर्ति है, जो शिला है, वो उन्हें मिली थी इस अलकनंदा नदी से, और फिर बद्री विशाल मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया। तब से उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई।
0: हिमालय क्षेत्र के बीच शालिग्राम की मूर्ति का स्थापित होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसीलिए ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद पावन पवित्र तप्त कुंड को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि बर्फीली चोटियों से घिरे होने के बावजूद इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसे भगवान विष्णु का अग्नि निवास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को शारीरिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ धाम के पीछे मौजूद नर नारायण पर्वत श्रृंखला को लेकर भी कुछ ऐसे ही रहस्य है, जिनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के इस पावन धाम की रक्षा के लिए मंदिर के पीछे नर नारायण पर्वत शेषनाग के रूप में विराजमान है, जिसकी वजह से सर्दियों के दिनों में कभी भी नर नारायण पर्वत और मंदिर के ऊपर बर्फबारी नहीं होती, और पहाड़ के पीछे से आने वाले ग्लेशियर भी अपना रास्ता बदल देते हैं।
1: ये जो भूमि है, ये तपोस्थली है, यहाँ पर तप किया है शंकराचार्य ने, किया है भगवान विष्णु ने किया है। तो जहाँ भगवान विष्णु के आते हैं कि क्यों भगवान विष्णु को ये जगह सबसे प्रिय लगी, तो एक बार अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि जरा दिखा दीजिए कि क्यों ये प्रिय लगी। यहाँ पर देखिए, आप सीधे सबसे पहले बद्री विशाल के दर्शन करिए। ये मंदिर अपने आप में देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर है। उसके साथ ही साथ जरा ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो ऊपर आप देखिए किस तरह से ये नारायण पर्वत श्रृंखला है, नर नारायण पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में बद्री विशाल का यही मंदिर है। इसको लेकर पुरोहित जी आप बता रहे थे कि ये जो नारायण पर्वत हम देख पा रहे हैं पीछे, ये शेषनाग के रूप में है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये शेषनाग का अवतार इसको माना गया है, और शेषनाग जी ने भगवान विष्णु के ऊपर, ताकि ऊपर से कोई भी एवलॉन्स या कोई बर्फ का ग्लेशियर वगैरह कुछ भी आता है तो मंदिर की सुरक्षा के लिए शेषनाग ने भगवान को यह सेवा दी है।
0: मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य सबको हैरान करता है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य गर्भगृह में एक विशेष अखंड ज्योति जलाई जाती है। मान्यता है कि सर्दियों में मंदिर के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद जब दोबारा खुलते हैं, तब भी ये दीपक जलता हुआ मिलता है, जिसे एक चमत्कार माना जाता है। इसे लेकर यहाँ के पुजारियों और लोगों की मान्यता है कि 6 महीने तक देवता स्वयं इस अखंड ज्योति की रक्षा करते हैं। जब मंदिर खुलता है तो भक्तों को सबसे पहले इसी अखंड ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं।
3: यहाँ पे बद्रीनाथ में, खासकर बद्रीनाथ में कहते हैं षडमास, 6 महीने देवताओं की पूजा होती है, 6 महीने नर द्वारा पूजित होते हैं। जब देवताओं की पूजा होती है तो कपाट बंद होने के साथ ही कहते हैं कि नारद जी बद्री विशाल के पुजारी होते हैं, कपाट जब खुलते हैं तो रावल जी होते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पे अखंड ज्योति जला दी जाती है, उसके बाद वहाँ पे बद्री विशाल रहते हैं। 6 महीने देवताओं की पूजा होती है, जब कपाट खुलते हैं तो अखंड ज्योति के दर्शन श्रद्धालुओं को सबसे पहले होते हैं।
1: यानी कि जो हम देखते हैं केदारनाथ धाम में, ठीक वही यहाँ भी होता है कि जिस तरह से पूजा करके रावल वहां से जाते हैं और अखंड ज्योत जलाकर, वो यहाँ भी वैसा ही
3: बिल्कुल, यहाँ पे भी दी अखंड दी अखंड दीपक के ही दर्शन सबसे पहले किए जाते हैं, जो जलता रहता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जैसे ही कपाट खुलता है, तो एकदम से लौ अपने आप उड़ जाती है। यहाँ
0: भगवान बद्री विशाल के मंदिर में शंख बजाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। मंदिर में पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवी लक्ष्मी यहां तपस्या कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंख चूर्ण नाम के एक राक्षस को मार दिया था। हिंदू धर्म में जीत होने पर शंख बजाते हैं, पर विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान को भंग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। यही कारण है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। भगवान विष्णु के इस पावन धाम को बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहां आकर इंसान कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। बद्रीनाथ धाम के कई ऐसे अनसुने रहस्य हैं, जिनका जिक्र आज भी पौराणिक कथाओं में मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के इस चमत्कारी धाम में मोह माया से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं और धरती पर मौजूद वैकुंठ धाम में श्री हरि के दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भगवान बद्री विशाल की दिव्य महिमा पर हमारे इस खास पेशकश में अभी लेता ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
1: somebody save me,
0: to timeless favorites,
2: and life is like a song,
0: and new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
0: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: पच्चीस मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पैरा हाई जंप पर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम भी को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी, गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर दिखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। पीएम के दौरे से भारत यूरोप औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेनों की ट्रिप। यूपी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फोर मास्टर प्लान लागू, 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी, गिर और साहिवाल गायों पर खास फोकस। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अनोखी कार रेस ने दर्शकों का बढ़ाया रोमांच। हॉलीवुड थीम ट्रैक पर होममेड गाड़ियों का जलवा। डाउनहिल रेस में स्टंट कॉस्ट्यूम और क्रैश के जबरदस्त रंग।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज।
11: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं पंच केदारों में। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम की 18 मई वो भव्य और अलौकिक तारीख है जब बाबा रुद्रनाथ के धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन उससे पहले भक्ति और आस्था का अलौकिक दृश्य देखने को मिला जब भगवान रुद्रनाथ की डोरी गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। बम बम भोले के जयकारों की गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार और सेना के बैंड की धुन के बीच बाबा रुद्रनाथ की डोली रवाना हुई। अब 18 मई को हिमालय की चोटियों में भगवान के धाम के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे।

0: हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे। वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप। और भारतीय सेना के बैंड की मधुर धुनों के साथ आज पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के सैलाब में डूब गया। अवसर था पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली की गरिमामयी रवानगी का।
1: आज सुबह भारतीय सेना की मधुर बैंडों की ध्वनि के बीच हजारों श्रद्धालुओं की संख्या के साथ जो यात्रा है वो पैदल रुद्रनाथ के लिए रवाना हो गई है। लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा, एकदम ट्रैकिंग रूट होता है बाबा रुद्रनाथ के धाम जाने को। और मध्य हिमालय में ये मौजूद है बाबा भोलेनाथ का ये धाम।
0: यात्रा शुरू होने से पहले भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति का अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान रुद्रनाथ की डोली अपने मूल धाम के लिए रवाना हुई। इस भव्य शोभा यात्रा के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से आए हजारों भक्तों का तांता लगा। बाबा रुद्रनाथ की ये यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही अलौकिक है। जब भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रवाना होती है जो भक्तों में भारी उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है। पूरी घाटी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से बाहर लाया गया था और 16 मई तक गोपीनाथ मंदिर में भक्तों ने रुद्रनाथ भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली मूलधाम के लिए प्रस्थान कर गई। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सबसे दुर्गम पंच केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को शिव के पंच केदारों में चतुर्थ केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान की पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। लेकिन अब ग्रीष्मकाल की शुरुआत के साथ बाबा रुद्रनाथ फिर अपनी हिमालयी चोटियों पर विराजमान होने जा रहे हैं। अब इंतजार 18 मई का है, जब मुश्किल चढ़ाई वाले रास्तों से होते हुए ये डोली अपने गंतव्य तक पहुंचेगी और ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्मकाल के लिए भगवान रुद्रनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रुद्रनाथ धाम के बाद सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का जिक्र कर लेते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आगामी 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर ऋषिकेश से लेकर गोविंद घाट तक तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही है। यात्रा का पूरा खाका तैयार हो चुका है। आगामी 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना होगा, जो श्रीनगर होते हुए 21 मई को गोविंद घाट पहुंचेगा। इसके बाद 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारे में पहली अरदास होगी और ये जत्था घांघरिया के लिए कूच करेगा, जहां रात्रि विश्राम के बाद 23 मई की सुबह कपाट खुलने के ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर यह है कि भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने दिन रात मेहनत करके बर्फ को हटा दिया है और यात्रा मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया है। हालांकि हेमकुंड साहिब में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हल्की बर्फबारी का दौर भी जारी है। ऐसे में अगर आप भी इस पावन यात्रा पर जा रहे हैं तो प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।
1: इसमें इसे शुरू हो रही हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। 20 मई को ऋषिकेश से पहला जत्था चलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो पंच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। पहले दिन श्रीनगर और अगले दिन गोविंद घाट और 21 को जब गोविंद घाट पहुंचेगी तो 22 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयार यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारों में सजावट रंग रोगन तमाम कार्य कर दिए गए हैं। हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना ने जहाँ विपरीत मौसम के वहाँ पे लगातार मौसम बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, कड़ाके की ठंड के बीच भी रास्ता बनाने में बर्फ को हटाने में पूरी मेहनत से रास्ते बना दिए हैं, व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई हैं। वहीं अब गोविंद घाट गुरुद्वारे में भी रंग रोगन सजावट शुरू हो गई है। तमाम जितने भी गुरुद्वारे रास्ते में आते हैं जहाँ जहाँ संगतें रुकती हैं उन गुरुद्वारों में इस समय सजावट का काम जारी है। अब महज लगभग एक सप्ताह का समय शेष रह गया है जब हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। हालांकि यात्रा 20 मई से ऋषिकेश से शुरू हो जाएगी, लेकिन जो 23 मई को कपाट खुलेंगे उसके बाद एकदम जो सिख संगत है देश और विदेश दोनों ही जगहों से हेमकुंड साहिब श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनका जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। कमल एन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
2: धर्म और आस्था से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की, जिसमें भारतीय सितारों का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। हर दिन कान फिल्म फेस्टिवल से भारतीय सितारों के ग्लैमर और स्टाइलिश लुक सामने आ रहे हैं, लेकिन स्टाइल और ग्लैमर के इस मेले में इन दिनों भारतीय परंपरागत पोशाक साड़ी की भी खूब चर्चा हो रही है। क्यों, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
3: चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत के जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा किस सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुँची है। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आईं। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपने तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहाँ चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहाँ ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहां उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मीनाक्षी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहां वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है, और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
2: कान फेस्टिवल के बाद बॉलीवुड का रुख कर लेते हैं, जहां बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े सितारों की दो बड़ी फिल्मों का टकराव अब टल गया है। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन स्टार धमाल 4 की। खबर है कि अक्षय और अजय देवगन ने बातचीत कर अपनी इस टकराव को टाल दिया है। धमाल 4 अब 4 जुलाई की जगह 17 जुलाई को रिलीज होगी, जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होगी।
0: एक तरफ गोलमाल के गोपाल यानी अजय देवगन और दूसरी तरफ हेरा फेरी के राजू यानी खिलाड़ी अक्षय कुमार, यानी कॉमेडी का महाडोज तय है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं। एक की सीरियस एक्टिंग और दूसरे की दर्शकों को लोट पोट कर देने वाली जबरदस्त एक्टिंग। और जब बात बॉक्स ऑफिस पर दोनों सितारों की फिल्मों के क्लैश की हो, तो मौका दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। 2026 में फैंस को ऐसी ही दो ब्लॉकबस्टर फैमिली एंटरटेनर फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। अक्षय कुमार के साथ लंबी चौड़ी स्टारकास्ट वाली वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन की धमाल 4 लोगों को दोनों ही फिल्मों का इंतजार है। हालांकि माना यह जा रहा था कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देंगी। खबरें थी कि ये दोनों ही मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में जुलाई की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी, जिससे दोनों के बिजनेस पर असर पड़ना तय था। लेकिन अब इस महाटकराव को बेहद समझदारी से टाल लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच इस क्लैश को लेकर सीधी बातचीत हुई, जिसके बाद अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। धमाल 4 अब तक 4 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को ही रिलीज हो रही है। दरअसल दोनों ही सितारे अच्छे दोस्त हैं और दोनों खुद प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर फिल्म को खुलकर सांस लेने के लिए स्पेस मिलना कितना जरूरी है। हालांकि दोनों ही फिल्में कॉमेडी जॉनर की हैं और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ लोगों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। अजय की धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी के ओरिजिनल पलटन मौजूद है, तो वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी समेत कई बड़े सितारे मौजूद हैं। दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करती हैं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि गर्मी के मौसम में दोनों ही फिल्में हंसी का तड़का दोगुना करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हर्षोली, आपको आरसीबी और विराट कोहली का क्रेज दिखाते हैं। आज पंजाब किंग्स के सेकेंड होम ग्राउंड धर्मशाला में

ये तस्वीरें शानदार जश्न की है। ये तस्वीरें उस लम्हे की है जो किसी भी कलाकार की जिंदगी का सबसे बड़ा पल हो सकता है। ऑस्ट्रिया के वियना में रविवार को जब यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के विनर का ऐलान हुआ तो बुल्गारिया की सिंगर दारा खुशी से झूम उठी।

0: एक पल को ऐसा लगा जैसे दारा के दिल की धड़कनें थम गई और दूसरे ही पल फैन से घिरी दारा नए उत्साह से लबरेज नजर आई। दारा को जेजे के नाम से मशहूर पिछले साल की यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के विनर योहानिस पिच ने ट्रॉफी सौंपी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉन्टेस्ट में विजेता घोषित होने के बाद ट्रॉफी लेकर दारा खुशी से उछल पड़ी और फिर स्टेज पर दारा ने उसी गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी जिसके लिए उन्हें इस बार यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में विजेता करार दिया गया है। इस गाने बंगारंगा को सशक्तिकरण और संगीत में डूब जाने से जुड़े थीम पर तैयार किया गया है। गाने पर दारा के हाई वोल्टेज डांस में भी इसकी शानदार झलक दिखी। वहीं दारा ने कॉन्टेस्ट में विजेता घोषित किए जाने पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आखिर म्यूजिक की ताकत क्या है।
1: थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force. I truly believe that that force has one name, and it's God, and it's the universe, and it's the language that we all speak, which is music. Music is love, and it helps us make our reality so much colorful and tasteful.
0: बुल्गारिया ने पहली बार यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीता है, लिहाजा दारा की खुशी लाजमी है। खासतौर से ऐसे माहौल में जब ऑस्ट्रिया में हुआ यह कॉन्टेस्ट गाजा मुद्दे को लेकर पांच देशों की ओर से इजराइल के बहिष्कार की वजह से विवादों में रहा, वहीं बुल्गारिया ने इसमें शानदार जीत हासिल की। वहीं पब्लिक के भारी समर्थन के बावजूद इसमें इसराइल के सिंगर को लगातार दूसरी बार दूसरा स्थान ही नसीब हो सका।
2: 220 पॉइंट्स।
0: यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय लाइव संगीत प्रतियोगिताओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1956 में यूरोप के देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए हुई थी। इसे यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की ओर से आयोजित किया जाता है। हालांकि गाजा पर इजरायली हमले के विरोध के मुद्दे की वजह से इस बार स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और स्लोवेनिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसमें बुल्गारिया के कलाकार की जीत ने यही संदेश दिया है कि संगीत राजनीति से परे है और यह वो ताकत है जो दुनिया में अमन चैन को बढ़ावा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मैराथन तो आपने बहुत देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि चीन के दीवार पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए रिपोर्ट।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान

0: तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है, बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
1: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
2: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
0: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज टुडे।
3: अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
6: AI is changing what it takes to move forward in tech. At WGU, our online technology master's programs help you build the skills today's roles require, so you're ready for what comes next. Learn more at wgu.edu.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Some people think that Chalk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by Monster news and reaction, listen to Chalk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Chalk Sport definitely contains nuts. Yuck, yuck, yuck.
10: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज के दिन किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मई 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:53 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:05 तक, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं, अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, तो किसकी पूजा करेंगे? मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्य देव की अगर आप नियमित उपासना करें तो आपका नाम और यश बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कैसे करेंगे? रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। जल में जरा सी रोली यानी कुमकुम मिला लीजिएगा और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तब लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उस रोली का तिलक लगाएंगे। ऐसा रोज अगर आप करना शुरू करें तो आपको जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह के अपयश से और किसी भी तरह की बदनामी से आपकी रक्षा होगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तमाम प्रयास करता हूं लेकिन मुझे जीवन में यश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को बताए गए तरीके से जल अवश्य देना चाहिए। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं विवाह की। शीघ्र विवाह हो जाए इसके लिए किस देवी देवता की पूजा करेंगे? देखिए, शीघ्र विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। कैसे करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता दुर्गा के सामने बैठें, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को जो पुरुष हैं वो लाल फूल अर्पित करेंगे और स्त्रियां यानी बालिकाएं सिंदूर चढ़ाएंगी। और इसके बाद देवी का जो मूल मंत्र है, ओम दूं दुर्गाय नमः, ओम दूं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 3 माला तो करिएगा ही। ये प्रयोग किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 3 महीने तक करें। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो किस देवी देवता की पूजा करेंगे? नौकरी पाने के लिए और नौकरी चलाने के लिए दोनों मामलों में भगवान शनि की पूजा करिएगा। इसके लिए शनिवार का उपवास रखिएगा। सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल पीपल की जड़ में डालिएगा शनिवार को, और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और दीपक जलाने के बाद संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास ही शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम को जब दीपक जला लें, शनि देव के मंत्र का जप कर लें, तो रात में काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइएगा, खाइएगा और लोगों को खिलाइएगा। ऐसा लगातार शनिवार के शनिवार अगर आप करें तो आपके लिए नौकरी पाना भी आसान होगा और आगे नौकरी करना, नौकरी में सफलता पाना भी सरल होगा। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आप व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं तो किस देवी देवता की उपासना करेंगे? व्यवसाय कोई भी हो, व्यवसाय में, व्यापार में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। अपने व्यापार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करें। जब आप अपने कारोबार में काम शुरू करते हैं उसके पहले एक रुई में गुलाब का इत्र लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करिए और इसके बाद वही इत्र स्वयं लगा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई भी व्यापार करते हो व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में जीवन या आयु पर संकट की स्थिति बनी हुई है तो आयु की रक्षा के लिए किस देवी देवता की पूजा करें? देखिए, अगर आयु पर संकट है या अल्प आयु के योग हैं तो आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें और रोज पंचामृत अर्पित ना कर पाए तो सोमवार को पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद उनको जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आप नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जप शिव मंदिर में ही करें, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। देखिए, जिस दर्पण में, जिस आईने में आप चेहरा देखते हैं, आईने को हमेशा साफ रखिए। जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं अगर वो गंदा है तो अच्छा नहीं होगा। गंदे आईने में चेहरा देखने से बचना चाहिए। अगर आप गंदे आईने में, गंदे मिरर में चेहरा देखेंगे तो ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होगा। तो जिस शीशे में या दर्पण में चेहरा देखते हैं उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि रोज के आपके काम में आपको सफलता मिले, रोज आपका करियर अच्छा रहे, तो क्या करेंगे? अपने काम करने के स्थान पर काम शुरू करने के पहले उस स्थान को नमस्कार करें, इसके बाद काम शुरू करें। काम उत्तम होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। जिस कुर्सी पर, जिस टेबल पर बैठकर काम करते हैं, वहां बैठने के पहले, शुरुआत के पहले भगवान का स्मरण करके, नमस्कार करके बैठ के काम शुरू करिए। आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: जो बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
8: और चलिए आपको दिखाते कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसमें कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर देंगे।
9: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहां का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त, जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के एमसीडी जिले में भव्य राम कथा का आयोजन, पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। पच्चीस मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम भी को मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी, गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर दिखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। प्रधानमंत्री के दौरे से यूरोप भारत औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। यूपी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फोर मास्टर प्लान लागू, 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी, गिर और साहिवाल गायों पर खास फोकस। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उस

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।

0: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कान्स का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गईं। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनी कॉम लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान की रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत $155.87 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शियर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस ज्वेलिपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके सफर का आगाज 2022 में हुआ था, तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपने बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही तारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वही इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को हुमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ हुमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था, तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और ये सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

0: दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ तालियां बटोरी तो कभी भारतीय सितारों के रेड कार्पेट लुक ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव जूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। के रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। तेरह में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास की सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। ১৯৮৮ में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। 2022 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का मौका मिला, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है, जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों

कारपेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की ज्यूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए। दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोख से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टर के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहाँ कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीनजे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज़ शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ ये आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946 के पहले ही साल में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने इस फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में बेचता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुँचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है जहां चमकने की हसरत हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सितारों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: dropping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search Classic Hip-Hop or tell your device to play Classic Hip-Hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच शुभ संबंध की कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के MCB जिले में भव्य रामकथा का आयोजन, पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। पच्चीस मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति, पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगा राम को भी मिलेगा पद्मश्री, राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी, गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर दिखे भारतीय संस्कृति और कला के रंग, प्रधानमंत्री के दौरे से भारत यूरोप औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। यूपी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन 4 मास्टर प्लान लागू, 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी, गिर और साहिवाल गायों पर खास फोकस। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
1: सब कर्म के अधीन है। यह मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
12: मत जाओ काना, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा।
1: ओपे वारु उर्वशी, सुनो राधिके सुझा, तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समा।
12: गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।

0: नाम का इतना महत्व? केवल बताते हो या मानते भी हो?
1: कृष्ण के जीवन का सार है राधा।
2: नवजोत रंधावा। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे बड़ी गुड न्यूज, और उस गुड न्यूज के जो मेन किरदार हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, जिनसे हम चर्चा करेंगे। कृष्णावतारम रिलीज हो चुकी है और किस तरीके से दर्शकों के दिलों पर छा गई है, ये सब आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फिल्म की स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण।
3: जय श्री कृष्ण।
2: एक बार परिचय करा देती हूँ। सिद्धार्थ गुप्ता एक्टर, संस्कृति हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सत्यभामा का किरदार निभाया, और संस्कृति की ये डेब्यू फिल्म है, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं साजन राज जी, ये प्रोड्यूसर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डेब्यू, और वो भी कृष्णा अवतारम में एक ऐसी फिल्म में जिसको खूब लोग पसंद भी कर रहे, और बहुत आई थिंक उत्तर प्रदेश में तो टैक्स फ्री भी हो चुकी है।
4: यस, बस बहुत ओवरवेल्म्ड हूं। मैंने अगर सपना भी देखा होता तो ऐसा किरदार नहीं मिलता, तो इट्स जस्ट अ ड्रीम दैट आई एम लिविंग राइट नाउ।
2: आप बताइए कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? अच्छा लग रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कि हम एक अच्छा ही फिल्म बना रहे हैं, एक अच्छे मैसेज के साथ, और हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा प्रसन्नता, इतना ज्यादा अभिनंदन मिलेगा।
2: आज किसी ने रोक के आपसे सेल्फी भी ली है, है ना? ये हमारे दर्शकों को बताइए आप।
3: तो हम कहीं जाते हैं प्रमोशन करने, तो पता है क्राउड आएगा तो सेल्फी लेता है, बट स्पॉट करके हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, एक आंटी थी बाइक पे बैठी हुई अपने हस्बैंड के पीछे, और वो देखे जाए, ऐसे देखे जाए, कृष्ण अवतार। सो वो आई थिंक मेरा मार्लिन मुनरो मोमेंट था कि आई गॉट स्पॉटेड, किसी ने मुझे स्पॉट किया बिकॉज ऑफ द वर्क आई हैव डन, जिस काम की वजह से हम इतना।
2: बिल्कुल, चलिए साजन जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। पहले तो मैं आपको, दर्शकों को ये बताते चले हम कि ये पार्ट वन है, और जो मुझे पता चला है पार्ट टू एंड पार्ट थ्री भी आने वाला है, जिसमें आप कृष्ण के जीवन की हर लीला को बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। पार्ट वन की हम बात करते हैं क्योंकि अलग अलग फिल्में आ रही हैं, लेकिन आजकल माइथोलॉजिकल फिल्मों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है, पसंद भी कर रहे हैं लोग। अभी हाल फिलहाल में एक और फिल्म आई थी जिसको लेकर चर्चा भी हो रही थी, अब कृष्णावतारम वन आई है, और उसका रिस्पांस मतलब गुजरात में तो लोग ने, अच्छा आप तो गुजरात से ही, उस पर मैं आती हूँ, लेकिन गुजरात में तो लोग एक्चुअली इसको फील कर रहे हैं, शंकराचार्य हो, इस्कॉन कम्युनिटी हो, हर कोई बहुत पसंद कर रहा है इसको।
5: पहले तो ये माइथोलॉजी नहीं है हमारा। अच्छा। माइथोलॉजी शब्द हमारा जो है, और मेरे मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारा हमारी संस्कृति है। सो हम इनफैक्ट ये एक मुद्दा भी हम रख रहे हैं कि व्हाई शुड हिंदू बी माइथोलॉजी, राइट? इट इज अ हिंदू हिस्ट्री। कृष्ण भगवान हमारे है, वी हैव यू नो बेट द्वारका, हमारे जो द्वारका अंदर there's a lot of
2: प्रमाण
5: तो है। तो ये है इन टर्म्स ऑफ ये जो वर्ल्ड हम जो बिल्ड कर रहे हैं कृष्ण अवतारम का वर्ल्ड, कृष्ण भगवान के बारे में आप जितने एपिसोड्स बनाए, जितने सिर्फ ट्रिलजी बनाओ, उससे कम ही पड़ेगा, राइट? मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से इसको रिसेप्शन मिला है, जब हम जैसे हम कितने बार थिएटर में जाते हैं, जब लोग देखते हैं तो साक्षात कृष्ण उनको नजर आता है, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम कहीं ना कहीं हमारा कास्टिंग राइट किया हुआ है हर एक कैरेक्टर के बारे में, द वल्नरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सत्यभामा इज़ वेरी क्लियर, लाइक जो राधा का जो वाइवेसिटी है दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर, रुक्मिणी का जो एक रानी का जो भाव होता है इट वॉज वेरी वेरी क्लियर, सो एवरी बिट ऑफ दैट इज रियली, पीपल आर रियली प्लेइंग इट बैक। कितने बार आज मुझे इनफैक्ट कितने मैसेजेस आए कि माय मदर हैड गॉन देयर एंड शी ब्रोक डाउन एंड शी क्राइड एंड शी यू नो वॉच द एंटायर थिंग, इट्स ब्यूटीफुल। लोग भावुक हो जाते हैं पहले 7 मिनट में, जब जैसे आप घुस जाते फिल्म के अंदर, और जो लास्ट की जो 16 मिनट्स में द वे जो द्वारका का जो प्रलय है, आई हैव सीन पर्सनली सीन पीपल मेल्टिंग राइट इन द थिएटर। और ये एक नहीं, ये एक ऐसा स्पोरैडिक इंसिडेंट नहीं है, इट्स कंसिस्टेंटली मैडम ये होता जा रहा है, विच इज
2: एक चीज। आप जिस तरीके से जिन भावों की बात कर रहे हैं वो भाव दर्शकों के हैं, वो भाव दिख भी रहे हैं, और जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप इस पूरी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, आपने बिल्कुल फ्रेशर्स, आपकी तो शायद एक फिल्म आ चुकी है, इन दोनों का आपने बोला कि आपकी डेब्यू ही है एक तरीके से, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं मंझे हुए कलाकारों को लूं, क्योंकि वो अपने भावों को ज्यादा अच्छे से स्क्रीन पर व्यक्त कर पाएंगे?
5: क्या है, कृष्ण भगवान के साथ मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहता था।
2: हाँ।
5: हम कोई भी स्टार को लेके आ सकते थे, लेकिन वो दर्शकों के लिए वो धोखा हो जाता है, क्योंकि आप कृष्ण भगवान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. हालांकि मुझे लॉर बहुत लोगों ने कहा यार आप इतने रिस्क ले रहे हो.
2: हाँ.
5: लेकिन ये फिल्म की एक एक एक जरूरत थी, क्योंकि ये भारत देश में अगर कोई कृष्ण का किरदार निभा रहा है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने पहले वो कृष्ण दिखे.
2: हाँ,
5: ना कि कोई exactly. कलाकार स्टार दिखे.
2: हाँ,
5: राइट.
2: ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में अभी आ भी रही हैं इसको लेकर, और हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम अगर किसी को एक पर्टिकुलर रोल में देख लेते हैं, एक फिल्म के किसी रोल में देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको एक देवता, एक भगवान के किरदार में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो छवि रह जाती है. तो ये आपकी सोच, आपने कहा कि इसके पीछे थी. कितनी मेहनत की है आपने इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए?
3: मैम मैंने मेरी प्रेपरेशन काफी रही इसमें. पहले तो मैंने ऑडिशन,
2: सबसे टफेस्ट पार्ट बताइए कौन सा था.
3: टफेस्ट तो नहीं था, आई थिंक शुरू करना वो था, जब आई थिंक मैं अनजान था मैं किस चीज में जा रहा हूँ. जिस सिद्धार्थ को ये कैरेक्टर मिला था और जो आज मैं हूँ, आई थिंक वो दो अलग अलग इंसान है. मेरे लिए प्रोसेस बहुत सिंपल था. मैं किसी को देखना नहीं चाहता था जिसने पहले ये किरदार निभाया है, और मैं सच बताऊं तो मैंने देखा भी नहीं था जब तक मुझे कैरेक्टर मिला. तो थोड़ा आयरोनिकल भी था कि मुझे मिला ये. उसके बाद मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, मैंने किताबों से पढ़ा है जितना मैं पढ़ पाया हूँ. जो हमारे एक्टिंग टीचर थे उन्होंने मुझे टेक्स्ट दिया था, उन्होंने मुझे एक ट्रांसलेशन भी दिया था श्रीमद् भगवद गीता का और भगवत पुराण का, और मैं उन्हीं के थ्रू जितना पढ़ता गया, जितना कृष्ण को समझता गया, कृष्ण जी भगवान को समझता गया, मैंने अपने दिमाग में उनकी अपनी ही छवि बनाई, और मैंने कोशिश करी कि मैं वही पर्दे पर उतारने की कोशिश करूं जिससे कि कुछ फ्रेश दिखे, ऐसा ना लगे कि किसी ने इस तरीके से पहले
2: तो
3: किया.
2: सिद्धार्थ बिफोर कृष्ण अवतार एंड नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर प्लेइंग दिस रोल, क्या चेंज आया आपने, अपने खुद में क्या चेंज देखा है?
3: आई थिंक मैं काफी काम हो गया हूं, थोड़ा रिजल्ट से डिटैच हो गया हूं, बिकॉज गीता का सार है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. तो कर्म अगर आप सही करेंगे, कर्म जो आपके हाथ में कंट्रोलेबल्स हैं, आप उस पर स्ट्रेस ले सकते हैं, लेकिन आप सही सब कुछ करके भी आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट उस पर स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है. तो ये चीज़ मेरी जिंदगी में, मेरी जीवन में का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है. इसलिए डिटैचमेंट ही प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है, जब आप किसी चीज को ओन नहीं करते. ये सब मेरी जिंदगी में आ गया है आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस.
2: माय गॉड, मैं एज नहीं पूछूंगी आपको, सीरियसली एज नहीं पूछूंगी, लेकिन ये परफेक्ट लाइन है गुड न्यूज टुडे के लिए. सही बता रही हूँ, क्योंकि आप देखिए जब हम किसी चीज को, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, सर आपने ये फील किया होगा, हमारा कैरेक्टर, हमारी नेचर बिल्कुल वैसा हो जाता है.
3: जी.
2: आपने खुद में, आपने भी चेंज महसूस किया?
5: बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मेरे और इतने लोगों से मिलना हुआ है.
2: हाँ.
5: और मैं जैसे शंकराचार्य जी मिले थे मुझे, या हमारे माँ मंडलेश्वर हैं वो मिले थे, और हर किसी ने, मैं प्रेमानंद महाराज को मिलने गया था, उन्होंने तो सीधा मुझे इनाम दे दिया, 1100 रुपए का इनाम दे दिया हाथ में, और वो एक चेंज हो जाता है. शंकराचार्य ने एक माला डाल दिया मेरे ऊपर, तो वहाँ से मेरे यू नो कंप्लीटली मेरे खाने पीने का.
2: Are you a spiritual person?
5: I think all of us are.
2: All of us are.
5: This has been made as a devotee.
2: हम
5: सब, हार्दिक भाई हमारे डायरेक्टर हैं, सब स्पिरिचुअल हैं, हर कोई. प्रकाश कापड़िया साहब जिन्होंने लिखा है इतनी ब्यूटीफुली, विदाउट स्पिरिचुअलिटी लिख नहीं सकते इतना अच्छा, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डायलॉग्स एंड द लाइंस इतने अच्छे से पिकअप किए.
2: आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगी. हम माइथोलॉजिकल फिल्म कह रहे थे, आपने कहा नहीं ये हमारा इतिहास है. तो चलिए एक बार फिर से अपने इस इतिहास को देख लेते हैं.
6: पहले ये आंखें उनके दरस को तरसती थी, अब पाने को. भामा की आंखों में सपने जगते ही है इसलिए कि वो पूरे हो सके. गोपियों के प्रेम की तरह तुम्हारा प्रेम भी अधूरा ना रह जाए. या क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का?
7: मैंने विवाह किया, रुक्मणी मेरी भार्या है. संसार रथ के दोनों पहिए एक समान होने चाहिए.
6: और राधा, हरे मुरारी, वो आपसे प्रेम करती है.
7: कौन नहीं. नियति मेरे बस में नहीं.
8: अंत में आरंभ है,
7: एक और प्रेम है.
8: आरंभ में ये अंत,
7: और दूसरी ओर कर्तव्य.
9: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा.
1: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीर हरण किया इन्होंने द्रौपदी का और सारे धर्म अधिकारी चुप।
10: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र।
2: बहुत कुछ इस फिल्म से हम सीख सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि उनके जीवन के हर एक पहलू में एक ना एक संदेश छिपा हुआ जो हम अपने आप में धारण भी कर सकते हैं, हम खुद को बदल सकते हैं, जैसा चर्चा हो ही रही थी। तो अब हम सत्यभामा से बात करते हैं, श्री कृष्ण की 8 पत्नियों और उनकी तीसरी पत्नी सत्यभामा। द्वारका में ये काफी चीजें इसमें दिखाई गई हैं और आप तो खुद अहमदाबाद से हैं, कितना आप स्पेशली, मैं जब शुरुआत कर रही थी क्योंकि मैंने देखा कि गुजरात की ऑडियंस बहुत खुद को इससे अटैच करके देख रही है।
4: मेरे लिए एक्चुअली, मैं गुजरात से हूँ तो ऑफकोर्स हम घर के बाहर निकलते थे जय श्री कृष्ण बोल के ही निकलते, तो कृष्ण भगवान हम सब के घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पर तो भी बहुत एम्बेरसिंग बात है कि मैंने जब ये फिल्म पहली बार सुनी मुझे नहीं पता था सत्यभामा कौन है। एंड जैसे राज ने कहा कि हमारी हिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो यूथ को नहीं पता, इसीलिए ऐसी फिल्म के माध्यम से ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। फिर मैंने पढ़ा कि उनका कितना बड़ा योगदान था हमारे कल्चर में। हम छोटी दिवाली मनाते हैं क्योंकि कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था, पर हमें इसके पीछे का मीनिंग नहीं पता। तो आई थिंक ऐसी स्टोरीज काफी बननी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जैसे यूथ को हमारी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता चले।
2: यूथ के लिए फिल्म सर कितनी जरूरी है? मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगी। आई थिंक 90s का वो समय था, आप बिल्कुल उससे खुद को कनेक्ट करेंगे, जब महाभारत आई थी
5: जी।
2: और उसमें हमने देखा था श्री कृष्ण का वो किरदार। हम लोग अगर श्री कृष्ण के किरदार में देखते आज भी महसूस करते हैं तो हम भारद्वाज जी को ही बिल्कुल अपने माइंड में रख के चलते हैं। लेकिन आज की जनरेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली इस तरह की फिल्में आए और हम अपने बच्चों को फिल्में दिखाएं ताकि वो हमारे इतिहास से रूबरू हो सके। किस जेनरेशन को आप खास तौर पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर?
5: सी, जेनरेशन जो है वो जेनरेशन इटसेल्फ इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो हमने तो, मुझे लगता है कि ये दिस इज फॉर एवरीबॉडी। आप ऐसे फिल्म के लिए बच्चों को भी लेके जा सकते हो और मैंने देखा है बच्चों का हम काफी शो करा रहे हैं, राइट, उनके लिए बना हुआ भी है, राइट। जो हमारी माता जी है, यू नो, ग्रैंड मदर्स हैं, उनके लिए बना हुआ है, उनको वो एक अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे। एक तरह से मैं आज किसी को समझा रहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम NLP के आवाज इसके अंदर, इफ यू लुक एट जो हमारा द कलर्स देयर आर देयर, राइट, रवि वर्मा जी का जो कलर्स, राजा रवि वर्मा के जो कलर्स जिन्होंने एक्चुअली क्रिएट किया, गॉड को अगर फेस किसी ने दिया आज हमारे भारत में तो इट वॉज रवि वर्मा। उनके कलर्स को यूज करके इफ यू लुक एट द वे द फिल्म इज स्ट्रक्चर्ड, इट विल गिव समथिंग टू समवन। कृष्ण भगवान का कोई चीज बिना लेयर का हो ही नहीं सकता, उनका मन भी हमेशा काफी लेयर्स रहा है। तो जिस तरह से कॉन्टेंट बना है ये कोई सीधा साधा फिल्म नहीं है, आप इसके साथ अलग तरीके से कनेक्ट करोगे। एक जेंसी जब जाएगा वहां पे, या एक यंग पर्सन जाएगा, या एक बच्चा जाएगा, या समरी सीनियर सिटीजन जाएंगे, सब अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे इस फिल्म के साथ, राइट। देयर आर पार्ट्स दैट पीपल हैव प्लेड बैक, राइट, इसके अंदर। सो इट इज एन एक्सपीरियंस, हमने ये थिएटर के लिए बनाया हुआ है, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए बनाया हुआ है, ना कि सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट फॉर व्यूइंग। आप नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग जा रहे हैं थिएटर में रो रहे हैं। देयर आर पीपल हु हैव, व्हेन ही एंटर द थिएटर, कोई साष्टांग कर गए, राइट। कितने लोग मैंने देखा हुआ है कि देयर इज अ लेडी हु वाज देयर, ब्यूटीफुल लेडी हु केम, शी हैड अ कैंसर इन अ लेग, बट शी केम एंड ऑल द वे फ्रॉम बोरीवली शी केम टू जुहू टू वॉच इट, बिकॉज वहां पे उनको टिकट नहीं मिला, तो वो यहाँ तक चल के मेट्रो में आके बैठे हुए थे, राइट। एंड भाव देखना चाहिए आपको, राइट, आप जाएंगे थिएटर में आपको भाव देखना चाहिए लोगों का।
4: बट आई डेफिनेटली से के भगवान की तो फिल्म है ही, पर एज अ यूथ आई वुड से, जब स्क्रिप्ट भी मैंने पहली बार पढ़ी थी, जिस तरीके से मेकर्स ने इसे लिखा है, प्रकाश कापड़िया सर, राम मोरी और हमारे डायरेक्टर हार्दिक गर्जन ने, उन्होंने बहुत एंटरटेनिंग वे से लिखा है, तो इट्स नॉट पीची। डेफिनेटली आप कुछ सीख के जाओगे क्योंकि गीता सार के डायलॉग्स है, बट ऑल्सो इट्स मेड इन अ वे, क्योंकि प्रकाश सर ने बाजीराव मस्तानी, रामलीला इस टाइप की, देवदास टाइप की फिल्म लिखी है, तो उन्होंने वो अप्रोच लाया है कि यूथ कैसे कनेक्ट कर पाए इन अ मोर एंटरटेनिंग वे, हम हमारे इतिहास के बारे में जानें।
2: इसीलिए बार बार इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं ना कि देखिए सर, आज की मैं वापस उसी बात पर आऊंगी। हम जब कहते हैं कि जेंजी जो है पूरी तरह से डिटैच हो गया है धर्म से, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो वो खुद को उसके साथ जोड़ के देखता है, उनको पता चलता है हमारा इतिहास क्या है। स्पेशली जिस तरह का पूरा VFX उसमें आप लोगों ने दिखाया है, वो एक तरीके से जो आज की जेनरेशन की फिल्में, चाहे मॉडर्न फिल्मों के जैसे धुरंधर की बात कर ले, अब तमाम जो दूसरी फिल्म है, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, उसमें अगर वैसा ही वीएफएक्स के साथ इस तरह की फिल्म आती है तो यूथ कितना खुद को कनेक्ट कर पाए?
5: काफी। और इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे मेहनत काफी जाती है, 7.5 acres का सेट बनाया हमने, टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, जितना ग्लैडिएटर ने बनाया वेस्ट में उतना बड़ा सेट हमने यहाँ बनाया है, राइट। और वीएफएक्स का खूबी यह है कि उसका एब्सेंस ही उसका प्रेजेंस रहता है, आपको दिखना नहीं चाहिए, तो उस तरह से हमने बनाया हुआ है, तो वो एक ऑप्टिमल वे से बनाया हुआ है। यंग यूथ जब देखते हैं ना द ग्रैंड्योर, वो जब देखते हैं वो स्केल में, हमारे यहाँ पे जब हम हैरी पॉटर देखते हैं या कुछ देखते हैं, वो एक अलग वर्ल्ड बन जाता है। ये वर्ल्ड के साथ यू नो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अगर वाकिफ कराना है तो उनको बिल्कुल वो ग्रैंड्योर दिखाओ।
2: Exactly,
5: जो हम बेडरूम्स बनाए, हमने जो शूट किया है वो 80 feet by 100 feet का बेडरूम, लाइक 35 feet टॉल, लाइक सो वो जो एक्सपैंस, वो स्पेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो इन टू स्टोरी टेलिंग, राइट। तो उसके ऊपर जब आप करेक्ट वीएफएक्स करते हैं, जो पानी, वे यू हैव टू गेट द वाटर राइट, राइट, यू नो व्हेन द यू नो वाटर सिमुलेशन जब करते हैं, गेटिंग ऑल दोज लिटिल डिटेल्स राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज वेयर दे कनेक्ट। जो और इसमें क्या कि अगेन व्हाट संस्कृति जस्ट सेड, ये प्रीचे नहीं बनाया हमने, राइट। और ये एक इनफैक्ट जो एक इन फिल्म में है, एक गुरुजी बैठे हैं और वो कथा सुना रहे हैं, एक्चुअली वो कथा सुनाते वक्त एक बच्चा है कंफ्यूज है, यंगस्टर आके बोलता है कि मुझे सब पता है कृष्ण भगवान के बारे में, मैंने तो महाभारत पढ़ी है, और वो जिस तरह से बोलते हैं ना महाभारत पढ़ने से कृष्ण समझ में नहीं आते, और वो जिस तरह से उन्होंने वो एक एग्जाम्पल जिस तरह से लिखा हुआ है इज ऑल यू नो कीपिंग देम इन माइंड, एक फ्रेंडली यू नो उनके फादर उनको टोकते हैं जब वो गुरुजी के साथ ऐसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करो, वो दे नहीं नहीं डोंट वरी यू नो, एंड विच इज व्हाट आर हमारे यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस पूछना, ये संदेह करना, डाउट करना हर किसी का हक है, हम किसी को नीचे रोकते नहीं हैं, इसलिए हम भी बोलते थे कि इसमें क्वेश्चन करो हमको किसी भी चीज़ में, वी आर विलिंग टू ऑलवेज आंसर द एंटायर थिंग, क्योंकि ये क्या कृष्ण क्या है, एक भावना है इस देश की, राइट, इट्स नॉट वन कैरेक्टर, इट्स अ फीलिंग ऑफ दिस कंट्री। मणिपुर के कृष्ण अलग होते हैं, लाइक ओडिशा के कृष्ण अलग है, केरल में जो कृष्ण है वो अलग है, गुजरात के अलग है, राइट, हम कितने
2: मथुरा के अलग,
5: मथुरा के अलग हो जाते हैं, द्वारकाधीश हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये जब बना रहे यू नो दिस इज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच वी डू इट, वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, एवरीथिंग इज रिसर्च।
2: बिल्कुल, और जितनी जिम्मेदारी से आपने इस फिल्म को बनाया है, आप पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप तो खुद उस किरदार में हैं।
3: जी जी जी, मैं सच्ची बोलूंगा, मैंने ज्यादा प्रेशर इस बात का लिया नहीं, मुझे लगा
2: मुझे लग रहा है आपने गीता पढ़ ली, फिर गीता पढ़ने के बाद इन्होंने डायलॉग्स,
3: मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्चुअल प्रोसेस है ये कि शुरू में मुझे ऐसा लगता है डर हटता तब है जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल प्योर हो, जितना आप प्रिपेयर करते जाएंगे उतना डर आपका हटता जाएगा। तो मेरा एक रूटीन था, मैं पढ़ता था सोने से पहले 2 घंटे और उठने के बाद, और जितना मैं पढ़ता गया उतना मेरा डर हटता गया, जितना मुझे समझ आती गई उस कैरेक्टर की। और मुझे लगता है अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत प्योर हो और बिना मैलिस हो, बिना कोई मिलावट हो, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो।
2: एक चीज और देखिए, आप जेन जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों
3: जी,
2: क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत रिसर्च की और आपने इस बात का जवाब भी दिया कि श्री कृष्ण का किरदार प्ले करने से पहले वाले सिद्धांत और बाद वाले सिद्धांत में बहुत बदलाव आया।
3: जी जी,
2: आज के जेन जी को यहां से एक मैसेज दीजिए, आज के जेन जी को अगर हम कहें कि हमें श्री कृष्ण को समझना है,
3: हाँ जी,
2: तो जेन जी को कहां से शुरू करना चाहिए? हालांकि वो समझने का तो कोई अंत है ही नहीं, शुरुआत कहां से करें?
3: मैं वही बोल रहा था कि आई थिंक जेन जी तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा प्रीची नहीं होना, क्योंकि वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब आप एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप श्री कृष्ण को इंट्रोड्यूस करेंगे, श्री कृष्ण एक सिर्फ भगवान ही, एक आइडिया भी है ऑफ लाइफ, सोचना, एक स्पिरिचुअलिटी। देखो, मैं स्पिरिचुअली अवेयर था, इंक्लाइंड नहीं था। आप इंक्लाइन कैसे करेंगे, वो इस एंटरटेनमेंट के माध्यम से है। और इस वजह से भी मुझे ये फिल्म का हिस्सा होना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक अच्छा मैसेज प्रोपोगेट कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ से आई एम प्रिटी श्योर, अगर जेन जी आके ये फिल्म देखेगी, मेरा अभी आने से पहले मेरे कजन से बात हो रही थी दुबई में, वो देख के आए फिल्म, उन्होंने कहा फिल्म देखते ही मैंने जाके चैट जीपीटी पे कृष्ण भगवान के बारे में और पढ़ा, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है।
2: नोटिस कीजिए, आई मीन आई वी शुड बी थैंकफुल टू यू कि कम से कम ऐसी फिल्में तो बन रही है, हमारा यूथ एटलीस्ट चैट जीपीटी से हमारे भगवानों को, हमारे इतिहास को नहीं समझ रहा है।
5: चैट जीपीटी सीख जाएगा सब कुछ,
2: सोचिए।
5: मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट।
3: ऐसे 10 लोगों ने बोला होगा मुझे कि हमने फिल्म देखने के बाद जाके और पढ़ा है 2-3 घंटे, तो हमारी तो विन है। हम वो आइडिया एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट आर हिस्ट्री हम वो प्रोपोगेट करने में सफल हो रहे हैं।
2: मेरे ख्याल से आगे आप चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 आप लेकर आइए, 2 और 3 भी लेकर आ रहे हैं। एक बार जल्दी से एक मैसेज हमारे यूथ के लिए कि अगर हम श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए।
4: मेरे लिए, मैं मेरी पर्सनल बात करूंगी, मेरे लिए आई थिंक मैं कृष्ण इन्फॉर्मेशन तो सब जगह पे, बुक्स पढ़ेंगे, फिल्म देखेंगे, चैट जीपीटी, लोगों से बात करेंगे, पॉडकास्ट है बहुत सारे कृष्ण पे, सब कुछ है, बट ऑल्सो आई थिंक कृष्ण अंदर है, दिल में है। तो मेरे लिए वो जर्नी वही थी कृष्ण भगवान को जानने की, कि मैं कैसे इंटरनली बिकमिंग अ बेटर पर्सन उनके पास जा पाऊँ और उनके वैल्यूज को फॉलो कर पाऊँ। हमने कृष्ण जन्मभूमि में हमारा ट्रेलर लॉन्च किया और उस दिन हमारा सेलिब्रेशन पूरा दिन यही था कि हम कृष्ण भगवान की वैल्यूज के काम करें। हम गौशाला गए, यशोदा माओ के बीच में गए, तो मुझे वही है कि अगर कृष्ण को समझना है तो उनकी वैल्यूज को समझना।
2: बिल्कुल, और उनको केवल एक, हम एक फिल्म तक सीमित नहीं रख सकते, और हम उम्मीद करेंगे कि 2 और 3 जल्दी आए और हमारे दर्शक बिल्कुल उनको समझ पाए, उनको जी पाए, उनको फील कर पाए। तो चलिए एक बार फिर से चलते चलते आपको दिखा देते हैं फिल्म का ये ट्रेलर।
9: मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा।
1: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा, हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप।
10: ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र।
1: ये बंसी सब कर्म के अधीन है, यह मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
11: मत जाओ काना, तुम गए तो
2: चलिए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे सेकंड और थर्ड में भी आपसे इसी तरीके से मुलाकात हो।
3: थैंक यू।
2: तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: तू है उर्वशी समा।
11: गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त, जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य रामकथा का आयोजन, पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु।
15: और
14: 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक टगा राम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फोर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को Mach 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विथ स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 Mach से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में Mach 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैम या टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब ये स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 Mach 7-8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं, और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है, वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक

0: अगर इसको समझना तो ये कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और J-100 है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रीशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा।
0: तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है, जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
0: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है।

0: तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wake.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त, जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना, अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की आराधना। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भव्य रामकथा का आयोजन, पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। और 30 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम को भी मिलेगा पद्मश्री, राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया निर्देश, अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू, 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी, गिर और साहिवाल गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, कल से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से हुई रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: पुरुषोत्तम मास की शुरुआत में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, सुबह से ही अंबाजी मंदिर में आस्था का माहौल छाया। अंबाजी मंदिर में लोग दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहे, भक्तों ने नारियल, चोली और चूड़ियां चढ़ाकर मां अंबे से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में जय माता दी के जय घोष गूंजते रहे, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय और आध्यात्मिक हो गया। भगवान विष्णु की विशेष उपासना, दान और जप तप से कई गुना पुण्यमार प्राप्त होने की मान्यता, अधिक मास को माना जाता है अत्यंत पवित्र। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालु व्रत दान और पूजा पाठ कर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष साधना में जुट गए। श्रद्धालु इस समय को भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए करते हैं समर्पित। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में राम कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरीपारा में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन। जगत गुरु रामाचार्य जी महाराज कथा वाचन करेंगे, भारी भीड़ जुटी। कलश यात्रा में महिलाओं ने एक ही रंग की साड़ियों में नजर आई। जय श्री राम के जयकारों से पूरा शहर राममय हो गया। मातृशक्ति की जागृति और भव्य सांस्कृतिक का आयोजन। कलश यात्रा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में जुटे। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से हुई रवाना। कल खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रुद्रनाथ की डोली को विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया रवाना। आर्मी बैंडों की मधुर धुन के बीच शुरू हुई यात्रा। डोली यात्रा के दौरान दिखा भक्ति और आस्था का अलौकिक नजारा। पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के सैलाब में डूबा। ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से लाया गया था बाहर। गोपीनाथ मंदिर में 2 दिनों तक भक्तों ने किया दर्शन पूजन। हजारों भक्तों की मौजूदगी में डोली की गई रवाना। डोली का जगह जगह पर किया जाएगा दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज 29वां दिन, अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा। चारधाम यात्रा में लगा भक्तों का मेला। शनिवार को 80,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में कल 29,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 6 लाख से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 23,000 से अधिक भक्तों ने किया पूजा पाठ। अब तक 3,88,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार। शनिवार को 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। आज से ब्रज की पवित्र 84 कोसीय परिक्रमा की शुभ शुरुआत। भक्त करेंगे लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबी यात्रा। 15 जून तक चलेगी 84 कोसीय परिक्रमा। मथुरा जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। परिक्रमा मार्ग में नंदगांव गोकुल बरसान जैसे पवित्र स्थल शामिल। अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा का खास महत्व। अधिक मास के पहले दिन बड़ी संख्या में रामदला के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। श्रीराम के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर बाबा का दिव्य श्रृंगार। सुबह की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पच्चीस मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। दुनिया के नंबर 1 पैरा हाई जंपर एथलीट हैं प्रवीण कुमार। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड। पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री। अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तगाराम भील ने अलगोजा वादन को दी ग्लोबल पहचान। फ्रांस स्पेन इटली जर्मनी जापान सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर नगर निगम द्वारा नवनिर्मित एसटीबी प्लांट का किया दौरा। वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य केंद्र से स्थानीय लोगों को मिलेगी बेहतर और तेज चिकित्सा सुविधाएं। गांधीनगर के दशेला में गृहमंत्री अमित शाह ने दूध प्रोसेस करने वाले प्लांट का किया उद्घाटन। स्थानीय डेयरी उद्योग को मजबूती मिलने के साथ किसानों को बेहतर बाजार और रोजगार के मिलेंगे अवसर। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का किया उद्घाटन। युवाओं को नई तकनीक की दिशा देगा सेंटर। गांधीनगर के पिथापुर में गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित वाटर टैंक का और नर्मदा जल वितरण प्रणाली का किया उद्घाटन। गांधीनगर नगर निगम की इस परियोजना से क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद। स्थानीय लोगों को सीधा फायदा। गृहमंत्री अमित शाह का कल से दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत की संसद में घोषणा करने के बाद शाह का यह पहला छत्तीसगढ़ बस्तर दौरा। गृहमंत्री अपने छत्तीसगढ़ दौरे में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही स्थानीय लोग और सरेंडर कर चुके नक्सलियों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। अब तक मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत 1500 से अधिक इकाइयां सफलतापूर्वक की गई है स्थापित। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना बांटे जा चुके हैं 7250 से अधिक पुरस्कार। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर रात की खबर। 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। सिमी कैरियर कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंचा। टैंकर का सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी सफलता। सिमी ने 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला 11वां एलपीजी टैंकर। दिल्ली पेट्रोल डीजल बचाने के लिए नई पहल। दिल्ली मेट्रो कल से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। बीएमआरसी हर सोमवार को चलाएगी 6 अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों को मिलेगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। भारतीय और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सेनेबैक्स 2026 कंबोडिया में संपन्न। दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल और रक्षा सहयोग को बढ़ावा। भारत और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का सफल समापन। कंबोडिया में आयोजित किया गया अभ्यास। भारतीय और कंबोडियाई सैनिकों ने संयुक्त युद्ध कौशल का दिया परिचय। आधुनिक रणनीतियों से आतंकवाद रोधी अभियानों में मजबूती बढ़ाना अभ्यास का मकसद। सेनेबैक्स 2026 में दोनों देशों की सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने का प्रशिक्षण हासिल किया। रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की जताई गई उम्मीद। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन और विशेष टुकड़ियों ने किया संयुक्त अभ्यास। सटीकता और बलों के बीच आपसी समन्वय को मिला बढ़ावा। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में ईएसआई की गाइडलाइंस के बाद विधि विधान से की गई मां बागदेवी की पूजा। जमकर थिर के भक्त। भक्सिंह नगर में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। लगभग 11 करोड़ 40 लाख की लागत से बना पुल। श्रीनगर में पारंपरिक जल संरक्षण और सामुदायिक उत्सव का दिखा अनूठा संगम। फिशिंग एंड क्लीनिंग फेस्टिवल में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। श्रीनगर में फेस्टिवल के दौरान लोगों के बीच हुई मछली पकड़ने की प्रतियोगिता। साथ में लोगों ने तालाब की सफाई भी की। यूपी के प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के पार। दोपहर में घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पोलैंड के कालवरी वेल्जोरोवो में वार्षिक तीर्थयात्रा का आयोजन किया गया। भारी फेरथ्रॉन को लेकर श्रद्धालुओं में पारंपरिक नृत्य किया। बैंड की धुन पर धार्मिक जुलूस में कलाकारों ने फेरथ्रॉन उठाकर प्रदर्शन किया। भीड़ ने सनूखी और ऐतिहासिक परंपरा को देखा। लगभग 40 से 120 किलो तक के फेरथ्रॉन को युवाओं ने कंधों पर संभाला। नृत्य और झुकाव के साथ धार्मिक भावना का प्रदर्शन किया गया। अठारहवीं 19वीं सदी से चली आ रही है परंपरा। इसमें लोग श्रद्धा और उत्साह से बिना किसी इनाम के भाग लेते हैं। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था संस्कृति का सुंदर मिश्रण बताया। लोगों का बना रहा आकर्षण। रेडबुल सोपबॉक्स रेस 8 साल बाद लॉस एंजल्स में लॉटरी। 32 टीमों ने मजेदार होममेड गाड़ियों के साथ डाउनहिल रेस में लिया हिस्सा। हजारों दर्शकों के बीच हॉलीवुड थीम ट्रैक पर अनोखी रेस हुई। प्रतियोगिता में स्पीड क्रिएटिविटी और शोमैनशिप को दर्ज किया गया। कई टीमों की होममेड गाड़ियां ट्रैक पर पलट गई। फिर भी रेस जारी रही। दर्शकों ने स्टंट कॉस्ट्यूम्स और क्रैश पर जमकर किया चीयर। रियान शेकलर और मेडी मास्टो ने सेलिब्रिटी जज की भूमिका निभाई। दोनों ने रेस को क्रिएटिविटी और कंपटीशन का शानदार मेल बताया। ऐसी सोप बॉक्स रेस दुनिया के 107 शहरों में हो चुकी है। इस अनोखी नॉन मोटराइज्ड कार रेस की शुरुआत बेल्जियम से हुई थी। वर्ल्ड फेमस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का धमाकेदार फिनाले, बुल्गारिया ने 516 अंक के साथ खिताब हासिल किया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया फिनाले, 25 देशों के संगीत कलाकारों ने लिया था हिस्सा। बुल्गारिया के हिट गाने बंगारंगा ने जीता लोगों का दिल, सिंगर दारा के जोशीले अंदाज ने गाने में डाल दी जान। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के दौरान जुड़े रहे करोड़ों दर्शक, वोटिंग और जूरी ने मिलकर किया फैसला। यूरोविजन के फाइनल में 343 पॉइंट्स के साथ इजराइल रहा रनर अप, यूनाइटेड किंगडम को मिले सबसे कम एक अंक। चीन में ग्रेट वॉल मैराथन का आयोजन, 1500 धावकों ने दौड़ में लिया हिस्सा। मैराथन में 50 से अधिक देशों के रनर्स हुए शामिल, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट के 138 धावकों ने लिया हिस्सा। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक मानी जाती है ग्रेट वॉल मैराथन, रनर्स को 5,064 सीढ़ियों, खड़ी, चढ़ाई और पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। प्रतियोगिता में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर फन रन का आयोजन, फुल मैराथन में 493, हाफ मैराथन में 504 और फन रन में 388 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 350 रन के साथ साल 1999 में हुई थी ग्रेट वॉल मैराथन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी दौड़ प्रतियोगिता को किया गया शामिल। रियो डी जेनेरियो के एयरोस्पेस म्यूजियम में भव्य मुसालिया शो का आयोजन, राज्य के सबसे बड़े हवाई शो के रूप में मान्यता। ब्रासिलियाई वायुसेना की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन, एयर शो में लोगों को मुफ्त में दिया गया प्रवेश। शो में मशहूर स्मोक स्क्वाडन ने दिखाई शानदार हवाई करतब, तेज रफ्तार विमानों की उड़ान देखकर रोमांचित हो गए दर्शक। एयर शो में 100 से ज्यादा पुराने और आधुनिक विमानों को किया गया शामिल, लोगों को विमानों को करीब से देखने का समझने का मिला मौका। एयर शो के दौरान लोगों के लिए चलाई गई मनोरंजक गतिविधियां, शो में ब्राजील के समृद्ध विमान विरासत। नेपाल के शेरपा गाइड कौमी रीता ने रचा इतिहास, उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 56 साल के कामी रीता रविवार सुबह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, वे 14 पीक्स एक्सपीडिशन कंपनी के क्लाइंट को कर रहे थे गाइड। नेपाल पर्यटन विभाग ने कामी रीता को दी बधाई, सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि और पर्यटन के लिए गर्व बताया। कामी रीता का एवरेस्ट से रिश्ता 3 दशक पुराना है, उन्होंने पहली बार 1994 में चढ़ाई की थी, अब तक 32 बार शिखर छू चुके हैं। कामी रीता उसी ग्राम से आते हैं जहां तेंजिंग नोर्गे का हुआ था जन्म, तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में पहली बार एवरेस्ट फतह की थी। कैरिसा मूरे ने न्यूजीलैंड प्रो में शानदार जीत दर्ज की, अमेरिका की लेकी पीटरसन को रोमांचक मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरिसा मूरे ने 8.83 स्कोर के साथ दमदार प्रदर्शन किया, उनकी जीत को टूर्नामेंट की सबसे बड़ी भिड़ंत माना जा रहा है। हवाई की गैब्रिएला ब्रैन ने बड़ा उलटफेर करते हुए कनाडा की एरेन ब्रुक्स को हराया, इस जीत के साथ गैब्रिएला ने अंतिम 8 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया की टायलर रेट ने वर्ल्ड नंबर 1 लुआना सिल्वा को मात देकर सबको चौंका दिया, वहीं मॉली पिकम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जैक रॉबिन्सन और ब्राजील के टैलो फेरेरा का दिखा दबदबा, दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अगले दौर में एंट्री कर ली। कान फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अभिनेत्री अदिति राव हेदरी ने बिखेरा बोल्डनेस का जादू, नियॉन मेटलिक ग्रीन गाउन में नजर आई। चोकर नेकलेस ने अदिति राव की खूबसूरती पर लगाया 4 चांद, गोल्डन फुटबियर्स प्लेयर्स में दिखा बेहद ग्लैमरस अंदाज। पति विक्की कौशल के 38वें बर्थडे पर कैटरीना ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, बेटे विहान की क्यूट झलक ने जीता फैंस का दिल। 67वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थमी धुरंधर 2 की आंधी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1797 करोड़ के करीब पहुंचा। धुरंधर 2 के रास्ते पर चली अक्षय की भूत बंगला, 30 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ 77 लाख के पार पहुंचा। बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का शानदार प्रदर्शन जारी, 16 दिन में कमाई 96 करोड़ 100 करोड़ के क्लब और नए रिकॉर्ड से चंद कदम दूर। सूर्य स्टारर फिल्म करोपू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 2 दिन में फिल्म दुनिया भर में 60 करोड़ का किया कारोबार। वीकेंड पर पति पत्नी और वो 2 की बॉक्स ऑफिस पर चांदी, 2 दिन में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13 करोड़ 70 लाख के पार। वीकेंड पर फिर चमकी माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 हार्ट, 9 दिन में फिल्म ने 12 करोड़ 10 लाख का किया बिजनेस। तलाक के बाद मौनी रॉय सूरज ने फिर किया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो, गुरुवार को अलग होने की थी घोषणा, दोस्ती बनाए रखने की कही थी बात।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
9: It's college football time. College basketball feels
1: Pardon
9: like
1: my
9: it's
1: take.
10: The Rams catching the Commanders.
1: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम भी होंगे सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। कई लोगों के हाथों और पैरों पर अनेकों तरीके के चिन्ह होते हैं, तो आखिरकार ये जो चिन्ह है इसका क्या रहस्य है और ये आपके भाग्य के बारे में क्या कुछ बताता है, क्या कुछ उजागर करता है, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, अगर आप किसी कारण से सूर्य देव को सुबह जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर से सूर्य देव का दर्शन नहीं होता या सूर्य उगता नहीं है या बिल्डिंग है, आप सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर पाते, तो रोज सवेरे स्नान करके सूर्य देव के 21 नाम का पाठ करिएगा। अगर रोज सवेरे आप सूर्य देव के 21 नाम का पाठ करें तो सूर्य को जल चढ़ाने के बराबर फल आपको प्राप्त होगा।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 18 मई 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या कुछ कहता है।
1: दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:53 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:05 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हाथ और पैर के जो तमाम चिन्ह होते हैं आखिरकार उसका क्या महत्व होता है और क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। पंडित जी हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके हाथ और पैरों के चिन्ह के बारे में। हाथ और पैर के चिन्ह आपके जीवन और आपके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं, आज इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और उनमें जो चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे कुंडली में योग होते हैं वैसे हाथ पैर के चिन्ह होते हैं। हाथ पैरों में बनने वाले चिन्ह दो तरीके के होते हैं। एक चिन्ह वो होते हैं जो हमेशा रहते हैं और दूसरे चिन्ह वो होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं, कभी बन गए, कभी हट गए, कभी बना कोई चिन्ह फिर गायब हो गया, तो वो एक समय के बारे में बताते हैं जिस समय वो चिन्ह बनता है उस समय की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो चिन्ह आपके हाथ या पैरों में हमेशा बने रहते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं, सारी खूबियां बताते हैं। हाथ पैर में बड़े सारे चिन्ह बनते हैं, वर्ग है, त्रिभुज है, मछली है, तारा है, मंदिर है, लेकिन ये चिन्ह तभी महत्वपूर्ण होंगे जब ये इंडिपेंडेंट होंगे, एकदम अलग से बने होंगे। जितना चिन्ह स्वतंत्र हाथ में बना होगा उतना ज्यादा ये आपके जीवन पर असर डालेगा।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार की चिंता दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए चिन्हों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन से चिन्ह है साधारण और इन चिन्ह का क्या अर्थ है, पंडित जी से समझते हैं।
1: देखिए, आपको पहले बताया कि हाथ में दो चिन्ह होते हैं, एक साधारण चिन्ह और एक विशेष चिन्ह। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाथ में कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और इनका अर्थ क्या है। सबसे पहला चिन्ह है वर्ग का। वर्ग यानी स्क्वायर, ये रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। वर्ग हाथ में जहां भी होगा उस समय आने वाली समस्या से आपकी सुरक्षा करेगा। जीवन रेखा पर होगा तो आयु की रक्षा करेगा, भाग्य रेखा पर होगा तो भाग्य की रक्षा करेगा। लेकिन अगर शुक्र के पर्वत पर वर्ग हो तो ये व्यक्ति को जेल ले जाता है, जेल यात्रा का कारण बनता है। त्रिभुज, त्रिभुज हाथ में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन जिस पर्वत पर पाया जाता है, जिस जगह पाया जाता है, उस स्थान के प्रभाव को, उस स्थान की शक्ति को बढ़ा देता है। हाथ के बीचों बीच में अगर त्रिभुज हो तो आदमी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होता है, बहुत अच्छा मैनेजर होता है। तारा, कई रेखाएं एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटें तो वो तारा जैसा बन जाता है। हाथ या पैर में तारा जहां भी बने, स्टार जहां भी बने, उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। तारे का होने का मतलब कि जिस पर्वत पर है, जिस स्थान पर है, वहां पर मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर ये सूर्य के पर्वत पर बनता है या सूर्य के पर्वत पर है तो जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्रदान करता है। वलय, अंगूठी की तरह अंगुलियों के नीचे गोल सी आकृति होती है, उसको कहते हैं वलय। ये जहां भी होता है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। अमावस्या की तरह होता है, जिस पर्वत पर रहेगा उसके शुभ प्रभाव को रोकेगा। सूर्य के पर्वत पर वलय बहुत अशुभ माना जाता है, सबसे ज्यादा अशुभ होता है। लेकिन अगर बृहस्पति के पर्वत पर वलय है तो उसको सोलोमन की रिंग कहते हैं। ऐसे लोग न्याय, धर्म, कानून और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करते हैं। तिल की बात करते हैं। तिल केवल हथेली के बीचों बीच में अच्छा होता है, अन्य किसी जगह तिल अच्छा नहीं होता। जिस पर्वत पर तिल है उस पर्वत के प्रभाव में समस्या पैदा करेगा, उस पर्वत के रोग देगा। चंद्र के पर्वत पर तिल है, डिप्रेशन देगा। बृहस्पति के पर्वत पर तिल है, लीवर की बीमारियां देगा। लेकिन अगर तलवे में, पैर के तलवे में अगर तिल हो तो ऐसे लोग जीवन में बड़ी दौड़ भाग करते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में हमेशा यात्रा करनी पड़ती है।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम में अभी समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न प्रतिभा जी ने हमें लिखा है और प्रतिभा जी हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1991, जन्म का समय दोपहर के 1:45, जन्म स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं प्रयागराज से। प्रतिभा जी कह रही हैं कि मेरी एक संतान है और मैं दूसरी संतान के लिए प्रयास करना चाहती हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या दूसरी संतान ठीक तरीके से हो सकेगी। प्रतिभा जी, आपकी कुंडली को देखते हुए और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपको दूसरी संतान की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि संतान के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ जाए। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि दूसरी संतान के लिए प्रयास ना करें, एडॉप्शन वगैरह में जाना चाहें तो वो देख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल किस व्यूअर का पंडित जी ले रहे हैं उसके बारे में उनसे जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं, रिमाइंड कर दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं पंडित
1: जी। अगला प्रश्न राम मोहन जी ने हमें लिखा है और राम मोहन जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1973, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म का स्थान है बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। राम मोहन जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी बदलना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल सकती है और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। राम मोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपकी नौकरी बदलने का योग बन रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि इस साल के आखिरी में आप नौकरी बदल लेंगे अनुकूल तरीके से। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और एक मूंगा 10-12 रत्ती का बनवा के धारण करिए, आपको लाभ होगा।
0: तो कौन से चिन्ह विशेष होते हैं, खास होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, हाथ में और पैरों में विशेष चिन्ह भी होते हैं, विशेष लक्षण भी होते हैं, उनका क्या अर्थ है वो समझते हैं। पहला विशेष चिन्ह है शंख का। अंगुलियों का जो टिप है, अंगुली के जो ऊपर का पोर है, इस पर शंख होता है, शंख पाया जाता है। शंख का मतलब विद्वता और ज्ञान है। कहा जाता है दशो शंख योगी, जिसके दशों अंगुलियों में शंख हो वो योगी है, वो आध्यात्मिक है। दूसरा चिन्ह होता है चक्र का। चक्र भी अंगुलियों के पोरों पर पाया जाता है, ये बताता है कि आप राजा हैं, यानी आप फाइनेंशियली जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, ये धन संपत्ति की सूचना है। दसों चक्र राजा, दसों शंख योगी, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद चिन्ह आता है त्रिशूल का। त्रिशूल बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या हृदय रेखा पर पाया जाता है। और अगर हाथ में त्रिशूल है तो ये अपार शक्ति देता है और जीवन में बड़ा यश देता है, बहुत नाम देता है। हाथ में मंदिर भी पाया जाता है, एक वर्ग के ऊपर त्रिभुज जुड़ जाता है और वो बन जाता है मंदिर। आम तौर पर शुक्र के पर्वत पर या हथेली के बीचों बीच राहु के पर्वत पर मंदिर पाया जाता है। ये दैवीय कृपा का चिन्ह है, भगवान की कृपा का चिन्ह है और आध्यात्मिक संस्कारों के बारे में बताता है। जिसके हाथ में मंदिर होता है, ऐसा मान करके चलिए कि वो धर्म का अच्छा पालन करते हैं और उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मछली का चिन्ह भी हाथ में होता है। जीवन रेखा और मणिबंध के पास, कलाई के पास मछली का चिन्ह पाया जाता है या कुछ लोगों के पैरों के बीच में भी मछली का चिन्ह देखा गया है। अगर हाथ में या पैर में मछली का चिन्ह है तो ये यात्राओं और यात्राओं से लाभ की सूचना देता है। एक चिन्ह और होता है कमल का। बड़ा दुर्लभ चिन्ह है और आसानी से कमल को आप पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन विलक्षण लोगों के हाथ में होता है। पैरों के बीच में या हाथों में शुक्र के पर्वत पर होता है कमल का चिन्ह। जिसके भी हाथ या पैर में है, या तो वो स्वयं ईश्वर है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके हाथ पैरों में विलक्षण चिन्ह होते हैं, शंख है, चक्र है, कमल का फूल है, ये सब चिन्ह उनके हाथ पैरों में पाए जाते हैं। या कोई ऐसा संत महात्मा जो ईश्वर के बड़ा निकट होता है, उसके भी हाथ या पैरों में कमल का चिन्ह हो सकता है।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं।

0: होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर आपके हाथों में या पैरों में बुरे चिन्ह हो तो उसका दुष्प्रभाव आप अपने जीवन में किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में या पैरों में अशुभ चिन्ह हो, बुरे चिन्ह हो, तो उनका दुष्प्रभाव कैसे कम करेंगे? जिस पर्वत पर खराब चिन्ह हो, जैसे मान लिया बृहस्पति के पर्वत पे पहली उंगली के नीचे खराब चिन्ह है, तो उसमें 3 धातु का छल्ला पहनिए। इसमें सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवाकर उस उंगली में पहन लीजिएगा। पैरों में, खास तौर से दाहिनी कलाई में, हाथों में, कलाई में और पैरों में जहां एंकल पहनते हैं, जहां पे एंकलेट पहनते हैं, वहां पे एक काला धागा भी पहन सकते हैं। अगर पैरों में खराब चिन्ह है तो जहां पायल पहनते हैं वहां एक काला धागा बांध लें, और अगर हाथों में खराब चिन्ह है तो जिस हाथ में खराब चिन्ह है वहां एक काला धागा बांध लें। हाथों में जल भरकर अंजुली से पौधे में जल डालें, खास तौर से तुलसी के पौधे में अंजुली में जल भर के रोज डालिएगा। सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखिए, इसके बाद जमीन को प्रणाम करके अपना पैर पलंग से नीचे रखिएगा। माता पिता का अगर रोज चरण स्पर्श करें तो आपके हाथ में, हथेलियों में, प्रारब्ध में जो खराब चिन्ह होंगे उनका असर आपके जीवन से कम हो जाएगा। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखिए, भगवान का स्मरण करिए, जमीन को छूकर नीचे उतरिए, घर में जो बड़े हैं उनका मानसिक रूप से, अगर दूर हैं तो मानसिक रूप से, और अगर साथ में रहते हैं तो जा करके उनका चरण स्पर्श करिएगा। ऐसा करने से आपके हथेलियों में, पैरों में जो नकारात्मक चिन्ह हैं उनका प्रभाव कम होगा, समाप्त होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आप

0: के लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न, अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा यानी आज का अंतिम सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न खुशबू कुमारी ने हमें लिखा है और खुशबू कुमारी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 2005, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म का स्थान है बाढ़ बिहार। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब में नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूं, क्या टीचिंग में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मुझे आगे उच्च शिक्षा में नौकरी मिलेगी या प्राइमरी स्कूल में मिलेगी। खुशबू, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, एमए कर लें और उसके बाद नेट एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आप एमए करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए कोशिश करें तो आपको उच्च शिक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। उम्र के लगभग 26-27 साल के आसपास आपकी नौकरी आरंभ होगी। आपकी कुंडली में विलंब विवाह के योग हैं और ये भी संभावना है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएं, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन यानी जिनका बर्थडे 18 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कितना खास रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 18 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम में अब समय हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग सूर्य देव को जल देते हैं, उसमें अक्षत डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, सूर्य को जल देने से प्रकाश का फायदा होता है, लाइट का और कलर का, इसीलिए अलग अलग रंग आप मिला करके उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। रोली मिला के, हल्दी मिला के, चंदन मिला के उसके अलग अलग कलर का प्रभाव बदल सकते हैं, लेकिन इसमें गुड़ डालना, चावल डालना, मीठा डालना, ये किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय हो गया है जानने का कि शुभ पहर क्या है, यानी 18 मई 2026 दिन सोमवार का शुभ पहर कौन सा है, जान लेते हैं।
0: दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में ज्यादा से ज्यादा शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति लगातार मजबूत होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 18 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानते हैं कि आज की भाग्यशाली यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान में स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है धनु। इस समय काम का बोझ और आंखों की समस्या से परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखिए, आराम जरूर करिए और तनाव कम पालिए।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय आ गया है पंडित जी से जानने का कि आज का महा उपाय आखिर क्या है। पंडित जी,
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल और 3 बेलपत्र अर्पित करेंगे और जल और बेलपत्र घर से ले जाएंगे। जल घर से भरकर नंगे पैर शिव जी के मंदिर तक जाइएगा, उसके बाद जल और 3 बेलपत्र चढ़ाइएगा और शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है और इसके बाद अर्पित किए हुए बेलपत्र में से 1 बेलपत्र वापस लाकर रोगी के सिरहाने रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं, सप्ताह भर में ही स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए गुड लक टुडे में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।

0: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कान्स का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनीकॉम लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान की रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शियर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस जोलीपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसर यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके सफर का आगाज 2022 में हुआ था, तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपने बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही दारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहाँ चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोला बाला है, वहाँ ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात यह है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

0: दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ तालियां बटोरी तो कभी भारतीय सितारों के रेड कार्पेट लुक ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव ज्यूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। कान के रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। तेरह में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास के सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। ।1988 में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। 2022 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का मौका मिला जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है। जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है, उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साय में हुआ था। कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा।
2: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल कालीन यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहां की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहां रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है। जहां होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहां समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की ज्यूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए, दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टरा फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोख से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है, बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टरा के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहां कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीन जे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक

को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ यह आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946 के पहले ही साल में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने इस फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है जहां चमकने की हसरत हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सितारों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
5: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.

0: Montréal.
1: C'était très impressionnant de monter sur le mur. La vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
2: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। पैराही जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक कगराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है, और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है, जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की है। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है, वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब यह स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
2: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
1: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 Mach 7-8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है, वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
1: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और J-100 है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रीशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: ब्रंच क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन, वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेस हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवा किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
5: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
6: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
4: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
7: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
2: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।
1: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कांस का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइव के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनी कॉम लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स में, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है जिसका बेस लैवेंडर टोन के शेयर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस ज्वेलिपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसर यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके सफर का आगाज 2022 में हुआ था, तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपनी बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही तारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
0: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहाँ चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहाँ ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देते अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

0: दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ तालियां बटोरी तो कभी भारतीय सितारों के रेड कार्पेट लुक ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव जूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। तेरह में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास के सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। ১৯৮৮ में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। 2022 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का मौका मिला, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है, जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है। उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साय में हुआ था। कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा।
0: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल कालीन यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहां की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहां रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है, जहां होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहां समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टा फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की ज्यूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए। दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टा फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोक से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टा के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहां कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीनजे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई।

परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ यह आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946 के पहले ही साल में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने इस फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है जहां चमकने की हसरत हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सितारों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
3: सैकड़ों धावकों का ये कारवा किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है, बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
4: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
5: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
3: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट को न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just up.

0: upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक कागाराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है, और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है, जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की है। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूं। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को Mach 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 Mach से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में Mach 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैम या टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है, तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब ये स्वदेशी हो जाता है, तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
2: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है, उतना ही पाकिस्तान से भी है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए, तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
1: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है, इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है, तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है, और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है, जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्द ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं प्रोपल्शन होता है उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट वो एनर्जी वो थ्रस्ट डेवलप करना जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है। तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा। चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो बाई द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड दूसरा लो हाइट या हाई हाइट इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
1: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी की ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि ये फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवीआर वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है, जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: क्षेत्र में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा। मैराथन में सबसे मुश्किल है, हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
5: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
6: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
4: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।

0: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कान्स का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनीकॉम लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान की रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत $155.87 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शियर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस जोलीपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसर यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके सफर का आगाज 2022 में हुआ था, तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपनी बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही दारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात यह है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

0: दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ तालियां बटोरी तो कभी भारतीय सितारों के रेड कार्पेट लुक ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव ज्यूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। कान के रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। तेरह में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास के सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। ১৯৮৮ में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। 2022 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का मौका मिला जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है, जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है। उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साय में हुआ था। कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा।
2: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल कालीन यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहां की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहां रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है। जहां होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहां समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की जूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए, दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोख से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है, बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टर के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहां कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीन जे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ ये आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946

शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में बेचता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है जहां चमकने की हसरत हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सितारों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवा किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
5: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
6: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
4: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा

0: है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त, जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक टागर राम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू, 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी, गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना, आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटेजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके, और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है, और जब ये स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास AI तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक्स 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है, तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है, वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और J-100 है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रीशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: क्षेत्र में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: जाए। Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
5: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
6: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
4: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे। आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।

0: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कान्स का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनीकॉम्ब लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान की रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शेयर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस जोलीपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसर यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके इस सफर का आगाज 2022 में हुआ था, तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपने बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही दारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

0: दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ तालियां बटोरी तो कभी भारतीय सितारों के रेड कार्पेट लुक ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव ज्यूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। कान के रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। तेरह में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास के सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। ১৯৮৮ में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। 2022 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का मौका मिला जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है। जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है, उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साय में हुआ था। कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा।
2: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल कालीन यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहां की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहां रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है। जहां होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहां समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की जूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए, दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोख से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है, बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टर के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहां कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीन जे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ यह आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946 के पहले ही साल में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने इस फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
3: सैकड़ों धावकों का ये कारवा किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है, बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
4: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
5: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
3: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की

0: दौड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
1: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक तगाराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। ये तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है, तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब ये स्वदेशी हो जाता है, तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस-2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। भारत के लिए खतरा जितना चीन से है, उतना ही पाकिस्तान से भी है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए, तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास AI तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है, इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है, तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है, और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है, जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस-2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस-2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है, वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं, उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल है। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDAM और JSAW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी के ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: सोच दिखाती। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।
6: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहाँ अपने शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
7: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
8: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
6: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
10: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
9: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक कागाराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना। आर्मी बैंड की धुन के साथ लगे जयकारे, आज खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। इस खास शो में हम बात दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कान फिल्म फेस्टिवल की करेंगे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई दिखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम गई। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ दिखाई दी। एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी तो दूसरी ओर उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस का चर्चा का विषय बन गई। कान में क्या क्या रहा खास, देखिए पूरी कान रिपोर्ट में।

0: डिफरेंस रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कान्स का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले बेबी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी का टच ही दे दिया। रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया, जिसमें आलिया ब्लू गाउन पहने नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें सिल्क साटन, हनी कॉम लेस और शेंटली लेस की कई लेस मौजूद थी। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। दिलचस्प बात यह रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कान की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग्स ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू लैवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर ही उतार दिया गया हो। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांगटीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान की रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत $155.87 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शियर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस जोलीपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके सफर का आगाज 2022 में हुआ था, तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपने बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही हैं। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। हालांकि जब बात कान फिल्म फेस्टिवल की होती है तो क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को कैसे भूला जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेस से साबित कर दिया कि वो क्यों इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। उनके साथ ही तारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: अब खबर कान से। फ्रांस के कान में इन दिनों दुनिया का सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसमें भारतीय सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन कान में भारतीय कलाकारों के जलवे की खबरें आ रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कान में हिंदुस्तानी परंपरागत पोशाक साड़ी की क्यों चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वही अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और ये सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: कान का मंच सिर्फ हॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारतीय फिल्मों से लेकर भारतीय अभिनेत्रियों के ने कान के रेड कार्पेट पर अपने फैशन और ग्लैमर का जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक जैसी अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। कान की शुरुआत से लेकर आज तक इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू बरकरार है।

0: दशकों से भारतीय फिल्मों ने, कलाकारों ने और फिल्म मेकर्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। कभी भारत की फिल्मों ने यहाँ तालियां बटोरी तो कभी भारतीय सितारों के रेड कार्पेट लुक ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बात कान फिल्म फेस्टिवल की हो और क्वीन ऑफ कान यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। 2002 में नीता लुल्ला की साड़ी पहनकर जब ऐश्वर्या पहली बार कान पहुंची तो दुनिया उनकी सादगी पर फिदा हो गई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें फैशन का ग्लोबल आइकन बना दिया। कभी उनका बैंगनी लिपस्टिक शेड चर्चा में रहा तो कभी उनका ब्लू सिंड्रेला गाउन सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। ऐश्वर्या के बाद इस विरासत को आगे बढ़ाया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कान के रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनके स्टाइल स्टेटमेंट की कायल हो गई। 2018 का वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूल सकता जब दीपिका ने गुलाबी ट्यूल गाउन में कान के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके उस पावर पोज और बोल्ड लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये दीपिका का वो अंदाज था जिसने दुनिया को बताया कि बॉलीवुड क्वीन अब ग्लोबल आइकन बन गई है। 2022 दीपिका के लिए सबसे खास था जब वो कान की एक्सक्लूसिव जूरी का हिस्सा बनी। उन्होंने ओपनिंग डे पर सब्यसाची की ब्लैक और गोल्ड साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। विंटेज हेयर स्टाइल के साथ उनका लुक कान के सबसे आइकॉनिक साड़ी मोमेंट्स में गिना जाता है। रेड कार्पेट पर प्रियंका की एंट्री किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसी भव्य होती है। 2019 में जब प्रियंका ने कान में अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रॉबर्टो कवाली का एक कस्टम मेड शिमरी गाउन चुना। रेड कार्पेट पर उनके कॉन्फिडेंस से भरपूर वॉक ने सबको हैरान कर दिया। प्रियंका का सफेद रफल्ड गाउन आज भी फैशन प्रेमियों की यादों में ताजा है। किसी राजकुमारी की तरह दिख रही प्रियंका ने जब अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा तो दुनिया उन्हें पावर कपल की मिसाल देने लगी। प्रियंका की खासियत है उनका वर्सेटाइल स्टाइल। उन्होंने कभी विंटेज हॉलीवुड लुक अपनाया तो कभी मॉडर्न लुक। उनकी एक्सेसरीज से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक सब कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना। दो हजार 2013 में जब सोनम ने साड़ी के साथ नथ कैरी किया तो पश्चिमी मीडिया जैसे हैरान रह गई। सोनम के इस देसी स्टाइल पर हर कोई फिदा हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सोनम के पारंपरिक आभूषण को ग्लोबल हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। ये लुक आज भी कांस के इतिहास के सबसे चर्चित लुक्स में से एक है। सोनम ने कांस में दिखाया कि केप को रेड कार्पेट पर कैसे रॉयल अंदाज में कैरी किया जाता है। चाहे वो राल्फ एंड रूसो का सफेद गाउन हो या एली साप के बोल्ड कलर्स, सोनम ने हर बार अपने ड्रेसेस से एक नई कहानी लिखी। सोनम की खासियत रही है फ्यूजन। उन्होंने कोट के साथ साड़ी पहनी और फॉर्मल पैंट सूट को रेड कार्पेट पर एक नया आयाम दिया। कान और भारत का रिश्ता सितारों के लुक्स और ग्लैमर से कहीं ज्यादा है। इसमें सिनेमा का मास्टर क्लास भी है और दमदार कहानी भी। भारत ने पहली बार साल 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। वो फिल्म थी नीचा नगर, पहली भारतीय फिल्म जिसने कान में बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म को उस समय फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड प्रिक्स मिला था। निर्देशन चेतन आनंद और पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि भारतीय सिनेमा में वो ताकत है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी कहानी कह सकता है। धीरे धीरे भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। सत्यजीत रे की फिल्मों ने कान में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कई फिल्मों को वहां सराहा गया और दुनिया भर के दर्शकों ने भारतीय कहानी कहने के अंदाज को पसंद किया। '88 में सलाम बॉम्बे ने कान में खूब तारीफें बटोरी और कैमरा डी और अवार्ड जीता। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। 2022 भारत के लिए और भी खास रहा जब भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। उसी साल दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य बनने का मौका मिला, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1946 से शुरू हुआ सिलसिला 2026 में भी जारी है। भारतीय सितारों की चमक और उनकी मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल जगमगा रहा है। हालांकि कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपनी कला, संस्कृति और कहानियों को दिखाने का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है, जहां रेड कारपेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है। उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साय में हुआ था। कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा।
2: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल कालीन यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहां की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहां रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है। जहां होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहां समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय ये दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की जूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की जूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए। दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोख से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टर के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहाँ कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीनजे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई। और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस समेत कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड होटल के बागीचों में शुरू हुआ ये आयोजन आतिशबाजी, फैशन शो और फूलों के उत्सव जैसे खास शो से सराबोर था। भारत के लिए भी ये मौका बहुत खास था, क्योंकि 1946 के पहले ही साल में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने इस फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन था जहां हर देश अपनी फिल्में भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सितारों की चमक और रेड कार्पेट की सुर्खी ने इसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कान सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों के लिए वो सेंटर स्टेज है जहां चमकने की हसरत हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सितारों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही है, मैराथन में सबसे मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: पार करते ये धावक यहाँ अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए, जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है, बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
1: Correr aquí en la muralla es impresionante, las escaleras de subir y bajar, se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
2: C'était très impressionnant de monter sur le mur, la vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
0: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, जिसे इंसान ने बनाया है। लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुल मिश्रे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
5: somebody save me,
4: to timeless favorites,
5: life is like a song,
4: and new discoveries.
5: So much more than a history. Wake up.
4: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पुरुषोत्तम मास के पहले दिन अमरावती के अंबाजी मंदिर में उमड़े भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच सुख समृद्धि के लिए कामना। अधिक मास में होती है भगवान विष्णु की विशेष आराधना। छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भव्य राम कथा का आयोजन। पहले दिन शहर की गलियों में धूमधाम से निकली कलश यात्रा, आस्था और भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। 25 मई को पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पैराहाई जंपर प्रवीण कुमार के साथ राजस्थान के लोक गायक कगराम को भी मिलेगा पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में होगा सम्मान समारोह। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अलर्ट मोड पर रहे सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और बिजली विभाग, अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फॉर मास्टर प्लान लागू। 2 से 25 गायों की यूनिट को योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों पर खास फोकस।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।